0: न समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तंभेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि संबोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्याम ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवाद रोधी सहयोगम इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम ह्यः नवदिल्ल्यां आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनाञ्च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसंधान संघटनम मध्यप्रदेशस्य श्योपुर नगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम एकीकृतम आईएमएटी इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरबसागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्देश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमित संख्यासु एव उपलब्धा अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में सत्रहवें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
7: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
6: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें, रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें, पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
7: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: सीन सुब का जो वक्त है वो तय करेंगे
1: इंशाल्लाह। फुरकान सब मिशबासान यम सात सुबह छना अखिक सिन खतर दुआ गो रोजान एम खत बड़ कथ छन कहिन बन यम सात इस बाकन खतर दुआ छ करन अल्लाह ताला सुसाइन खतर तिम वात त्रावन याल यम सनस वहमो गुमानस मजासन
0: बिल्कुल
1: तो सुबह सुबह दुआ करन एम सुच दिल ते खुश कसान मै बसन सन सामिन ते कसन खुश क्या छ वनन
0: वली रलत मिलत करो अल्लाह ताला सुकुन ये दुआ।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। समीर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद और आज की नशरियात की जीवित है मेरे साथ रिफत आरा। समीर आपको ये भी बताते चलूं कि कंट्रोल रूम से हमारा साथ दे रहे हैं समीर अहमद भट्ट साहब और तारिक अहमद भट्ट साहब। ड्यूटी रूम में हमारी मावलत कर रहे हैं मोहम्मद अमीन और इस प्रोग्राम की मावलत कर रही हैं सामिया यूसुफ और इस खूबसूरत प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह साहिबा। समीन रिफत जी मेरे साथ बैठी हैं और जैसे कि सामीन आपको मालूम है कि हर दिन हम किसी न किसी मौजू पर बात करते हैं। रिफत जी, हर एक नई सुबह का आगाज भी यही होता है कि हम कुछ नया सोचें, कुछ नया करने की ठान लें या कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि समीन के साथ हर दिन जब हम इस माइक्रोफोन के जरिए रूबरू हों तो कुछ ऐसा उनके साथ शेयर करें, कुछ ऐसा उनके साथ हम साझा करें जिससे उनकी जिंदगी में और हमारी खुद की जिंदगी में कोई ऐसी तब्दीली रोनुमा हो जिसको हम आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।
0: और जिससे हमारे माशरे को बुनियादी तौर पर फायदा हो।
1: सही।
0: और देखिए, आज अगर हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने से गुजरती हैं जिनके बारे में हम या तो अब कम सोचते हैं या इसलिए कम सोचते हैं कि शायद हम इतने मसरूफ हो गए हैं
1: जी।
0: इस सब में एक चीज जो है वो है जिसे हम कहते हैं खानदानी निजाम।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, आज हम बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट पे। ट्रांसमिशन में हर दिन बात होती है वुमन पे
1: जी जी।
0: और इस खानदानी निजाम की बुनियाद जो है वो एक औरत से पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात करते हैं अपने सामीन के साथ, कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं ताकि वो भी सोचें और हम भी सोचें कि खानदानी निजाम और उससे जुड़े या उससे मुंसलिक जो अफराद है, फिर माशरा है, वो कैसे बनता है।
1: सही।
0: और इससे हमें किस तरह अच्छी बुनियादों पर उस्तवार करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आपने खानदान की बात छेड़ी तो खानदान इंसानी माशरे की पहली और बुनियादी इकाई है।
0: बिल्कुल सही।
1: यही वो इदारा है जहाँ इंसान की शख्सियत की तश्कील होती है, इखलाकी अकदार परवान चढ़ते हैं और नई नस्ल को जिंदगी गुजारने के बुनियादी उसूल सिखाए जाते हैं। फुरकान, एक मजबूत और मुतवाजन खानदानी निजाम न सिर्फ अफराद की फलाह बहबूद का जामिन होता है बल्कि पूरे माशरे में अमन इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद को फरोग देता है।
0: बिल्कुल दुरुस्त। और ये देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं ये खानदानी निजाम जो है ना, इसकी अहमियत क्या है
1: जी जी।
0: और किस तरह वाजिया होते हैं। देखिए, किसी भी मुस्तहकम माशरे की बुनियाद एक मजबूत खानदानी निजाम पर उस्तवार होती है।
1: बिल्कुल सही।
0: और खानदान मोहब्बत, एहतराम, ताउन, यूं कहें कि बर्दाश्त और जिम्मेदारी जैसे अवसाफ की अमली तरबियत गाह है।
1: सही कहा आपने। बच्चों की जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और इखलाकी नशोनुमा में खानदान का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। यही वजह है कि माशरती इस्तेहकाम और इंसानी तरक्की का आगाज घर से होता है।
0: बिल्कुल, घर से होता है। आप देखिए, आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी, अगर इसमें हम देखें ना तो बहुत से अफराद जो है ना हमें आसपास नजर आते हैं कि जो जहनी दबाव या अक्सर हमने सुना है लोगों को कहते हुए कि तन्हाई में बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। यानी इससे पता चलता है कि लोग जो ना एक अजीब किस्म की बेइत्मीनानी का जो है वो शिकार है। और अगर हम फिर बात करते हैं माहरीन से और उनकी सुनने की कोशिश करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं इस निज़ाम में क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि एक अहम जो वजह है इस खानदानी निज़ाम में कमजोरी की वो है कि एक दूसरे के लिए वक्त की कमी।
1: सही।
0: देखिए, बाहमी गुफ्तगू का आजकल हम अक्सर देखते हैं कि फुकदान नजर आता है।
1: बिल्कुल। इसलिए मजबूत खानदानी ताल्लुकात न सिर्फ माशरती जरूरत है बल्कि जहनी और जज्बाती सेहत के लिए भी नागुजीर है।
0: देखिए, ये जो बात आपने की ना कि किस तरह से मजबूत खानदानी ताल्लुकात जो है ना एक माशरे की

0: यहाँ सामीन आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 MHz पर मीडियम वेव 268.8 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं शो पयाम सुबह। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ है फुरकान मजीद। और आज जो हमारा थीम है, हर दिन अलग एक थीम होता है और आज का जो हमारा थीम होता है, आज थर्सडे है, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, वुमेन अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं। और इस वक्त जो बात चल रही है वो ख़ानदानी निज़ाम की बात हो रही है। और ख़ानदानी निज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें भी औरत का एक बहुत बड़ा रोल है।
1: बिल्कुल सही
0: जी फुरकान।
1: देखिए

0: बिल्कुल सही होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उनकी सुनी जाए।
1: बिल्कुल सही, उनकी सुनी जाए और कम से कम इतना करें कि उन्हें तन्हाई या बेबसी का एहसास जो है ना वो ना रहे,
0: वो ना होने
1: दे। इतना कर पाए तो इससे मालूम होगा कि आपने अपने खानदानी निज़ाम को कितना मजबूत करके रखा है, और मजबूत बुनियादों के लिए सुनना भी ज़रूरी है और एक दूसरे को एहसास भी दिलाना ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं तो खानदान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।

0: आकाशवाणी पर बोजान। जम्मू कश्मीरिक वजीर आला उमर अब्दुल्लान वोनमुत तिह सरकार यूटी मज तलीमी शोब बुनियाद मजबूत बनाने बापत हल गंडित एस के आई सी सी श्रीनगर रात बुनियाद से बुलंदी तक नए एजुकेशन कनक्लेव जतवुहस मज शिरकत करान वो तमो पन ख्याल बावान।
1: हमारी लगातार कोशिश है कि जहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, खासकर जमीनी सतह पे, कटिंग एज लेवल बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किया है। आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज्यादा लगता है। ऑर्डर तैयार हुए, उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करें।
0: अत कनक्लेव दौरान सपद मुतलिक फरीक जम्मू कश्मीर मज तलीमी शोब किस मुस्तबिलस अख नौ तरह दिन बापत एक प्लेटफार्म पे जमा। कनक्लेव मज जम्मू कश्मीर वजीर तलीम सकीना हितू तौजूद अत मौक पे वो तमो पन ख्याल बावान।
2: जो हमारे लेक्चरर्स हैं, जो हमने ये सरकार बनते हुए जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमने लगभग 600 के करीब जो लेक्चरर्स के पोस्ट थे हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया था और अल्लाह का शुक्र है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के मेहनत की वजह से जो ये रिक्रूटमेंट वहाँ बोर्ड से होके आए हैं, 113 जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनको ये ऑर्डर जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैंड ओवर कर, मुझे है कि इंशाल्लाह इन पे जल्दी काम शुरू होगा और ये जिन बच्चों के लिए किया गया है उनको इससे काफी फायदा मिलेगा।
0: अत दौरान अकिस अहम पेशरफ्त तहत जम्मू कश्मीर सरकार नईम पे बहमि जमा तमाम बे यूटी हिंद डिग्री कॉलेज मज तलीम प्रावन वाल ए वाई जुमर कन तलब इलमन मुफ्त तलीम फराहम कर एलान कर्मुत। यूटी हिंद वजीर तलीम सकीना इतुहन वो अकिस एक्स पोस्टस मे फैसल सजी अला उमर अब्दुल्ला सदि दस लूकन सर्मुत वाद पूर सपुदमुत तो यह सरकार के तमि अजम अक्कासी करान माली वसीलन हज कमी गचन कंस ते तलब इलमस तलीम निश दूर थावन। मरकजी दाखिल वजीर अमित शाहन कर रात शदीद रूद पेन कन वसित यन तो सैलाब सतर रियासतन हंद वजराय आलान से टेलीफोन पे कतबात तो दुख तिम मरकजी सरकार दस प्रेत मुमकिन मदद यकीन। दाखिल वजीरन कर महाराष्ट्र गुजरात केरलम तो जम्मू कश्मीर कन वजराय आलान सत यह दौरान तमो इन रियासतन तो यूटियन अंदर बहर रूद तो सैलाब पत के सूरत आल साम हिच। जम्मू कश्मीर किस जम खस मज हाल बहर रूद सपदेमस नुकसान साम हवान दाखिल वजीरन यकीन मरकजी सरकार थावे मुतासरन हज बाजाबादकारी बापत प्रेत मुमकिन मदद आयतन। अत दौरान भारतीय मौसमियात महकमन वोनमुत शुमाली बहर अरब राजस्थान हरियाणा तो पंजाब कन बाकी हिस्सन मन वाल दोन दोहन दौरान जनूब मगरबी मानसून च पेशकदमी बापत हालात सेठा साजगार। आईएमडीएन आज अरुणाचल प्रदेश आसाम बिहार मशरकी राजस्थान मध्य प्रदेश तो मगरबी उत्तर प्रदेश मज भार रूद पेशगोई करम। इजाजत हन ब्रो बूजू खास खास खबर बेफिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी त्रेमिस भारत ऑस्ट्रेलिया समिटस मज शिरकत करने बापत मेलबॉर्न वतमित भारत रूसन बीसीआर पासिल प्लेटफार्मस पे दहशतगर्दी हूं रोट करने के सिलसिले में इश्तराक मुस्तकम करने के पन्नस अजमस फिर दुत दिफाई तहकीक तो तरक्की हिंज तंजीम डीआरडीओ ओडिशा किस चांदीपुर में तवील दूरी हिंद गाइडेड रॉकेट पिनाक कामयाब आजमाइश करम तो मरकजन सैलाब सतर रियासतन प्रेत मुमकिन मदद यकीन दुत अत वो खबर हि बुलटन अंद काशन खबर हूं ब्याा बुलटन सपद आकाशवाणी श्रीनगर पे 9 बजे तो वह मिनट पे नशर अस दिव इजाजत खुदा हाफिज।
3: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, समीन प्रोग्राम पैम सुब जारी है और मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद, मेरे साथ हैं
4: रिफत आरा।
3: रिफत जी, पैम सुब तो जारी है और पैम सुब की नशरियात हमारे सामीन सुन रहे हैं, लेकिन अपने सामीन को यह भी बताते चलें कि पैम सुब के अलावा भी आकाशवाणी श्रीनगर को यह एजाज हासिल है कि यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम जो है वो पेश किए जाते हैं।
4: बिल्कुल,
3: तो एक नजर डालते हैं आज दिन भर के प्रोग्रामों पर।
4: जी,
3: तो शुरू करते हैं समीन, आज शब के 9:30 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे बुजुर्ग हिंदी खतर और आज के प्रोग्राम के मेहमान बुजुर्ग हैं

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी

0: प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम

0: बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
3: माहिरीन की आरा, तजुर्बात और रहनुमाई,
4: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि उसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
2: सेहत के मशवरे,
5: ऑर्थोपेडिक कुंती तकलीफस मंज छ ब्रॉडली कलंजम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
2: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुक्कात
3: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
2: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में

0: Sub.
1: Andrei Nabarai, Vani Meditimas.
2: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह
0: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
3: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz मीडियम वेव 268.81 MHz। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं शो पयामे सुबह लाइव मॉर्निंग शो, जो सुबह 7:10 से शुरू होकर ठीक 11:30 तक आप सुनते हैं। और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज 10:30 से 11:30 तक आप इंटरैक्टिव लाइव शो सुनेंगे, जिसमें हमारी मेहमान रहेंगी एडवोकेट सुहेला अली।

0: बजकर 10 मिनट से शुरू होकर ठीक 11:30 तक आप सुनते हैं और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज 10:30 से 11:30 तक आप इंटरैक्टिव लाइव शो सुनेंगे जिसमें हमारी मेहमान रहेंगी एडवोकेट सुहेला अली. इनके साथ बात होगी और आप भी सुनिएगा. मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ हैं.
1: जी हाँ, मैं हूं फुरकान मजीद. और रिफत जी, बात आप कर रही थी तो मेरे जहन में ये चीज आई कि आज 9 जुलाई का दिन है.
0: जी हाँ.
1: और तारीख का हवाला ना हो तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ किया नहीं, कुछ मिस किया.
0: जी,
1: तो ये जरूरी है कि सामीन के साथ तारीख का हवाला भी शेयर किया जाए और तारीख के आईने से भी हम बात करें और तारीख का आईना भी देखें और देखें जरा कि आज का जो दिन है तारीख में किस कदर अहमियत रखता है और आज के दिन क्या क्या ऐसे खास वाकयात हुए हैं या कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने आज के दिन को अपनी जिंदगी के लिए एक तारीख बनाई है. और आज हम वो तारीख का वरक जब उलट फिर हम उनका कर रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि कुछ ऐसे अशकास थे जिन्होंने जो काम करके गए
0: बिल्कुल
1: और हमारे लिए कुछ छोड़ कर गए कि आने वाली जो तारीख है वो आपको भी याद रखेगी. आप हमारी ही तारीख दोहराते रहेंगे या कुछ खुद भी करेंगे.
0: क्या बात.
1: तो ये बात बिल्कुल जरूरी है कि तारीख का हिस्सा तो हम सब हैं लेकिन तारीख कायम बहुत कम लोग करते हैं.
0: सही कहा.
1: तो आज की तारीख की अगर हम बात करते हैं 9 जुलाई की जो तारीख है इसे भी कुछ अहम वाकयात हुए हैं पूरी दुनिया में भी और हिंदुस्तान की तारीख में भी. एक खास चीज़ ये हुई है कि आज 9 जुलाई जो है हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए खसूसी अहमियत रखता है क्योंकि इस रोज़ अजीम फनकार गुरुदत्त, जिनका पूरा नाम गुरुदत्त वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण है, और संजीव कुमार, जिनका पूरा नाम हरिहार जेठालाल जरीवाला है, पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से हिंदुस्तानी सिनेमा को नई बुलंदियों तक पहुंचाया.
0: सही कहा आपने. देखिए, गुरुदत्त, जिनका पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण है, 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक में पैदा हुए हिंदुस्तानी सिनेमा के अजीम अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज थे. उन्होंने अपनी फिल्मों में इंसानी जज्बात, समाजी हकीकत और फनी जमालियत का ऐसा इम्तिजाज पेश किया जो आज भी एक मिसाल समझा जाता है.
1: देखिए, कुछ जबरदस्त फिल्में जो हैं इनकी मशहूर रही.
0: जी जी.
1: और खास तौर पर हम जिक्र करेंगे कुछ फिल्मों का जिनसे इनको ज्यादा शोहरत मिली और उनमें खास तौर पर है प्यासा, कागज के फूल, चौधवी का चांद या साहिब बीबी और गुलाम.
0: सही कहा आपने.
1: देखिए, जो टाइम मैगजीन है मारूफ बैन अल-अक़वामी जरीरे यानी टाइम मैगजीन ने प्यासा और कागज के फूल को दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया है.
0: बिल्कुल.
1: बात और भी होगी तारीख के हवाले से. देखिए, यहाँ भूल बनता है कि चौधवी का चांद जो है इस फिल्म का ये नगमा.

0: जी, नगमा आपका फेवरेट है, आप नगमा सुन भी लिया हमने और समीर ने भी ये नगमा, उम्मीद है कि एंजॉय किया होगा। हम तारीख का हवाला दे रहे हैं
1: जी,
0: बात तारीख पर हो रही है, लेकिन इस वक्त वक्त हमें ये कह रहा है कि अभी कुछ देर के लिए आप रुकिए, आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरें सुनते हैं, उसके बाद तारीख के मजीद हवाले भी समीर तक पहुँचाएंगे, लेकिन पहले उर्दू खबरें सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातजा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बैलोकमी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शर तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं।

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है, सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाज़े किया।
1: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
0: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मदद किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: सीओज फोरम के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने इक्तसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है, जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामा निगार के पास चलते हैं, जो वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वज़ीर आज़म मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के

0: तीन रोजा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीराजम की दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है ताकि किसानों के मुफादात का तहफ़ किया जा सके। ज़रात और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीन बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज किया जा सकेगा। सखलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातजा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके ख़ानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फ़ायदा पहुँचेगा। असातिज़ा और उनके अहलखाना को समाजी तहफ़ुज़ फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमतनामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असातिज़ा की सेहत और समाजी तहफ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमा बुनियादी तालीम के मुलाज़मीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़ुज़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौयत का पहला इकदाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनाकिद किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisirnet.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैन अल-अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 7% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप ششماہی रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ज़ेली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरियों का काफी राहत मिला। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से खत्म हो गई है। صدر ٹرمپ نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ اپنے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے تازہ حملے جوابی کارروائی میں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے لیے بھی

0: खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्नब परकन ने 36 साल में विमंडल जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वजीर आजम का यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को एक नई समत देगा। रोजनामा प्रताप ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने 3 रियासतों के वज़राए आला से फोन पर बात करके मुतासर इलाकों का जायजा लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, मशरक़ वस्ता में फिर जंग के खतरात, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा ख़त्म किया। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है, विजय दिवस से पहले फौज ने कारगिल के जाबाजों को याद किया, नायब सदर जमहूरिया आज 1 रोज़ा दौरे पर उड़ीसा जाएंगे।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंटोनी अल्बानीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंटोनी अल्बानीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं।
3: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
4: माहिरीन की आरा, तजुर्बा और रहनुमाई,
5: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि उसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
3: सेहत के मशवरे,
6: ऑर्थोपेडिक कुंत तकलीफस मंज ब्रॉडली करन क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
3: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
4: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
3: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम सुबह,
4: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयाम सुबह,
3: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर पयाम सुबह।
2: यासमीन, पयाम सुबह की नशरियात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। दोबारा आपका खैर मकदम करते हैं, मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद और आज की नशरियात में मेरे साथ हैं
7: रिफत आरा।
2: रिफत जी, हमने सामीन के साथ ये वादा किया था कि खबरों के उस पार हम तारीख के आईने को एक बार फिर देखेंगे और देखेंगे कि मजीद क्या कुछ आज के दिन के हवाले से तारीख में हुआ है।
7: बिल्कुल,
2: तो बात करते हैं तारीख के हवाले से और बात करेंगे हम सन 1816 की। आज ही के रोज 1816 में

0: अर्जेंटीना ने स्पेन से आजादी हासिल की थी।
1: बिल्कुल, आज 9 जुलाई है। 1819 में आज ही के दिन सिलाई मशीन के मौजूद एलियास हो की पैदाइश भी हुई।
0: हिंदुस्तान की तारीख में भी आज एक अहम दिन था, वो ये कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में आज ही के रोज इसका क्याम अमल में लाया गया।
1: 1951 में हिंदुस्तान का पहला 5-year प्लान शाया किया गया आज ही के दिन यानी 9 जुलाई को।
0: जी हां समीन, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 1969 को शेर इन अ लाइन को कौमी जानवर करार दिया था। बाद अजा 1973 में शेर की जगह टाइगर को कौमी जानवर बना दिया गया।
1: बहामास 1973 तकरीबन 300 साल बरतानवी नौ आबादियाती इख्तदार से आजाद हुआ था आज ही के दिन।
0: जमीन तारीख के हवाले से कुछ और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पहले रुकते हैं एक दिलचस्प कश्मीरी नगमे के लिए।

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन एफएम 213.5 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम पयामे सुबह, और हम बात कर रहे हैं तारीख के हवाले से। नगमे से पहले बहामास में 1973 को तकरीबन 3 साल बरतानवी नौआबादियाती अखदार से आज़ाद हुआ था, इस बारे में हमने बात की। और साउथ अफ्रीका में आज ही के दिन 1991 को दोबारा ओलंपिक गेम्स में शिरकत की इजाज़त मिली साउथ अफ्रीका को आज ही के दिन।
1: जी समीन, तारीख के हवाले से यह भी खबर कि 1991 में आज ही के रोज़ मारूफ शायर शहरयार भोपाली का भी इंतकाल हुआ।
0: जी हाँ, 2004 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम के लिए अपने 42 रुकन ममालिक के लिए खसूसी फंड कायम किया आज ही के दिन।
1: समीन, आज ही के रोज 2007 में हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी साइंसदान हिमांशु जैन को शीशा साजी यानी ग्लास साइंस के शबे में नुमाया खिदमत पर ऑटोस्कॉट रिसर्च अवार्ड से भी नवाजा गया।
0: 2008 में आज ही के दिन ईरान ने तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले 9 मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा किया।
1: समीन, आज ही के रोज साउथ सूडान ने 2011 में एक रेफरेंडम के बाद आज़ाद मुल्क बन गया, और जिसमें 98.83% अवाम ने आज़ादी के हक में वोट दिए।
0: जी हाँ समीन, आज ही के दिन यानी 9 जुलाई को 2015 में मुमताज शायर और अदीब सरदार अंजुम का इंतकाल हुआ।
1: समय ये थी वो जानकारी जो तारीख के हवाले से हमने आप तक पहुंचाई।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
2: माहिरीन की आरा, तजुर्बा और रहनुमाई,
3: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
1: सेहत के मशवरे,
4: ऑर्थोपेडिक कुंत तकलीफस मंज ब्रॉडली करनिम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
1: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
2: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
1: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह।
2: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह।
1: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
5: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन सुबह के 9:20 हो रहे हैं। आइए खबरें सुनते हैं, पहले कश्मीरी में, उसके फौरन बाद उर्दू में।
6: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:00 सपद खबर बुलेटिन हूँ मंजूर अहमद। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया किस पन्नस हम मनसब एंथनी एल्बनीज सत बात करान, दशवे लीडर करन कारबार, बचाव, टेक्नोलॉजी, तलीम तो अवामस दरमियान रबत पायदार बनानस मुतलिक मामलन पे ख्याल बाबत। वजीर अजम सिंद अम दौर सिल भारत तो ऑस्ट्रेलिया दरमियान शरकत नवन थजरन तम वात मदद। अमे ब्रह वजी अजम रात ऑस्ट्रेलिया किस त्रेन दोहन सरकारी दौरस पे मेलबोर्न। मेरा युवा भारत डायरेक्टर नितिन हांगलोवन कोर लोक भवन श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुलाकात। अत दौरान दिस तमो LGS जम्मू कश्मीर में नौजवान बाख्तियार बनाने बापत माए भारत कन इकदाम नस्बत जानकारी। अत दौरान इन एडवोकेट तबस्सुम रहीमन LGS सत मुलाकात कर बडगमस मं सर बटन हंद मालिकन हंद मामले तिज नोटस मथे पोर स्टूडेंट राइट्स एक्टिविस्ट तो गांधी किंग फाउंडेशन जम्मू कश्मीर सेक्रेटरी इंजीनियर एहतशाम खानन LGS सत मुलाकात। अत दौरान कौर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर डायरेक्टर डायरेक्टर न्यूज काजी सलमानन तो लोक भवन में LGS सत मुलाकात। तमो दिस लेफ्टिनेंट गवर्नरस दूरदर्शन तरफ नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तो दोमन फलही स्कीमन नस्बत पेश करने यवान बेदारी प्रोग्रामन हवाल जानकारी। रात सपुद SKICC श्रीनगर स्कूली तलीम महकमे तरफ एजुकेशन कनक्लेव 2017 बुनियाद से बुलंदी तक मुनद। अत दौरान कौर वजीर आला उमर अब्दुल्ला तलीमी शोबस में बुनियादी ढांचस वसत दिन बापत तुलने यवान केंचन कदमन हुंद एलान। तमो बगरव नवन तैनात करन आमतन एकिस हत सदहन लेक्चररन मज तैनाती हिंद आर्डर। अत मौक पे वजीर आला तलीम हिज अहमियत वतलावान जि सरकार थाविन तलीम हुंद मियार थजरन तम वातनावनस मज कांह ति परगी।
7: हमारी लगातार कोशिश है कि जहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, खासकर जमीनी सतह पे, कटिंग एज लेवल, बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिल अप के लिए रेफर किए हैं।

0: ज्यादा लगता है। ऑर्डर तैयार हुए, उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करें।
1: तकरीबन काबिनी वजरा सकीना यद्दू, जावेद अहमद डार, वजीर अला के मशीर नासिर असलम वानी, कई अरकानी कानून साजिया और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दरियसना वजीर तालीम सकीना यद्दू ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में जेर तालीम 9वीं से 12वीं जमात के AAY तबके के तलबा का पूरा फीस माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तारीखी फैसले से वजीर अला अमर अब्दुल्ला की तरफ से किए गए वादे को पूरा किया गया है। खुशगवार और सुहाने मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक लगभग 1,40,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। बेशतर यात्री गुफा में हाजिरी देने के बाद वापस अपने अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री वादी की बेमिसाल खूबसूरती और मुनफरिद मेहमान नवाजी से काफी मुतमईन हैं। दरियसना आज भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से 5,663 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ, जिनमें से 2,370 यात्री बालतल जबकि 3,293 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। नायब वजीर अला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कल उधमपुर और कटरा का दौरा करके वहां तरक्याती कामों और कलीदी नौयत के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड अस्पताल का भी दौरा किया और वहां फर्स्ट जकलाई के एक सूबेदार की इयादत की। बाद में उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी मुआयना किया और इसके काम की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथिर ने यूसमर्ग, हाईजन, नागबल और बडगाम के दीगर इलाकों में सासकी के तहत दरदस्त लिए गए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इन कामों को की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कामों के मियार के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कई मकाम पर अवामी वफूद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का जायजा लेते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में टीबी स्क्रीनिंग मुहिम के तहत हाई रिस्क देहात की निशानदेही की जानी चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के इलाकों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 6,85,000 अफराद की निशानदेही की गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ट्रैफिक की बेहतर निजामत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम, नीज कलीदी सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने और लोगों की आवाजाही में आसानी पैदा करने के लिए बैन महकमा जाती तआवुन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन के तहत हारी पर्वत रेंज का दौरा करके वहां पेड़ लगाने, लैंडस्केपिंग और इलाके की खूबसूरती को बढ़ावा देने के लिए दरदस्त लिए गए दीगर इकदाम का जायजा लिया। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन, सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश हमारे शब खबर की पेशकश, शहर शहर मंजर।
3: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश, शहर शहर मंजर।
4: आदाब। अवामी मुतालबात और मसाइल पर मबनी शोबे खबर के प्रोग्राम शहर शहर मंजर का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम के आगाज में आइए सुनते हैं हमें मौसूल हुई कुछ फोन कॉल्स।
5: مسئلہ روڈ آئی نہ ترا کیا لچھ کارنی پہ نرگڑ چک تھی یہ لگ بھگ 2 کلومیٹر غلام محمد ڈار سے بیرو میر پہ کار کران دور ڈپارٹمنٹ اخ کدل اخ آج برو 10-15 ورین کھن کھٹ

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉल स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे

0: तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नश्र सदान बलि बोजो प्रोग्राम।

0: पास हुई। बट वहां से निकल के जब मैंने यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया, मैंने होम साइंस में भी दिया, मेरी सिलेक्शन भी हो गई।
1: अच्छा।
0: मुझे एक पैशन था।
1: अच्छा।
0: कि मैं लीगल साइड को चुनूं।
1: जी,
0: तो एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई किया और मैंने एलएलबी कश्मीर यूनिवर्सिटी से डिग्री मैंने हासिल की।
1: वाकई में एक बहुत कमाल का शिफ्ट है, होम साइंस से लॉ में आ जाना। चलिए बढ़िया। और आपने बहुत सारा काम किया है, अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें, लेडीज के हवाले से बात करें तो करती हैं आप ख्वातीन और बच्चों के मुकदमात पे काम करने की तरफ जो आपका रुझान है वो कैसे पैदा हुआ?
0: जी, पहले तो मैं ख्वातीन के बारे में बोलूँगी। मैंने देखा कि ख्वातीन और बच्चे जो हैं वो अक्सर अपने हकूक से नावाकिफ होते हैं और इन्हें कानूनी मामलत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू हमारे मेल्स।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी एहसास ने मुझे इस शोबे में ज़्यादा काम करने की तरगीब दी ताकि मैं इनकी मौसर नुमाइंदगी कर सकूं।
1: जी जी।
0: अदालतों में चाहे हो या किसी और फोरम में हो, किसी कमीशन में हो, तो इस चीज़ से मैं अट्रैक्ट हुई कि मैं लेडीज़ के लिए कुछ करूँ, बच्चों के लिए करूँ।
1: जी जी।
0: तो और रहा सवाल बच्चों का, देखिए इन के मुकदमात में सबसे अहम बात यह है कि बच्चे इज्जत नफ्स, राजदारी और जहनी कैफियत का ख्याल उसमें रखा जाता है। तो ताकीद, समाजी बदनामी और हसास अंदाज में तफ्तीश जो होती है, मतलब उस चीज़ के बारे में मैं काम करना चाहती थी। तो उसी से मैं चाइल्ड राइट्स के लिए भी मेरा ये समझे पैशन बढ़ गया।
1: जी जी जी। अच्छा ये बताइए मुझे, आपके ख्याल में ख्वातीन को इंसाफ के हुसूल में सबसे जो बड़ी रुकावट है वो इस वक्त क्या है?
0: जी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो खामोशी यानी साइलेंस।
1: जी जी।
0: कानूनी आगाही की कमी, अपने बेसिक राइट्स, अपने लीगल राइट्स की जानकारी ना होना और समाजी दबाव और बाज़ औकात माशी इन्हसार है। जब ख्वातीन अपने हकूक जानती है तो इंसाफ तक इनकी रसाई आसानी से हो जाती है। और अक्सर हमारी ऐसी ख्वातीन है जो देखा गया है, खसूसी जो इलिटरेट औरतें होती हैं हमारी गाँव में, दूर दराज इलाकों में, देहातों में, उन्हें अपने बेसिक राइट्स के बारे में भी पता नहीं,
1: पता नहीं
0: है। अच्छा, किसी औरत के साथ कोई क्राइम होता है, कोई ज्यादती होती है, तो उन्हें पता नहीं है हमें किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। और विद द रिजल्ट फिर उन औरतों के साथ जो होता है वो तो खैर पता ही है, डाउरी डेथ्स होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, तो ये चीज़ें फिर सामने आ जाती है। और बेसिक रीज़न इसका है कि उन्हें अपने जो उनके बेसिक हकूक हैं, राइट्स हैं उनके, उनकी बेखबरी।
1: अच्छा, उन तक हम कैसे पहुँचे, उन तक ये कैसे उनको ये इल्म हो कि उनके जो कानूनी हकूक है वो क्या है, इसके हवाले से क्या काम हो रहा है?
0: जी बिल्कुल। देखिए, जितनी भी हमारी औरतें हैं, देखिए पहले एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मतलब एक क्राइम जो भी होगा उसके लिए मतलब ये इजी टारगेट होती है औरतें और बच्चे। तो इस चीज़ के लिए हम काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, दूर दराज पेरिफ्रीज में, दूर दराज एरियाज में, इवन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तक जाके हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। हम लोग डोर टू डोर अवेयरनेस करते हैं, तो उस चीज़ से काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई और आज औरतों को अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पता चलने लगा है कि उनके हकूक क्या है। और अगर उन हकूक की पामाली हुई तो उन्हें ये भी पता है कि हमें किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है, कौन सी एजेंसी है हमें जहां जाना है। और उसके अलावा आज कोई फॉर एग्जांपल दूर दराज इलाके का, आपको पता है यहाँ हमारे मौसमी हालात बहुत सख्त हैं, तो सर्दियाँ भी काफ़ी सख्त होती है, बर्फबारी होती है, तो कुछ औरतों का किसी अथॉरिटी जैसे पुलिस स्टेशन है, वुमेन्स पुलिस स्टेशन है, वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल, बड़ा दुश्वार होता है। लेकिन आजकल वो चीज़ भी अब समझे ख़त्म ही हो गई है, बिकॉज फ़ोन तो सबके हाथ में होते हैं आज, मोबाइल फ़ोन, तो हम हेल्पलाइंस काफ़ी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं, वुमेन्स हेल्पलाइन, चाइल्ड लाइन, इवन एल्डर लाइन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, तो उन हेल्पलाइन पे टोल फ्री नंबर डायल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उन्हें कानूनी सलाह मशवरा जो भी चाहिए वो

0: लाने इसी साल यानी 2026 में फरवरी के महीने में बेस्ट पैनल लॉयर अवार्ड इन जम्मू एंड कश्मीर दिया।
1: क्या बात है, बहुत खूब। देखिए सुहेला साहिबा, हमारा जो मकसद होता है आप जैसी कामयाब खातून को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का, वो ये है कि हमारी जो बहुत सारी ख्वातीन हैं, कुछ बहुत टैलेंट रखती हैं, कुछ बहुत तालीम याफ्ता भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाती हैं। तो आपको यहाँ लाने का मकसद हमारा ये होता है कि उनको इंस्पायर किया जाए वो जी। और आपने इतना सारा काम किया है और आप काम कर रही हैं, कोई ऐसा मुकदमा या तजुर्बा हमारे साथ शेयर कीजिए जिसने आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला हो।
0: जी देखिए, पहले जब आपने बात की, अभी आपने बोला कि बहुत सारी ख्वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें इनक्रेजमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब मेरे प्रोफेशन में भी, मेरी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ स्मूथली मिल गया।
1: जी जी,
0: मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आए। मतलब एक स्टेज था कि मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल क्विट की थी, मैंने छोड़ दी थी प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। तो काफ़ी सालों तक मैं कोर्ट से बिल्कुल कोई टच नहीं लिया,
1: अलग रही आप।
0: जी लेकिन खड़े उठने के लिए इंसान में मतलब वो हिम्मत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए,
1: हौसला
0: किसी
1: होना
0: को
1: चाहिए।
0: सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता।
1: सही बात है।
0: तो जब मैं कोर्ट गई, ये मैं अपने सामीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ, खसूसन हमारी जो ख्वातीन है उनके साथ, जब मैंने वापस कोर्ट रिज्यूम किया, कुछ साल मुझे गैप आई, तब मेरे पास एक भी केस नहीं था।
1: अच्छा।
0: स्पेशली मैं बात मैसेज शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे यंग बडिंग लॉयर्स हैं, फीमेल लॉयर्स हैं, उनके लिए मेरे पास कोई केस नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल केस। जब मैं कोर्ट चली गई तो यहाँ मैं अपने वालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एनकरेज किया। उन्होंने मुझे बोला आप जाओ, आप घर से निकलो, आप घर में नहीं बैठो, भले आप कोर्ट रूम में, आप लाइब्रेरी में बैठो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, कुलीग्स के साथ जाओ, हैव अ कप ऑफ टी इन द कैंटीन, बट आप निकलो यहाँ से, घर में नहीं बैठो। तो मैंने उसी पे अमल किया, तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मेरे पास केसेस आने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज शुक्र अल्लाह का किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब आप कह रही हैं कोई ऐसा केस जिसने जो एक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो।
1: बिल्कुल
0: जी, ऐसे तो मैं पहले जनरल केसेस लेती थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला आजकल हेल्पलाइंस हैं, ऑनलाइन लीगल एडवाइस मिलती है, तो मैं एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी जहाँ पर डिजिटल वो लीगल एडवाइस लोगों को दी जाती थी, ऑनलाइन लीगल एडवाइस दी जाती थी। तो एक बार मुझे एक कॉल आया एक लेडी का, शी वॉज इन डिस्ट्रेस, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उसकी आवाज़ इतनी सहमी हुई थी कि मुझे लगा पता नहीं क्या बड़ा हादसा इनके साथ हुआ है।
1: जी जी।
0: तो वो लेडी कुपवारा की थी।
1: अच्छा।
0: कुपवारा के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाला और मेरा जो बच्चा है उसको बंद रखा, उसका बच्चा कुछ डेढ़ साल का था, दूध पीता बच्चा था, तो बहुत ज़्यादा शदीद मारपीट हुई थी, उसको सड़क पे फेंक दिया था, ये समझे।
1: जी जी।
0: और उसके मायके साइड से भी कोई नहीं था, भाई एक था, उसने भी दरवाजे बंद कर लिए। तो मैंने उससे समझाया बुझाया, क्योंकि जिस शख्स ने उसको फ़ोन करवाया वो वहाँ पर एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है वहाँ पर PLV पैरालीगल वॉलंटियर था, उसने उसको मेरा नंबर दिया था।
1: जी।
0: तो मैंने उससे ही बोला, वो जो हमारा पैरालीगल वॉलंटियर है, उसे मैंने समझाया कि आप इसको कहाँ ले जाए, कैसे करें, पुलिस स्टेशन ले जाए, उसके बाद इसको नेक्स्ट डे कोर्ट आप ले जाए। तो वो सब कुछ हमने किया। फाइनली सबसे पहले हमने कोशिश की, क्योंकि बच्चा दूध पीता था, उसे वहाँ से छुड़ाने की, तो वो ऑर्डर भी मिल गया उसको, उसे उसका बच्चा वापस मिल गया, कोर्ट में बाज़ाब्ता केस दायर हुआ। उसके बाद वो लेडी मुझे कॉल कर, मैं भी कांस्टेंट उसके साथ टच में रही, बिकॉज उसके पास फ़ोन नहीं था, तो मैं उस PLV के थ्रू उसके साथ कांटेक्ट करती थी। तो एक दिन मुझे उस लेडी का वहाँ से फ़ोन आया।
1: अच्छा।
0: आप बिलीव नहीं करेंगी, मतलब मुझे वो आवाज़ में, उसके टोन में वो जो डिफरेंस है ना, अभी भी याद है, क्योंकि जिस टाइम वो डिस्ट्रेस में थी, जब उसने मुझे कॉल किया, उस टाइम जो उसकी आवाज़ थी,
1: सहमी सहमी आवाज़,
0: फिर जब उसने मुझे पोस्ट, जब उसको रिलीफ मिला, कॉल किया, वो आवाज़, वो सेटिस्फैक्शन मैंने खुद में फील की।
1: क्या
0: मतलब मुझे लग रहा था सच में, मतलब मैंने अगर इसको रिलीफ पहुंचाया, मतलब ये इसको कितना रिलीफ मिला होगा। और अभी भी बिलीव मी, अभी भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन है कि इस औरत को मेरी वजह से रिलीफ मिला, और वहीं पे मैंने ये आज़म किया।

0: कि अब मैं औरतों और बच्चों के वेलफेयर के लिए, इनके लीगल राइट्स के लिए काम करूंगी. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर
1: टूवर्ड्स
0: वीमेन एंड चिल्ड्रंस राइट्स.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये आपने काम किया है. देखिए, आपने अभी बात की कि आपके वालिद साहब ने आपको बहुत इंस्पायर किया, उसके बाद आप फिर निकली. हालात हो जाते हैं ऐसे, हर्डल्स आती हैं लाइफ में, और मुश्किलात से जब हम आगे निकलते हैं, मुश्किलात से लड़कर जब हम आगे निकलते हैं, तो हमारा रास्ता बड़ा स्मूथ सा हो जाता है, क्योंकि एक हिम्मत हो जाती है इंसान में. इंसान इसमें हिम्मत पैदा गसा इच्छवाना पत माह कब सोरे क्या करे थन, तो ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत बांधने की ज़रूरत है, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई आपकी हौसला अफजाई करे. जैसे आपने कहा कि आपके वालिद साहब आपके साथ रहें, जिन्होंने बोला कि आप चाय का एक कप लीजिए कैंटीन में, लेकिन आप घर में मत बैठिए. देखिए, ऐसा ही होता है, और इन्हीं चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं. अदालत के अलावा आप अवाम में कानूनी शऊर पैदा करने के लिए काम करती हैं. हमारे सामीन को बताइए क्या काम करती हैं आप.
0: जी, अदालत के अलावा हम जो केसेस हैं जो जिनमें हम डील करते हैं, उनके अलावा हम जो स्कूल और कॉलेजेस हैं और या मुख्तलिफ इदारे जो हैं हमारे, उनमें कानूनी आगाही के प्रोग्राम यानी लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, बच्चे, घरेलू तशद्दुद जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के नाम से कहते हैं, और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी हकूक के मौज़ूआत पर लोगों को हम जानकारी देते हैं. तो ये हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं, सब जितने डिस्ट्रिक्ट्स. खसूसी तौर पर हम जो पेरिफ्रीज है, जो बिल्कुल सिटी से कट ऑफ एरियाज हैं, वहाँ पर हम करते हैं, या वो एरियाज जो क्राइम हब है यहाँ कश्मीर डिवीजन के, वहाँ पर हम करते हैं, जहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पर हम ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोग्राम्स का हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है. इनफैक्ट हमें बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस से हमें ये रिक्वेस्ट आती है कि आप और ऐसे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लीगल राइट्स की जानकारी बच्चों बच्चियों में दें. तो ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करने की हमें बहुत सारी डिमांड आ रही है. इधर मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एक ये मैं बताऊँ, एक हमारा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के हवाले से मैं बोलना चाहूँगी अपने सामने से. श्रीनगर के ही एरिया में, बड़ा पॉश एरिया है, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम था ऑन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज.
1: ओके.
0: तो वैसे तो अब चाइल्ड मैरिज ये तो अब बहुत कम सुनने में आता है, खसूसी तौर पर श्रीनगर में. बट जब हमने प्रोग्राम वहाँ पर कंडक्ट किया, उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से, गेट के पास मुझे दो छोटी बच्चियाँ आई, हायर सेकेंडरी स्कूल था.
1: जी जी जी.
0: जिन्होंने मुझे बोला हमें आपसे अलहदगी में बात करनी है. तो उन्होंने हमें बोला कि हमारी एक बच्ची है यहाँ जिसकी क्लास 10th में शादी हुई है, वो 11th की लड़कियाँ थी. तो कहा उसकी शादी हो गई, ज़बरदस्ती घर वालों ने शादी करवाई. खैर, शादी हो गई और उसका इसी कम उम्र में बच्चा भी तवल्लुद हुआ. लेकिन उन्होंने बोला अब खैर शादी हो गई, बट वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहती है.
1: अच्छा.
0: उन्होंने मिड वे अपनी स्टडीज़ छोड़ दी, तो आप हमारी हेल्प कर सकती हैं. तो मैंने उनको बोला अभी तक आपने क्यों नहीं किसी को ये बोला. कहा हमें पता नहीं था हम किससे बोले, किस अथॉरिटी को अप्रोच करें, लेकिन आप लोगों ने यहाँ आज अवेयरनेस प्रोग्राम किया, इससे हमें जानकारी मिली. हमने उनकी हेल्प की, उस बच्ची के घर वालों को भी हमने थोड़ा समझाया बुझाया, तो उनका भी शायद प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा पढ़ाई का. तो ये मैं बात कर रही हूँ अवेयरनेस की. अवेयरनेस बड़े मतलब मुझे लगता है बड़े जोरों शोर से इस वक्त चल रही है, चाहे हमारा वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो या बाकी डिपार्टमेंट हमारे कोर्ट के. तो काफ़ी अच्छी तरह से हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं. मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी तो मुझे नहीं लगता यहाँ हमने कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो जहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम ना किया हो.
1: देखिए सुहेला साहिबा, जो आप काम कर रही हैं वो बहुत ही बेहतर काम है. अगर आपने आप डॉक्टर बनी होती या इंजीनियरिंग में गई होती तो शायद आप इतना नहीं कर पाते जितना आप कर रही हैं, ख़ास तौर पर अगर हम लेडीज़ की ख़वातीन की बात करें. तो आपने बच्चों के हकूक़ और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के शोबे में काम करने का फ़ैसला किया.
0: जी,
1: तो क्या वजह थी इसकी.
0: मैंने यही, मैंने आपसे बोला ना, कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए, कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे.

0: जिसके बाद मुझे मैं कंपेल हुई इन लोगों के लिए काम करने। देखिए मैं आपसे यहाँ बताना चाहूँगी, केसेस हैं औरतों के हैं या बच्चों के हैं,
1: जी।
0: कोई भी वकील कर सकता है। कितने सारे वकील हैं, फ्री लीगल एड है, हर किसी को वकील मिल जाएगा। खसूसी तौर पर हमारा लीगल सर्विसेज एक्ट जो है
1: जी
0: उसमें कुछ बेनिफिशरीज है जिनके लिए फ्री लीगल सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें बच्चे और ख्वातीन भी शामिल हैं। तो वकील तो मिल जाएगा, केस उनका कोर्ट में कर लेगा वो, जो भी उसमें करना होगा उन्हें रिलीफ भी दिलाएगा।
1: जी
0: लेकिन असली इंसाफ तब उनको मिलता है जब केस खत्म होने के बाद उनकी रिहैबिलिटेशन हो जाए। मैं औरतों की बात करूंगी, किसी औरत का समझे, डोमेस्टिक वायलेंस केस या सेपरेशन का केस है, ठीक है, सेपरेशन हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस में रिलीफ मिला, लेकिन उसके बाद उसकी रिहैबिलिटेशन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल
0: फिर से वो उसी एटमोसफेयर में आएगी, फिर से वो चीज़ें स्टार्ट होगी, मेंटली वो बड़ी वीक होगी। सबसे पहले उसकी काउंसलिंग, काउंसलिंग में उसकी हेल्प करनी है, उसकी रिहैबिलिटेशन में उसकी हेल्प करनी है। तो ये चीज़ें नहीं थी, इन चीज़ों ने मुझे कंपेल किया कि मैं
1: मुतासर
0: स्पेशलाइज
1: किया
0: करूँ
1: बिल्कुल।
0: इन दो फील्ड्स में। जी, तो अब क्या होता है, जैसे किसी लेडी का केस है, मैं कोशिश करती हूँ जब उसका केस खत्म हो जाए, या किसी बच्चे का केस है उसका केस खत्म हो जाए, उसे वापस समाज में कैसे लाया जाए इज्जत से। बच्चों की बात हम करेंगे, उनकी रिहैबिलिटेशन, उनकी
1: बिल्कुल
0: स्टडीज़ को वापस ट्रैक पे लाना है, उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उनको कोई स्किल सिखाना है, वो चीज़ें, तो उन पे मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, ख्वातीन का है, मेरी कुछ ऐसी मेरी समझे जिनके केसेस मेरी क्लाइंट्स थी, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था,
1: बिल्कुल
0: तो उन्हें मैंने कुछ सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के साथ लिंक करवाया, जहाँ उन्हें स्किल डेवलपमेंट भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स उन्होंने किया,
1: जी जी
0: उन्होंने
1: जी
0: छोटा मोटा स्किल सीख लिया, कुछ ने टेलरिंग का सीखा, कुछ ने कोई क्राफ्ट सीख लिया, और आज वो माशाल्लाह अपने
1: अपना
0: हाथों
1: काम
0: से
1: कर रहे हैं
0: कमा रही है,
1: बिल्कुल।
0: अपना घर भी संभाल रही है। कुछ को काउंसलिंग की ज़रूरत थी, उन्हें हमें काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करवाया। तो असली जस्टिस वो है,
1: क्या बात है
0: केस में तो हर कोई जाएगा, बट केस खत्म होने के बाद उनकी रिहैबिलिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उस पे मैं काफ़ी काम कर
1: क्या बात है। कहते हैं ना,
0: रही
1: जब इंसान का दिल मुतमईन होता है
0: जी
1: तब उसे ये
0: बिल्कुल,
1: लगता है कि मैंने सब कुछ हासिल किया, और आप जो काम कर रहे हैं बेहतरीन काम कर रही हैं।
0: शुक्रिया
1: तो एक जो मकोला है
0: जी।
1: अक्सर हम सुनते हैं, लॉयर्स आर लायर्स, ये कहाँ तक बात सही है?
0: बिल्कुल, इस पे मैं थोड़ा डिटेल में बोलना चाहूँगी। देखिए, ये तासुर हकीकत में पर मबनी नहीं है, बल्कि
1: अच्छा
0: ये एक आम गलत फहमी है लोगों में।
1: जी
0: देखिए, अगर वकील या एडवोकेट ना हो तो इंसाफ का निज़ाम मौसर तरीके से चल नहीं सकता। वकील झूठ नहीं बेचता, बल्कि कानून और गवाहों की बुनियाद पर अपने मोकिल का मौकफ अदालत में पेश करता है, और इंसाफ का तकाजा यही है कि हर शख्स को अपनी बात रखने और अपना दिफा करने का हक मिले, और इस हक को यकीनी बनाना एक वकील की जिम्मेवारी है,
1: क्या
0: ये मैं
1: बात
0: कहूँगी
1: है।
0: फ़र्ज़ है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आईन या बुनियादी हकूक जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, और इंसाफ तक रसाई को अमली शक्ल देने में वकील का बुनियादी किरदार है। और इसकी तो तारीख गवाह है कि इंसानी हकूक या ख्वातीन के हकूक और बच्चों के हकूक के तहफ़ुस में वकला ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। इसलिए चंद अफराद की वजह से पूरे पेशे पर सवाल उठाना इंसाफ नहीं है,
1: सही
0: ये
1: बात
0: एक
1: है
0: बड़ा बावकार, जिम्मेदार और खिदमत खल्क का पेशा है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस पेशे का एक हिस्सा हूँ।
1: क्या बात है, हमें भी फख्र है आप जैसी लेडीज पर जो इतना सारा काम करती हैं। और हमने तो ऐसे ही ये बात सुनी थी और आप
0: जी,
1: तक पहुंचाई।
0: नहीं नहीं ये
1: चलिए,
0: शेयर
1: हमारे
0: करना
1: सामीन तक
0: ज़रूरी
1: भी ये
0: था।
1: बात पहुंच गई कि ये बिल्कुल गलत है, कि हम अक्सर कहते हैं जो लॉयर्स हैं वो लायर्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं,
1: ये तो एक किसी ने शायद जोड़ दिया, लॉयर और लायर को जोड़ दिया तो ये मकोला बन गया।
0: जी बिल्कुल
1: खैर,
0: बिल्कुल।
1: बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ सुनते हैं एक नगमा, उसके नगमे के उस पार आपसे बात होगी।
0: जी ज़रूर।

आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन प्रोग्राम प्याम सुबह मैं आपकी मेज़बान रिफत आरा और हमारी जो मेहमान है वो है एडवोकेट सुहेला अली साहिबा, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं अवार्ड विनिंग लेडी, बहुत ही

0: काम किया है इन्होंने, लेडीज़ के हवाले से अगर बात करें या बच्चों के हवाले से बात करें। तो यहाँ पर मैं सुहेला साहिबा आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस वक्त चाइल्ड राइट्स फेलोशिप से भी वाबस्ता हैं। इस फेलोशिप के तहत आप सिर्फ अदालत में बच्चों के मुकदमात की पैरवी ही नहीं करती बल्कि उनकी बहाली यानी रिहैबिलिटेशन, जो अभी आपने कहा रिहैबिलिटेशन, और मशवरे में बाइज्जत वापसी के लिए भी काम करती हैं। इस तजुर्बे के बारे में हमारे सामीन को बताएं और ये जिम्मेदारी एक वकील के किरदार को किस तरह मजीद मुअस्सर बनाती है, ये जानना चाहेंगे आपसे हम।
1: जी हाँ, मैं इस वक्त बच्चों के हकूक के हवाले से एक फेलोशिप से वाबस्ता हूँ
0: जी।
1: ये फेलोशिप मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बच्चों के लिए काफ़ी काम कर रही थी, लेकिन इसी बीच मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा और मुझे इस फील्ड में अपने जानकारी मिले, मैं काम करना चाहती हूँ, तो मैं इस फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हो गई
0: जी। जी,
1: तो इस फेलोशिप की जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारा किरदार सिर्फ अदालत में बच्चों की नुमाइंदगी तक महदूद नहीं होता, बल्कि हम इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को उसके बेहतरीन मुफाद के मुताबिक तहफ़ुज़, बहाली और दोबारा मुआशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। हम मुख्तलिफ़ इदारों के साथ राबता रखते हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पुलिस है या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, ताकि इन ज़रूरतमंद बच्चों और बच्चियों को तालीम, मशावरत, नफ्सियाती मुआवनत यानी काउंसलिंग वगैरह, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, या जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और दीगर बहाली की सहूलियात से जोड़ा जा सके, उन्हें हम डिफरेंट स्कीम्स के साथ लिंक करवाते हैं। और इसके साथ साथ हम मुतल्लिका इदारों, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ हम आहंगी पैदा करते हैं ताकि कानून में दिए गए हकूक अमली तौर पर बच्चों तक पहुँच सके। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एसेंस है इसका
0: जी।
1: और
0: जी,
1: मेरे लिए ये फेलोशिप जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि इसने मुझे ये एहसास दिलाया है कि एक वकील की जिम्मेदारी सिर्फ मुकदमा जीतना नहीं,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि एक बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करना भी है। और अगर हम किसी बच्चे की ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीली ला सकें तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।
0: क्या बात,
1: जैसा मैंने आपसे पहले भी मैंने बोला कि केस बच्चे का कोई भी उसमें रिप्रेजेंट कर सकता है बच्चे को, लॉयर्स हैं, फ्री लीगल सर्विस है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन असली बच्चे को इंसाफ दिलाना केस के बाद है, उसकी रिहैबिलिटेशन, उसकी वापसी सोसाइटी में इज्जत से, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
0: क्या बात है, और उस पर आप काम करती हैं
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। चाइल्ड सेक्चुअल अब्यूज एक निहायत हसास मसला है, जानना चाहूँगी मैं आपसे कि वालिदैन किन इब्तदाई अलामात पर तवज्जो दे ताकि बर वक्त अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें। आजकल जो हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं
1: जी। देखिए, इन मुकदमात में सबसे अहम बात यह है कि बच्चे की इज़्ज़त नफ्स और राजदारी और जहनी कैफियत का ख्याल रखा जाए जब इनका केस कोर्ट में होता है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें ताखीर या समाजी बदनामी और हसास अंदाज में तफ्तीश नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं। अब रहा बच्चों को कैसे सेव किया जाए
0: जी, बिल्कुल, वालिदैन कैसे जी, इस पर काम करें।
1: देखिए, जो ये मैं बताऊंगी अक्यूज्ड या जिसे हम क्रिमिनल कहते हैं, वो हमेशा सोसाइटी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन अब हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं,
0: एहतियाती तदाबीर,
1: एज अ पेरेंट, एज अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी या कंट्री मैं बोलूँगी, हमें ख़ास ख्याल रखना है। पहले ही यहाँ अवेयरनेस बच्चों को देनी है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। तो जैसे आजकल बड़ा इसका ये है, गुड टच एंड बैड टच स्कूल्स में सिखाया जाता है।
0: सही बात,
1: पेरेंट्स को भी उन पे अमल करना है। अच्छा, अपने बच्चों को जितना हो सके अपनी निगरानी में रखें, मैं एक केस यहाँ पर रिसेंटली ये जून के महीने में

0: वो आप लोगों के साथ, अपने सामीन के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का केस है। 3 साल बच्ची थी
1: जी जी
0: माँ बाप इलिटरेट थे,
1: okay.
0: मजदूरी करते थे। 3 साल बच्ची का रेप हुआ। वो क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, जो पेरेंट्स थे वो मजदूरी के लिए निकलते थे और अपनी इस 3 साल की बच्ची को अपने हमसाए के घर में छोड़ते थे। हमसाए के घर में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, मर्द औरतें भी हैं, वहाँ छोड़ के जाते थे। शाम को 5-6 बजे वो वापस आते थे। तो उस दिन, ऑन दैट पेटफुल डे, ये उन नेबर्स के घर में थी और इसी बच्ची का चचेरा भाई जो कि मेयर 15-16 साल का था, तो वो वहाँ आया। उसने इन नेबर से कहा मैं इस बच्ची को ले रहा हूँ, तो इन्होंने बोला कहाँ, बोला हम खेलने जाएंगे। इसने बच्ची को वहाँ से निकाला और रेलवे ट्रैक के पास एक टीन का शेड था वहाँ जाके उसने इस मासूम बच्ची का, खुद भी माइनर था, इस बच्ची का रेप किया और उधर ही छोड़ दिया उसको, खुद वापस आ गया। तो शाम को जब उसके माँ बाप घर आए, बिस्तियार तलाश के बाद बच्ची नहीं मिली, नेबर से भी पूछा, उन्होंने कहा उसे अपना चचा जात भाई ले गया यहाँ से।
1: बिल्कुल,
0: ढूंढ रहे फाइनली बच्ची मिल गई उसी शेड में और उसका रेप हुआ था। जी, तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, हमारी बच्चियाँ हैं, हमें उन्हें क्या ज़रूरत है किसी और
1: के
0: हवाले
1: हवाले
0: करने।
1: करना अरे अरे।
0: अब ठीक है अगर माँ बाप मजदूरी पे जाते हैं, आजकल तो फैसिलिटीज़ है वैसी, बच्चे को साथ ले जाए, छोटी बच्ची है, अगर स्कूल जाने की एज नहीं है तो अपने साथ ले जाइए उनको।
1: बिल्कुल,
0: ये प्रोटेक्शन तो अपने बच्चियों को दे दे, नॉट इवन बच्चियों को, मैं बोलूंगी लड़कों की भी हमें हिफाजत करनी, जितनी हमें लड़कियों की हिफाजत करनी है उतनी ही हमें लड़कों की हिफाजत करनी
1: जी
0: है।
1: यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कहीं कहीं पर यह भी बताया जाता है कि जो काम की जगहें हैं वहां पर औरतें अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकती, क्या ऐसा कोई कानून है कि वो ले सकती हैं या कानूनी तहफ़ुज़
0: बिल्कुल,
1: हासिल
0: हमारे
1: है?
0: लेबर लॉज में ऐसे प्रोविजन है
1: अच्छा,
0: कि जहाँ पर औरत का बच्चा होगा उन्हें वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, और अगर
1: अच्छा,
0: ऐसा नहीं होगा, कोई जो एम्प्लॉयर होगा वो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं, हमारे
1: सकती
0: लेबर ऑफिसर के पास, लेबर डिपार्टमेंट में लेबर कमिश्नर के पास
1: अच्छा,
0: कंप्लेन कर सकते हैं, तो ये तो उनका राइट है।
1: हाँ बिल्कुल, ये अवेयरनेस की
0: हाँ
1: कमी
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, ये अवेयरनेस की कमी है, इसी अवेयरनेस, यही अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंटली ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं कि लोगों में ये जानकारी आए, ये रोशनी उनमें फैले कि कैसे, किस तरह उन्हें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, लड़कियाँ
1: बिल्कुल
0: एज वेल एज लड़के, क्योंकि दोनों रिस्क पे है,
1: सही बात है।
0: स्पेशली माइनर बच्चे और बच्चियाँ, 18 साल तक के बच्चे बच्चियाँ ये ईजी टारगेट हैं, तो इनकी हिफाजत हमें करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें
1: अपनाना होगा,
0: सीरियसली लेना है, अपनाना है, ताकि हम अपने बच्चों को एक सेफ और एक हेल्दी फ्यूचर दे दें।
1: क्या बात है। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद और हरासानी के वाकयात में कानून मुतासरा ख्वातीन को किस हद तक तहफ़ुज़ फराहम करती हैं, इसके बारे में आपने बताया।
0: जी
1: ख्वातीन को अपने कानूनी हकूक से मुतालिक कौन सी बुनियादी मालूमात ज़रूरी होनी चाहिए कि हमारे लिए, जैसे आपने कहा कि वो बच्ची को साथ ले सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि इस तरह की हरासमेंट्स भी होती है कि बच्ची को क्यों साथ लाया या बच्चे को क्यों साथ लाया है, अब क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि वो फ्रीली अपना काम कर सकें?
0: जी देखिए, पहले तो
1: कानून ने कहाँ कहाँ पर तहफ़ुज़ किया है एक औरत को?
0: देखिए, कानून ने बहुत सारे ऐसे तहफ़ुज़, ऐसे लॉज औरत को दिए हैं, ऐसे राइट्स दिए हैं जिन्हें उससे एक्सरसाइज करना है।
1: जी
0: अब बस यही है, जानकारी की कमी है। मैं हर खातून से यही कहना चाहूँगी कि अपने हकूक से आगाह रहे,
1: हकूक को
0: चाहे
1: पहचाने
0: हाँ
1: और जानने की
0: उनकी
1: कोशिश,
0: बॉडी
1: एक
0: के
1: आम औरत
0: अलग
1: को भी जानने
0: हकूक
1: की
0: है,
1: कोशिश
0: बिल्कुल
1: करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तालीम हासिल करे, अपने हकूक से आगाह रहे, वो खुद पर एतमाद रखें, और अगर कभी जुल्म या नाइंसाफी का सामना हो तो खामोश न रहे।
1: खामोश न
0: ये
1: रहे,
0: मैं हर
1: बिल्कुल
0: औरत को कहती हूँ, अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि खामोशी इख्तियार, मैं ये नहीं कहती हूँ चीखना चिल्लाना है, लेकिन खामोश भी नहीं रहना है, रिपोर्ट करना है। उनके साथ कोई ऐसी ज्यादती हो रही है, जिनसी ज्यादती हो रही है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है उनका, इकोनॉमिक अब्यूज़ उनका हो रहा है, स्पीक अप, आप बोले, कंसर्न अथॉरिटीज हैं।

0: बिल्कुल बात
1: उनसे
0: सही।
1: बात करें, खामोश ना रहें बल्कि कानून से मदद हासिल करें। देखिए पहले तो बड़ा यहाँ पर हमारा था कि औरतें घरों से निकलती नहीं थी, कुछ औरतों का होता है पर्दे में ही खास कर रहती हैं।
0: जी जी जी
1: मोबाइल फोन किसके पास आज नहीं है,
0: बिल्कुल
1: वो हेल्पलाइन जो वुमेन्स हेल्पलाइन है वो नोट कर सकती हैं, अभी भी वो नोट कर सकती है हमारी खवातीन। 181 हमारा वुमेन्स हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कर सकती है 24/7, किसी भी टाइम किसी भी जगह से वो कॉल कर सकती
0: अपनी
1: है,
0: शिकायत दर्ज कर सकती है।
1: हाँ जी, उस पर उन्हें मदद मिल सकती है, कहाँ जाना है, किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है। हाँ, और अगर उनकी जान या माल को बहुत खतरा है तो उसमें कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी आगाह किया

0: देखिए, बच्चा खुद कोर्ट जा नहीं सकता है, खुद किसी अथॉरिटी के पास जा नहीं सकता है. बच्चा यानी जो 18 साल तक की उम्र का होगा, वो अपनी रिपोर्ट कहीं दायर नहीं कर सकता, पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है. बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, जिसे हम चाइल्ड लाइन कहते हैं, 1098, उस पर कॉल कर सकता है कोई भी ग्रीवियंस होगी. खासकर हमारी हमारी जो बच्चियां हैं, वो जब स्कूल कॉलेज से निकलती है, ईव टीजिंग होती है, ऐसे कुछ एपिसोड्स होते हैं, कॉल करें 1098 पे, कॉल करें 181 पे, कॉल करें
1: उनको.
0: बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल. अगर वो पुलिस स्टेशन जाने से हिरास करती
1: कतराती
0: है, तो बिल्कुल वो इन ऑनलाइन ये जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इनको डायल कर सकती है, उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगी. बट ये तभी, ये देखिए, ये सब चीज़ें, चाहे ये हेल्पलाइन नंबर्स हो, चाहे हमारे कानून हो, ये तभी सक्सेसफुल है जब इनका फायदा उठाया जाए.
1: बिल्कुल.
0: देखिए, आजकल फ्री लीगल सर्विस है, फ्री लीगल एड जिसे हम कहते हैं
1: जी.
0: अब कुछ औरतें होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एक वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं होते
1: जी, जी.
0: लेकिन अब उसका भी हल है, फ्री लीगल सर्विस है. हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर कोर्ट में है. जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है. वहाँ पर फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, वकील प्रोवाइड किया जाता है, जो उनका केस बिल्कुल मुफ्त में केस की पैरवी करेगा, उन्हें मशवरा चाहिए होगा वो देगा, उन्हें बिल्कुल भी एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन एक स्टैम्प पे, किसी पेपर, जुडिशियल पेपर के लिए नहीं उनको देना है, ड्राफ्टिंग के चार्जेस नहीं देने, किसी चीज के पैसे उनको, वकील हेयरिंग में जाएगा उस हेयरिंग के पैसे तक उनको नहीं देने, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है. और मैं फिर दोहराना चाहूंगी, लेकिन ये सर्विसेज तभी कामयाब होंगी जब औरतें आगे आएंगी, रिपोर्ट करेगी. अब मैं यहाँ ये भी नहीं कहना चाहूंगी कि कुछ भी छोटा मोटा मसला हो जाए घर में तो एकदम कोर्ट की ओर रजू किया, नहीं, लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ एक औरत की जान और माल को, उसके बच्चों को खतरा हो, उसके जहनी सुकून पे बात आए, तो एकदम से हम लोग हाजिर हैं वहाँ पर, हमारे पास आ जाएं. श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोमिनाबाद में लीगल एड है, वहाँ उसका फ़ायदा उठाएं. बच्चों के लिए भी वहाँ मिलेगा, मतलब पैनल लॉयर्स हमारे हैं जो उनके केसेस की पैरवी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कर सकते हैं
1: जी. ये कह सकते हैं कि हर एक कानून ने हर एक तहफ़ दे के रखा है, बच्चों के लिए, बच्चों की बात हो या ख़वातीन की बात हो. आज हम तरक्की याफ्ता दौर में हैं, लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं और लेडी एम्पावर हो रही है.
0: बिल्कुल.
1: तो बात यह है कि हम बात कहें, अपनी बात को आगे बढ़ाएं. जब इश्च करान हमेशा इश्च करान छप ییتن سوپ کز پز اس کرن تتن کر سوپ تاکہ سان گرک سکون روز برقرار. لیکن جہاں پر بات آتی ہے عزت نفس کی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے, چاہے کام کی جگہ ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تحفظ آپ کو نہیں مل رہا ہے, تو آپ قانونی سہارا لے سکتے ہیں. ہم بات اور بھی کریں گے آپ سے, لیکن یہاں پر رکیں گے کیونکہ موسیقی کہتے ہیں روح کی غذا ہوتی ہے. آپ ہی کی پسند کا ایک اور نغمہ سنتے ہیں, اس کے بعد ہم اور بات کریں گے.
0: تھینک یو.

0: जहां सामीन आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन लाइव इंटरेक्टिव शो पयाम सुबह इस वक्त जारी है और हमारी जो मेहमान हैं वो हैं सुहेला अली साहिबा, एक बासलाहियत खातून, एक अवार्ड विनिंग लेडी जिन्होंने बहुत काम किया है लेडीज़ के हवाले से, बच्चों के हवाले से। तो सुहेला साहिबा, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, इन 2 मिनट में हम आपसे एक पैगाम लेना चाहेंगे ख्वातीन को, जो आप अपने हिसाब से देना चाहती हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या पैगाम होगा?
1: देखिए, पैगाम से पहले मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हर औरत और हर बच्चे को बिला इम्तियाज़ बर वक्त और बाइज्जत इंसाफ मिले, कानूनी आगाही आम हो और बच्चों के तहफ्फुज़ का निज़ाम मज़ीद मज़बूत और मौसर बनाया जाए। तो उसके बाद

0: आता है पैगाम, मेरा पैगाम यही है कि कानून से डरने के बजाय इसे जाने, अपने हकूक और फराइज से आगाह रहें, अवेयर रहें, ख्वातीन और बच्चों का एहतराम करें और एक ऐसे माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें जहां इंसाफ, मसावात और इंसानियत को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल हो। देखिए, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती है,
1: जी
0: मसले, परेशानियाँ किसकी लाइफ में, मैं भी उनसे खाली नहीं हूँ।
1: बिल्कुल,
0: हर कोई गिरता है, एक स्टेज आता है जहाँ उसे बहुत मुश्किल आती है, लेकिन उन्हीं मुश्किलों से, उन्हीं प्रॉब्लम्स से उठकर
1: खड़े होना,
0: हाँ खड़े होना, उसी में असली जीत है। ये मेरा पैगाम है हर ख़वातीन के लिए, अपने सामाइन के लिए, कि गिरकर उठने वाला ही कामयाब शख्स है।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा पैगाम, एक बहुत ही बासलाहियत खातून से हमने लिया। हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम आपने सुना, इसमें बहुत कुछ था आपके लिए जिसे आप सीख सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि हमें आगे बढ़ने की तरगीब कैसे मिलेगी, हम कानूनी पासदारी कैसे हासिल कर सकते हैं, कानूनी तहफ़ कैसे हासिल कर सकते हैं, जिस पर अभी बात हुई। सुहेला साहिबा, सुबह सुबह हमारे कहने पर आप यहाँ आई, हमसे बात की, हमारे सामीन तक इतनी अच्छी जानकारी पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत सारी बात है, आपने मुझे यहाँ बुलाया स्टूडियो में और मैंने अपने व्यूज़ शेयर किए अपने सामीन के साथ।
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारी बातें जो हैं वो कुछ रह भी गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे और एक प्रोग्राम में आपके साथ बात हो और हम अपने सामीन तक और मज़ीद जानकारी पहुँचाए। आप यहाँ आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू।
1: फिलहाल अपने सामीन से हम कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम अब यहीं पर हम रोक देते हैं, मुकम्मल हुआ चाहता है हमारा आज का लाइव इंटरेक्टिव शो। आगे का जो प्रोग्राम है वो आप नाहिदा के साथ सुनेंगे, हमें इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक, जब तक के लिए आपका हमारा हम सब का अल्लाह हामी नासिर।
2: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
3: समीन, आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पयाम सुबह। यह आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे अगले लाइन का इंतजार कीजिए। इच आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 68.88 मीटर, एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, सूफियान मौसीकी बोजो, फनकार छे इरफाना यूसुफ तहिन सती, यमन निश बोजोती मकामे सिंदूरी।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की

0: मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India and Australia are true, vibrant democracies, two multicultural societies and two significant ocean powers whose shared values and common worldview continue to strengthen mutual trust between the two nations. Speaking at a joint press statement, along with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, the Prime Minister said the comprehensive strategic partnership has made unprecedented progress over the past few years, and the summit has added new dimensions to bilateral cooperation.
2: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, yani CECA, par तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
1: The Prime Minister said Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but it also represents the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. He said India and Australia have reaffirmed that cooperation in defence and security is the cornerstone of the partnership in an increasingly complex strategic environment.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Prime Minister Modi said India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India. He said the agreement will give fresh momentum to India's clean energy goals. Mr. Modi said cooperation in critical minerals is vital for the strategic security and clean energy transition of both countries. He announced the launch of the Australia-India Partnership on Cyber Critical Technologies and Supply Chains, AI Pacts, and said India and Australia will also work together to establish a critical minerals corridor. Earlier this morning, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and an energy crisis. He said in such times it is essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Prime Minister Modi arrived in Melbourne last evening on a 3-day visit to Australia. The US launched new airstrikes against Iran this morning. Tehran responded by targeting Bahrain, Kuwait, and Qatar, escalating crossfire that again threatened an interim deal.

जी दोस्तों, ये था दिल दिया दर्द लिया फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। और एक और गीत हमने क्यों किया है आपके लिए, ये गाया है गीता दत्त ने, शकील नोमानी के बोल है और कल्याण जी आनंद जी की मौसिकी है।

घर भी जाऊं जगा दूं मैं तूफान, संभालो दिल दरा ओ मिस्टर दिल दरा।

दोस्तों, ये था कुमार बाराबंकी का लिखा हुआ गीत तलत महमूद की आवाज़ में। फिल्म का नाम था बारादरी और मौसी का थी नौशाद। अब आपको सुनवाते हैं नीरज के बोल। इकबाल कुरैशी की मौसीकी है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और फिल्म का नाम है चा चा चा।

0: दोस्तों, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे। ये आखिरी नगमा आपने सुना ब्रह्मचारी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहाँ से खबरें नशर होंगी, पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हमनसब एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में आला सतह के भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन से खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की शराकतदारी एक इस्लाहाती और हाईटेक दौर में दाखिल हुई है। उन्होंने 2030 तक दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने से मुतलिक रोडमैप का खाका पेश किया। मेरा युवा भारत के डायरेक्टर नितिन हांगलू ने लोकभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एलजी को जम्मू कश्मीर में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए माई भारत के इकदाम से आगाह किया। दरी असना एडवोकेट तबसुम रहीम ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके बडगाम में ईंट भट्टों के मालिकान के मामला उनकी नोट्स में लाए। इसी तरह स्टूडेंट राइट्स एक्टिविस्ट और गांधी किंग फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी इंजीनियर एहतियाम खान भी एलजी से मुलाकात हुए। इसी दौरान दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के डायरेक्टर न्यूज काजी सलमान ने भी लोकभवन में एलजी के साथ मुलाकात की। उन्होंने एलजी को दूरदर्शन की तरफ से नशे मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और दीगर फलाही स्कीमों के ताल्लुक से पेश किए जाने वाले बेदारी प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी। कल SKICC श्रीनगर में महकमा स्कूली तालीम की तरफ से एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 बुनियाद से बुलंदी तक मुनाकिद हुआ। इस दौरान वज़ीर आला अमर अब्दुल्ला ने तालीमी शोबे में बुनियादी ढांचे को तकवीत बख्शने के लिए कई इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने नए तैनात किए गए 117 लेक्चररों में तैनाती के आर्डर तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आला ने तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हुकूमत मेयारी तालीम को बुलंदियों तक पहुँचाने में कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं करेगी। तकरीब पर काबीनी वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, कई अरकानी कानून साजिया और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खुशगवार और सुहाने मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक लगभग 1,40,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। बेशतर यात्री गुफा में हाजिरी देने के बाद वापस अपने अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री वादी की बेमिसाल खूबसूरती और मुनफरिद मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतमइन हैं। दरियासना आज भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से 8,150 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ, जिनमें से 3,445 यात्री बालतल जबकि 4,750 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कल उधमपुर और कटरा का दौरा करके वहां तरक्याती कामों और कलीदी नौयत के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड अस्पताल का भी दौरा किया और वहां फर्स्ट जकलाई के एक सूबेदार की इबादत की। बाद में उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का भी मुआयना किया और इसके काम की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में नशे मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत मनुष्यात मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं और यूटी को इस बिद्दत से पाक करने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर के इश्तराक से IGC लासीपोरा पुलवामा में काफ़ी मकदार में जब्त की गई नशीली अशिया को तबाह कर दिया। यह अशिया ANTF ने मुख्तलिफ ऑपरेशनों के दौरान जब्त की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ज़ाती तौर मनुष्यात मुखालिफ सरगर्मियों पर नजर गुजर रखे हुए हैं। पेश है मनुष्यात से मुतल्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू की सदारत में श्रीनगर में RBI की 37वीं यूटी सतह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में साइबर माली फ्रॉड्स और गैर मुनज़्ज़म माली सरगर्मियों पर

यह आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वां।

0: ऐसा कि मैं अखबार ले लूं, जैसे हम आप देखते हो आजकल अखबारों का दौर है, अखबार तो हम कहीं पे मतलब वो एक ट्रैश बन गया है। अखबार, मैगजीन, किताबें, आप देखें लाइब्रेरीज जो अजीम मानी जाती थी वो अब गर्दो गुबार से भरी हुई है। एक इतनी पैथेटिक सिचुएशन है कि जिसको देखकर रोना आता है। बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे सब अब हम AI पे डिपेंडेंट है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल तक मुझे भी नहीं पता था ये AI एप्स क्या होती हैं। तो यूजुअली जब हम पढ़ाते थे तो बच्चे कॉन्फिडेंटली बोलते थे कि हम खुद ही मैम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वी विल समराइज ऑन आर ओन। मैं भी हैरान होती थी कि क्लास में तो इतना परफॉर्मेंस है नहीं, ये सुबह ऐसा कैसे लाते हैं। तो फिर मुझे मेरे ही एक कलीग ने बोला, मैम ये सारा जो है ये AI टूल्स का काम है। तो खुद भी मैंने अब रिसर्च की, यकीन मानिए इसका नाम ही है पहले AI। अगर हम इस टर्म को देखें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट कैन नेवर रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग। मेरा ये मानना है कि नहीं, जो ह्यूमन बीइंग में पोटेंशियल है, जो हम में एहसासात है, हमारे असातिज़ा किराम ने जैसे हमें पढ़ाया है, हमें उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ शऊर दिया है, तमीज, सलाम, अदब, क्या AI वो चीज हमें सिखा सकती है? ये मौजू सोचने के लायक है। मैं वालिदैन हजरात से इस्तेदा करती हूँ कि जब भी आपका बच्चा आपके पास पढ़े, आप अपने अप्लायंसेस, अपने जो AI टूल्स हैं या फोन है, इनको दूर रखें। आप पूरा कंसंट्रेशन अपने बच्चों को दें। आप देखिए जैसे हमने पढ़ा है, वी आर ब्लेस्ड जनरेशन, जैसे हमने पढ़ा है हम इस काबिल है कि हम किसी को पढ़ा सकते हैं। मैम ये एक सवाल है कि क्या जूली, चैट GPT या परप्लेक्सिटी, जिमनाई, जो भी एप्स हैं, क्या इनके भरोसे पे आगे हमारे बच्चे किसी और को पढ़ा सकते हैं
1: या कोई एग्जाम क्रैक कर सकते,
0: या एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल भी मेहनत करने के लिए बच्चा तैयार नहीं है। अब ये है कि पेरेंट भी तैयार नहीं है। पेरेंट भी हाँ जी ये लो, ये ऐप है तो कर लो,
1: ऐसा नहीं है शहजादा जी। बतौर पेरेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मुझे याद है जब हमें मैथ्स की क्वेश्चंस दिए जाते थे, हमें टीचर एक या दो सवाल दिखा देती
0: जी, फिर पूरी एक्सरसाइज खुद करनी होती थी,
1: जिसमें पूरी रात भर हम जगे रहते थे और
0: कर लेते थे।
1: लेकिन एक चीज है, आजकल का जो पेरेंट है कुछ हद तक ये सही भी है कि उन्होंने भी चलिए क्योंकि आजकल अदीमुल फुर्सत होते हैं आज के वालदैन साहिबा, तो वो उतना टाइम तो नहीं दे पाते बच्चों को, या तो फिर वो टीचर के पास भेज देते हैं। टीचर भी वहाँ पे क्या करता है, जो ट्यूशन पे वो जाते हैं वो भी वहीं से निकालते हैं। अब अगर माँ बाप भी सिखाना चाहे ना बच्चे को, जैसे मैं अपने बच्चे को बोलना चाहूँ बेटा ये खुद करो, जैसे ऐसे आप अप्लाई ये वह फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर ले, तो वो नहीं मानते। वो कहते नहीं, हमारी टीचर ने क्लास में ऐसे दिखाया, हमारी ट्यूशन में हमने इतनी जल्दी जल्दी 2 मिनट में सारा कर लिया, वी विल हैव टू जस्ट कॉपी एंड इट इज फिनिश्ड।
0: Yes, I do agree with this statement. मगर मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूंगी कि हाँ वाकफियत तो हमें हर एक चीज की होनी चाहिए। जो भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीलियां आती रहती हैं, इनको हमें ऑप्ट करना है, इनको हमें लेके चलना है, लेकिन इन पे डिपेंडेंट रहना बहुत बहुत ही ज्यादा। आप यकीन नहीं करोगे, 4 साल की बच्ची मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी yesterday, तो उसने मुझे बोला, वो दूसरे बच्चे को बोल रही थी जिमनाई मुझसे बात करता है, क्योंकि ये AI टूल्स जो है ये ना सिर्फ हमें मतलब ये इतने एडवांस्ड है ना कि दे हम इसको कहते हैं अपने टर्म में पर्सोनिफाई, लाइक दे एक्ट एंड बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। और इस चीज से काफी ज्यादा हमारा यंग जनरेशन अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना ये स्क्रीन की चमक ने किताबों की अजमत ही गवा।
1: शहजादा जी मैं आप तो इस बात से बखूबी वाकिफ है क्योंकि आप एक टीचर हैं बाय प्रोफेशन
0: जी।
1: लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात देखें और डेवलप्ड कंट्रीज की बात देखें, देखिए ना जो डेवलप्ड कंट्रीज है अभी भी हम देखते हैं कि उनका उनके घर कितने भी बड़े हों या छोटे हों, लेकिन एक बुक शेल्फ जरूर रहता है जहाँ पे अच्छी अच्छी बुक्स रहती
0: हैं। मैम हम अगर जो आपने मुझे मेरे यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके लिया, हमारा जो होता था मैम, एक दिन हमारा यूनिवर्सिटी में कुछ अभी भी हमारी लाइब्रेरी में हमें शेक्सपियर के ज़माने में, T.S. Eliot के ज़माने में वो बुक्स जब मिलती थी, यकीन लगता था मुझे जब वो पढ़ाई होती थी, जब मैं वो पूरी नॉवल पढ़ती थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं कश्मीर में रह रही हूँ, या मेरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। ये एक फैक्ट है, जब हम एक नॉवल पढ़ते हैं या जब हम कोई जेनर पढ़ते हैं, उसके बाद वो पढ़ के आप इंटेलेक्चुअली एक तो आप मच्योर हो जाते हैं,
1: काफी अपग्रेड हो जाते
0: हैं। हाँ मैं पता भी नहीं चलता, ये एक ऐसी

0: सिस्टमैटिक अपग्रेडिंग है ना, जो इंसान को खुद नहीं पता अपग्रेड हो रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए आजकल हमारे स्कूल में या हर एक स्कूल में इतनी बुक्स इतनी चीजें हैं, लेकिन यकीन मानिए अप्लाइड नहीं है। मतलब बच्चे जो है ना पता नहीं क्यों इस ट्रेंड के पीछे चले जा रहे हैं।
1: इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं
0: जी।
1: ये जैसे कि मैंने अभी कहा कि घरों में बुक शेल्फ होता है, और जहां तक मैंने देखा है चाहे कितने भी अदीमुल फुर्सत माँ बाप क्यों ना हो, वो क्या करते हैं जब व्हेन इट्स द टाइम टू स्लीप, सोने के लिए चलते हैं, उनके वो उन अपने हाथ में एक बुक लेके जाते हैं अपने बच्चों के स्टोरी,
0: हाँ,
1: उससे
0: बिल्कुल,
1: पढ़वाते हैं। चाहे अगर छोटा बच्चा तो थ्रू फोटोग्राफ्स या कुछ, या अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है जो पढ़ सकता है उसको कहते हैं आप पढ़ो मैं
0: साथ
1: बता
0: पढ़ूंगा। हाँ,
1: तो उससे उसमें वो इनकलकेट होती
0: इनकलकेट रीडिंग हैबिट्स, इनकलकेट
1: चाहे
0: थिंकिंग।
1: अगर शुरुआत में 10 मिनट ही वो करें तो कम से कम फिर 1 घंटा भी जा सकते हैं, 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं बिफोर दे स्लीप।
0: यस मैम,
1: दैट इज नॉट द केस इन आवर कश्मीर की,
0: इन आवर ट्रेडिशन, नो नो मैम, हमारे
1: हमारे
0: यहाँ
1: यहाँ तो
0: नहीं
1: नहीं।
0: है ये।
1: हम यहाँ रात भर मोबाइल फोन के साथ तो रहेंगे, लेकिन बुक मुझे लगता है अदर देन सिलेबस बुक उसके बगैर तो कुछ होगा
0: हम
1: नहीं हमारे पास।
0: छुएंगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
1: अब तो ये सितम जरीफी है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी जो सिलेबस की बुक्स हैं वो भी नहीं छूते
0: वो
1: हैं,
0: भी नहीं छूते
1: वो कहते हैं हम तो क्लास ले रहे हैं।
0: एंड देन
1: अब
0: दे आर
1: यहाँ से
0: डिमांडिंग, इवन दे आर डिमांडिंग, दे आर रिक्वेस्टिंग टीचर्स, द स्कूल मैनेजमेंट अबॉलिश मेकिंग अ नोटबुक सिस्टम, मीन्स दे आर नॉट रेडी टू राइट इवन, बिकॉज व्हेन दे आर नॉट हैविंग द हैबिट ऑफ रीडिंग वो कैसे लिखेंगे।
1: लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे ना, आजकल के बच्चों में वो वोकैबलरी उनकी इतनी अच्छी नहीं हो रही
0: एनरिच्ड
1: है,
0: नहीं है,
1: एनरिच्ड नहीं है वो उतना अच्छा। उनकी डिक्शन देखे आप, उनकी प्रोनंसिएशन देखे, दैट्स वेरी वेरी बैड, वो अच्छा बोल भी नहीं पाते। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ पोइट्स बनते थे, राइटर्स निकलते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में वो अपना एक जो एक लाइन नहीं लिख पाएंगे वो कल को एक नॉवल या एक पोइम क्या लिख।
0: मैम वी कैन कॉल दिस सिचुएशन नॉट ओनली एज अ पैथेटिक सिचुएशन बट आई कैन से दैट इट्स एन आयरोनिकल सिचुएशन। कि बच्चे को हम जितनी, मतलब आप देखिए ना, हम अपनी जनरेशन की बात करेंगे, क्या हमें इतनी फैसिलिटीज थी, इनको इतनी फैसिलिटी। मैं इस प्रोग्राम की वसादत से बच्चों को टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, बट हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमें काम करना है। मुझे लगता है जैसा कि आपने शहनाज मैम बोला कि हमें शाम के टाइम रीडिंग हैबिट्स बच्चों में खुद में वाकफियत, करंट अफेयर्स कुछ ना कुछ हम पढ़े। हमें अहद करना चाहिए कि दिन में 12 घंटों में या 14 घंटों में हमें 2 घंटे फोन बिल्कुल स्विच ऑफ करना है। आप देखिए इससे हमारी जहानत कितनी सही होगी। मैंने रिसेंटली अपने दोनों बच्चों को, जो बहुत छोटे हैं अभी, उनको बिठा के एक पुराना दिखाया, लकीली मुझे वो यूट्यूब पे मिला भी वैसा कि कैसे साइकिल पे ज्यादा सफर होता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, वो सब दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझे डिमांड की, मामा हमें वैसा गाना भी सुनाओ। फिर यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम की वसादत से वो गाना भी सुनना चाहूंगी। बुलाए नहीं भूल सकता वो कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी, जगजीत सिंह की गजल है, किस तरह से वो नानी की बातों में परियों का डेरा। मुझे लगता है इस चीज को, ये गाने, ये चीजें अगर हम रूटीन लाइफ में अपनी फैमिली में चलो थोड़ा ही सही लाएं तो हम एक्सटिंक्शन में नहीं चले जाएंगे। एंडेंजर्ड हम ऑलरेडी है बट हम एक्सटिंक्शन में नहीं चले जाएंगे।
1: एज अ टीचर शहजादा जी, आप क्या प्रपोज करना चाहेंगे, कौन से इकदाम हमें उठाने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों में ये आदत डलवा सकें, इनकल्केट कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो उतनी पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं एज फार एज जो तालीम की
0: as per the research is concerned as well.
1: तालीम की रूह से, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे टीचर है बस वही सही है और कोई सही नहीं हो सकता।
0: Basically, the role of the teacher has been changed, right? I don't know why, but if we see, हम अगर देखते हैं वैदिक, ब्राह्मणिक, मुस्लिम एजुकेशन, तीनों, मतलब हर एक मजहब को अगर हम देखें, तो टीचर का जो मुकाम था वो माँ बाप से बढ़कर था, नेक्स्ट टू गॉड था। पहले हमें बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। दूसरा जो प्रिवेंटिव मेजर जिसकी हम बात करेंगे, दूसरा ये है कि जो पेरेंट है खुद, वो खुद भी अपने आप को पहले, मैंने कहा ना, दिन में 2-3 घंटे फोन बिल्कुल ऑफ रखे, अपने फैमिली को टाइम दे, उनसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करें। मैंने कहा ना, मैंने एक्सरसाइज खुद करके दिखाई, मैंने उनको विजुअली भी दिखाया। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, मुझे पता उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो बिजनेसमैन है, तो वो भी जब शाम को आते हैं तो कुछ ना कुछ वो अपने बचपन का बोलते ही रहते हैं। इससे, क्योंकि अभी इनकी जो है एज, ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है इनमें, तो ये वो

0: सोचते ही नहीं इमेजरी में चले जाते हैं रियली. अलीना परसों, मेरी बेटी का नाम है, वो परसों काम कर कुछ कर रही थी और वो हंस रही थी. मैंने बोला अलीना आप किस बात पे हंस रहे? बोला मुझे याद है जब बाबा छोटी उम्र में पार्क गए थे और बारिश पड़ी थी और स्लिप कर गए थे, तो उसकी मामा ने उसको संभाला नहीं बल्कि डांटा. तो वो चीज उसने इमेजिन कर ली. तो मुझे लगता है कि हमें वो चीज, वो इकदाम करने. और एज टीचर, एज जो है, हम एक रेस्पेक्टेबल जॉब करते हैं और हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. इंस्टेड ऑफ रनिंग थ्रू द सिलेबस, अगर हम अपने सिलेबस को कर्टेल करके चार चीजों पे फोकस करें, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. स्पीकिंग भी बहुत जरूरी है. हमने अभी तक रीडिंग राइटिंग की बात की, उनको बोलने का भी मौका देना, उनको सुनना है. आपने नोटिस किया होगा मैम कि हमें अब सुनने की सलाहियत, हमें पेशेंस कम हो गई है. इस पे रिसर्च हुई है साइंटिफिकली. मैंने परसों एक आर्टिकल में पढ़ा कि ये जो हम जितना भी फोन के साथ एडिक्टेड रहते हैं ना, इससे हमारी पेशेंस लेवल भी सप्रेस हो जाती है, खत्म हो जाती है. तो मुझे लगता है कि बेस्ट मेथड इज फोन को छोड़ दो. It's my humble and hand-folded request to my generation, to my next generation.
1: बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा जी, आप प्रोग्राम में आई और इस मौजू के हवाले से कि जो हमारे बच्चों के पढ़ाई के ट्रेंड में जो चेंज आ रहा है, कौन से मस्बत इकदाम हमें उठाने चाहिए ताकि वो सही राह की तरफ चले.
0: और अगर ये बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहूंगी, मशीनों से तो मिल जाएगी हर एक बात की मालूमात, मशीनों से तो मिल जाएगी हर एक बात की मालूमात, मगर किताबों से जो मिलती थी वो हिकमत कहाँ से लाओगे.
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने की.
0: बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे दावत देने के लिए.

मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समय 1 बजा चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
0: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
0: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
0: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना

0: लिए हैं।
1: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें

0: ने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। यह नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञदत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
2: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी,
4: कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ, पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
4: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
0: अच्छा
1: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
4: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
3: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
5: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
3: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
4: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
4: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
0: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
4: हाँ ये तो है।
6: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
7: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल

0: के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
0: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
2: अरे वो देखो, वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
3: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
2: हाँ, चलो चलो।
3: अरे ये देखो कितना
1: अरे
3: अच्छा घोड़ा।
1: वाह, अरे
3: हाँ,
1: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
3: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
1: चलो चलो।
2: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
4: ये अरे ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो, भाग चले। आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
2: क्या
1: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ,
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ,
2: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: सामिन, आप NCERT का तैयार करदा तालीमी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
5: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
6: हेलो
7: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
8: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
9: सर इतने कहाँ से?
8: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
9: 2 लाख
10: क्या हुआ पापा?
9: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
9: काट दिया।
10: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
9: फ्रॉड?
10: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें।

0: और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
6: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
5: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
6: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
7: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आई समीन समीर के बोल सुनते हैं नदीम शवन की मौसीकी में। फिल्म का नाम है साजन की बाहों में और आवाज़ कुमार सानू की।

दोस्तों, ये था कोरा कागज फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेज़ी खबरों के बुलेटिन नश्र करेंगे। ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साइबर, अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी का आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बानीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसत पैदा हो रही है जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खित्ते में तेज बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समुद्र में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी मिशन का आगाज किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा बालिगों की खानदगी हासिल करने के मामले में उत्तराखंड ने मुकम्मल खानदगी हासिल कर ली है और वियतनाम में होने वाले पिकबॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी अल्बानीज आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना सरबराह मुलाकात में शिरकत की, जिसके तहत वफ्द की सतह की बातचीत की गई। दोनों वज़राए आजम ने समिट के इख्तिताम पर विक्टोरिया में गवर्नमेंट हाउस में मुश्तरका प्रेस बयान जारी किए। दोनों लीडरों ने दो तरफा ताल्लुकात में यकसर तब्दीली को एक अहम कदम करार देते हुए इसकी सताइश की। भारत बैरुल काहिल में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सिक्योरिटी इश्तराक के सिलसिले में एक मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियतें और अहम समंदरी कुवतें करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल सिर्फ दो समंदरों का संगम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी एक जहीन जमहूरियतों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में मजीद वसत पैदा हो रही है जो गहरे बाहमी एतमाद पर मबनी है। इस समिट की एक अहम खसूसियत इक्तिसादी और तिजारती इश्तराक को रफ्तार देना है।
1: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम इकदाम के तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूरेनियम की सप्लाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के माहौल के लिए साजगार मकासिद को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर, अहम टेक्नोलॉजियों और सप्लाई चेन से मुतालिक ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी और अहम मादनिया से मुतालिक एक मखसूस कॉरिडोर के आगाज के साथ ही अहम टेक्नोलॉजी और वसाइल के तहफ्फुज को भी नई बुलंदी हासिल हुई है।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की खबरें आईं जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा समेत कौमी राजधानी में अवसर से शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड, अवामी कामकाज के महकमे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें पानी जमा होने की सूरत हाल से

News. मीडियम वेव 268 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। आई समय आपको चंद फिल्मी नगमे सुनवाते हैं। आगाज करते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के गाए हुए नगमे से। ये नगमा हमने लिया है फिल्म कोयला से। इंदीवर के बोल है और राजेश रोशन की मौसिकी है।

ये दोस्तों आपने कोयला फिल्म का ये नगमा सुना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की मौसीकी थी और ये इस नगमे के बोल लिखे थे इंदीवर ने। एक और गीत आपकी नजर करते हैं, लम्हे फिल्म से हमने लिया है हरिहरन और लता मंगेशकर का गाया हुआ नगमा। गीतकार है आनंद बख्शी और मौसीकार है शिव हरी।

दोस्तों, आपने लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल सुने। मौसिका थे शिव हरी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। ये जो आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जात 68.8 मीटर तो FM 73.5 MHz पेट समीन 2:30 बजे वल्यू सूफियाना मौसिकी बोजो फनकार छ इरफाना यूसुफ तेहिन सती ये मनीष बोजुते मकामी तेलंग।

हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। फौज भाइयों, आज 9 जुलाई है और आज का दिन, आज की तारीख महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा के उस अजीम फनकार को याद करने का दिन है जिसने इंडियन सिनेमा में लाजवाल कहानियां तख्लीक की जो आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, गुरुदत्त का शुमार हिंदी सिनेमा के उन चंद अजीम फिल्म साजों में होता है जिन्होंने फिल्म को सिर्फ तफरी का जरिया नहीं समझा बल्कि उसे समाज, जज्बात और इंसानी रिश्तों का आईना बनाया।

फौजबाई क्यू, आप समाप्त कर रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम और आज 9 जुलाई है और आज के दिन हम बात कर रहे हैं अदाकार और फिल्म साज गुरुदत्त के, और गुरुदत्त ने अपने फिल्मी सफ़र में ऐसी कई यादगार फिल्में दी जो आज भी हिंदुस्तानी सिनेमा का कीमती सरमाया समझी जाती हैं। इन फिल्मों में प्यासा, कागज़ के फूल, चौधरी का चांद और साहेब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों ने इन्हें सिनेमा की तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इनकी फिल्मों में सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि जिंदगी की गहरी हकीकतें पोशीदा होती हैं। इनके किरदार अक्सर समाज से जूझते, तन्हाई से लड़ते और अपनी शिनाख्त की तलाश में सरगर्दा दिखाई देते थे।

जी फाजु भाइयों, ये था कागज़ के फूल फिल्म का नगमा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, एस डी बर्मन की मौसीकी थी और कैफी अजमी के बोल थे। और अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी का लिखा हुआ गीत हेमंत कुमार की मौसीकी में, आवाज़ आशा भोसले की है और फिल्म है साहब बीबी और गुलाम।

जी दोस्तों, ये था साहब बीबी और गुलाम फिल्म का नगमा, आशा भोसले की आवाज़ थी। और आज 9 जुलाई है और आज हम याद कर रहे हैं गुरुदत्त जी को। और गुरुदत्त ने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नई फनी ज़बान दी। इनकी फिल्मों में शानदार हिदायतकारी, बेहतरीन अकासी, लाजवाल मौसीकी और जज्बात की गहराई का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। उन्होंने ऐसे मौजूआत को हिंदी सिनेमा के पर्दे पर जगह दी जिन पर इस दौर में कम बात की जाती थी। इनकी सोच अपने अहद से कहीं आगे थी।

0: जी।
1: जी दोस्तों, फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम गुरुदत्त के नाम, और गुरुदत्त अगरचे इनको बेपनाह शहरत मिली लेकिन कामयाबी का सफ़र इनके लिए हमेशा आसान नहीं रहा। इनके बाद फिल्मों को रिलीज़ के वक्त वो पज़ीराई न मिल सकी जिसकी तवक्का की गई थी, ख़ासतौर पर कागज़ के फूल को इब्तिदा में सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर वक्त गुजरने के साथ यही फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा की अजीम तरीन फिल्मों में शुमार होने लगी।

0: फौज भाइयों, आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्म संगीत का प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर भी। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: फौज भाइयों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको बताते चले कि आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के श्रीनगर स्टेशन से और DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फिल्म साज गुरुदत्त की, और गुरुदत्त की ज़िंदगी जितनी तख्लीकी थी उतनी ही आजमाइशों से भरी हुई थी। निजी ज़िंदगी मसा के मसाइल, रिश्तों में दूरियां और बढ़ती हुई तन्हाई ने इन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो अपने जज्बात, दर्द और कर्ब को अक्सर अपनी फिल्मों के ज़रिए इजहार का जरिया बनाते थे।

जी दोस्तों, फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फिल्म साज गुरुदत्त की, और गुरुदत्त के बारे हम बात कर रहे थे नगमे के उस पार, इनकी निजी ज़िंदगी के मसाइल, रिश्तों में दूरियां और बढ़ती हुई तन्हाई ने इन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया, और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाती परेशानियों के दरमियान वो शराब नोशी के आदि हो गई। कहा जाता है कि इस आदत ने इनकी सेहत और ज़िंदगी पर गहरा असर डाला, और 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त अपने घर में मुर्दा पाए गए। आमतौर पर ये माना जाता है कि इनकी मौत शराब और नींद की गोलियों के असरात के बायस हुई। महज 39 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हिंदुस्तानी फिल्मी सन्नत के लिए एक बड़ा सदमा साबित हुई।

फौज भाई, यू आप फिल्म का संगीत का प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फिल्म साज गुरुदत्त की। और अगरचे गुरुदत्त इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन इनका फन आज भी जिंदा है। इनके इंतकाल के बाद इनकी फिल्मों को वो मकाम और एहतराम मिला जिसकी वो हकीकी मानों में मुस्ताक थी। जिन फिल्मों को उनकी ज़िंदगी में महदूद पज़ीराई मिली, वो बाद में हिंदुस्तानी सिनेमा के क्लासिकी शाहकारों में शुमार होने लगे और इन फिल्मों के तस्लीम किया गया। आज भी गुरुदत्त का नाम फिल्म साजी में आला फन, हसास सोच और लाजवाब तख्लीकी सलाहियत की अलामत समझा जाता है।

फौज भैयों, ये था 14वीं का चांद फिल्म का नगमा। शकील बदायन के बोल थे, रवि की मौसिकी थी और आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। इसी के साथ अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।

0: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय अब हमारे यहाँ से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इलाकाई इस्तेहकाम के फरोग के लिए काम करने पर किया इत्तेफाक। लोकभवन श्रीनगर में कई शख्सियात की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात। मुख्तलिफ नौयत के मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में मयार पर मबनी सियाहत को दिया जा रहा है फरोग। पायदार सियाहत से मुतल्लिक कन्क्लेव से वज़ीरे आला का खिताब। और सालाना अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबोर्न में आला सतह के तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया इजलास में शिरकत की।

भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से आज सुबह 8,150 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था रवाना होकर वादी पहुंच गया है। इनमें से 3,445 यात्री बालतल जबकि 4,750 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान पंचतरणी पहलगाम की टेंट यूनियन ने कहा है कि उसने यात्रियों को अपनी तरफ से मुफ्त टेंट की सहूलत दस्तियाब रखी है। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि यूनियन ने जिला इंतजामिया के ताउन से कई यात्रियों को अब तक मुफ्त टेंट की सहूलत मुहैया की है। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने यूसमर्ग, हेजन, नागबल और बड़गाम के दीगर इलाकों में SASCI के तहत दरदस्त लिए गए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इन कामों की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कामों के मयार के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कई मकामात पर अवामी वफूद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू की सदारत में श्रीनगर में RBI की 37वीं यूटी सतह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में साइबर माली फ्रॉड्स और गैर मुनज्जम माली सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतलिक उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने इस तरह की बिदात पर काबू पाने के लिए इदारा जाती सलाहियतों को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ट्रैफिक की बेहतर निजामत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदामात नीज कलीदी सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने और लोगों की आवाजाही में आसानी पैदा करने के लिए बैन महकमा जाती ताउन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाना चाहिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कल यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस दलीना बारामुला में MSME पहल के तहत मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करके नौजवानों को कारखानादारी के जज्बे से हमकिनार कराने के लिए जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की सताइश की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन के तहत हारी पर्वत रेंज का दौरा करके वहां पेड़ लगाने, लैंडस्केपिंग और इलाके की खूबसूरती को बढ़ावा देने के लिए दरदस्त लिए गए कामों के अलावा दीगर इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इलाके में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जानी चाहिए ताकि शहरी श्रीनगर में माहौलियाती निजाम के तहफ्फुज को तकवीयत हासिल हो सके। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं और यूटी को इस बिद्दत से पाक करने के लिए तमाम इकदामात किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर के इश्तराक से IGC लासीपुरा पुलवामा में काफी मकदार में नशीली अशिया को तबाह कर दिया। यह अशिया ANTF ने मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान जब्त की थी। कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के मेंबरान ने आज कुलगाम में एहतजाज किया। फेडरेशन के मेंबरान हालिया मौसमी सूरतहाल से मेवा बागात को हुए नुकसान की सरकार से भरपाई का मुतालबा कर रहे थे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 208.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय पेशे खदमत है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम केन के में आतुस दा मेजबान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम विच जी आया कुआखता। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक हो सो ते प्रोग्राम दिलचस्पी नाल सुन दे हो सो। सामीन अज वीरवार है ते आओ प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आ करणजीत सिंह दी आवाज विच इस गीत नाल।

जी सामीन, करणजीत सिंह पेश कर रहे असे गीत, उम्मीद है पसंद आया उसी। ते सामीन, अज 9 जुलाई है, ए दिन पूरी दुनिया बिच तारीखी अहमियत रखता है। अर्जेंटाइन, अफ्रीकी यूनियन और जनूबी सूडान दी आज़ादी दे अलावा हिंदुस्तान दी माशी तारीख बिच भी इसकी एक नमाया हैसियत है। किसी भी मुल्क या कौम दी माशी हालत जब ठीक होंदी है ते ओ मुल्क और कौम तरक्की दी मंजिलां पार कर देन। सामीन, इसी 9 जुलाई 1875 ईस्वी को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कायम किया गया सा। ए हिंदुस्तान दे बेहतरीन मालियाती इदारियां विचों एक है। सामीन, गल्लां और भी सांझियां करसा ते आओ अगे गुलाम हसन तबसम ते यूनुस लोलाबी दी आवाज़ विच सुनदे हां ए गीत।

जी सामीन, गुलाम हसन तबसम ते यूनुस लालाबी पेश कर रहे से गीत। ते सामीन, बंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का कदीम और सब तो बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ते यही एशिया का पहला एक्सचेंज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज नाल ये दुनिया का दसवां सब तो बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये हिंदुस्तानी कंपनियों वास्ते सरमाए का एक अहम जरिया है और हिंदुस्तानी मैशियत विच इसका एक अहम रोल है। सामीन, प्रोग्राम जारी है, ते आओ अगे काबुल बुखारी की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत।

आदाब। आकाशवाणी श्रीनगर है 4:20 हो गए। पाड़ी खबर लेके मैं से शाफिया पहला कुछ खास खबरों दी सुर्खियां। भारत और आस्ट्रेलिया सुन इलाकाई इस्तेकाम दे फरोग वास्ते काम करने तक कीता इतफाक। लोक भवन श्रीनगर बेच कुछ शख्सियात दी लेफ्टिनेंट गवर्नर दे नाल मुलाकात। मुझ सारे नौयत दे मसलियां तय हुई गलबात। जम्मू कश्मीर बेच मियार ते मबनी सियाहत को दीती जुल रही है फरोग। पायदार सियाहत दे बारे कनक्लेव नाल वजीर आला दा खिताब। और सालाना अमरनाथ जी यात्रा असल तरीके नाल जारी। खबरां तफसील नाल सुनो। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन आस्ट्रेलिया दे इन्हां दे हमनसिब एंटोनी एल्बनीज सुन अज मेलबर्न बिच आला सतह दी तीजी भारत आस्ट्रेलिया इजलास बिच शिरकत कीती। इजलास दे दौरान उन्हां सुन वफद दी सतह दी गल कीती जिस बिच बाहमी शराकतदारी को

0: वज़राए दिफा दी मीटिंग ते इत्तेफाक कीता। नरेंद्र मोदी सुन इस मौके ते आखिया कि भारत और आस्ट्रेलिया दी शराकतदारी एक इस्लाहाती और हाईटेक दौर बिच दाखल हुई है।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: लोक भवन श्रीनगर बिच कल शख्सियात और वफूस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दे नाल मुलाकात की। एलजी दे नाल मुलाकात करने वालों बिच इन्फॉर्मेशन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के डायरेक्टर न्यूज काजी मुहम्मद सलमान, मेरा युवा भारत के डायरेक्टर नितिन हांगलू, एडवोकेट तबस्सुम रहीम और स्टूडेंट्स राइट्स एक्टिविस्ट और गांधी किंग फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी इंजीनियर इख्तिशाम खान भी मौजूद से। इन शख्सियात सुन जम्मू कश्मीर में जारी मुसारे फलाही प्रोग्राम की अमलावरी के बारे में एल जी को जानकारी दी। वज़ीरे आला उमर अब्दुल्ला सुन आखे कि जम्मू कश्मीर बिच मिकदार दे बजाय मियार ते मबनी सियाहत को फरोग दिता जुल रहा है ताजे पायदार सियाहती और मुआशी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इसके आईसीसी श्रीनगर बिच पायदार सियाहत दे बारे एक अनकलेव नाल हिताब करते हुए आखे कि जम्मू ते कश्मीर दे कुदरती सियाहती मुकामा दे तहफुज वास्ते मुसारे मनसूबे हैं। वज़ीरे आला सुन सारे सियाहती मुकामा ते बुनियादी और जरूरी सहूलतां दी फरहमी को यकीनी बनाने ते जोर दिता। उमर अब्दुल्ला सुन कनकले इनकाद वास्ते महकमे सियाहत की उस अप्लाई की। इस मौके ते वज़ीरे आला दे मशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ते नाजिम सियाहत कश्मीर सईद कमर सजात हुई इलावा बाकी कुछ बड़े अफसर भी मौजूद से। एसकेआईसीसी श्रीनगर बिच कल महकमा स्कूली तालीम दी तरफू एजुकेशन कनक्लेव 2026 बुनियाद से बुलंदी तक मुनक्किद होया। इस मौके ते वज़ीरे आला उमर अब्दुल्ला सुन तालीमी शोबे बिच बुनियादी ढांचे को तकवीयत देने वास्ते मुच इकदाम दा ऐलान कीता। उन्हें सुन नवे तैनात किए गए 117 लैक्चरां बिच तैनाती दे आर्डर बने। वज़ीरे आला सुन तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए आखिया कि हकूमत मियारे तालीम को बुलंदियों तक पहुंचाने बिच कोई कसर बाकी नहीं छोड़ सी। तकरीब तय काबिनी वज़रा सकीना इतू जावेद अहमद डार, वज़ीरे आला दे मशीर नासिर असलम वानी, कुछ अरकान कानून साजिया और बाकी अफसर भी मौजूद से। नायब वज़ीरे आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सुन कल उधमपुर और कटरा का दौरा करके उत्थे तरक्याती कमा और कलीदी नौयत दे प्रोजेक्टा दी पेशरफ का जायजा किया। उन्हें सुन उधमपुर बिच नार्दन कमांड अस्पताल का भी दौरा किया और उत्थे फर्स्ट जैकलाई दे एक सौबेदार दी इयादत की। बाद बिच उन्हें सुन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रैसवे का भी मुआयना किया और इस दे कम दी पेशरफ दे बारे बिच जानकारी हासिल की। इसी दौरान वज़ीरे तालीम सकीना इतू सुन एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों बिच ज़ेरे तालीम नौवीं थू बारहवीं जमात तकर और डिग्री कॉलेज भी तालीम हासिल कर रहे एएवाई तबके के तलबा का पूरा फीस माफ किया जा सीगा। ये खबर तुसी आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हो। खबर तुसी आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच तक भी सुन सकते हो। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा सोहनी तरीके नाल चल रही है और अजु तिकर लगभग 150,000 यात्रियां सुन पुत्र गुफा बिच शिवलिंगम दे दर्शन किते। खबर दे मुताबिक अज 2 बजे तिकर 20,114 यात्रियां सुन गुफा दी हाजरी दिती। इसी दौरान अज भगवती नगर जम्मू दे बेस कैंप थू अज सुबह 8,150 यात्रियां ते मुश्तमिल एक और बैच रवाना होकर वादी पहुंच गया। इन्हां बिचू 3,445 यात्री बालताल जदू के 4,750 यात्री पहलगाम देरा यात्रा कर रहे हैं। कानून साज असैम्बली के स्पीकर अब्दुल रहमान राथर सुन यूस मरक हाजन नागबल और बडगाम के कुछ इलाके बिच एसएससीआई के तहत ले गए तरक्याती कमां की पेशरफ्त का जायजा किया। उन्होंने सुन अफसरों को हिदायत दी कि इन्हां कमां को जल्दी पूरा करन। उन्होंने सुन आख्या कि कमां के मियार के नाल कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुन कुछ मुकामां

जी सामीन, करतार चंद पेश कर रहे से गीत, उम्मीद है पसंद आया उसी। सामीन असा को कुछ वेला बचे दे, आओ प्रोग्राम दे आखर ते तारक परदेसी ते मसरत नाज दी आवाज़ भी सुन दे हैं ए गीत।

समीन आप पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे थे ख्वाजा परवेज, मौविन मुअज्जम शबीर। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं मारूफ निसा। इशु आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 7.8 मीटर तो एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। समय मोहतरम 4:35 मिनट सपद वलिव के चलंद बोजो दस्तरो कलाम रशीद नाजकी सत गुलकार गुलाम नबी डोलवाल तिहन सी।

जी तम नाथ शरीफ सुन रहा था। सजनों आज गोजरी अदब जड़ो है वो अपनी रंगारंगी को मुजाहरों कर रहे है। जित इसमें शहरी अदब को खासो सारो सरमायो मौजूद है उत्तै इसने अपना नसरी अदब नवी फरोग देन मा काय कसर बाकी नहीं छोड़ी। कदे हम दास्तान की गल करा उस तो बाद हम नावल ड्रामा दरामा हम अफसाना की गल करा मुख्तसर अफसाना की गल करा अफसानचा की गल करा यानी कि कहानी का मैदान मा और चोन चिट्ठी कदे हम गल करा चिट्ठी भी लिखी गई गोजरी अदब मा। तो शेरी अदब के नाल नाल मारो जो नसरी सरमायो है वो भी बड़ो जरखेज़ ते भरपूर है। तो लिखण आल ने बाकी अदबी म्यार को खास ख्याल रखियो है ते वो बाकी जड़ा अदबी उनके नाल मुंडा नाल मुंडो मार गए।

जी तम सुन रहा था बैत बशीर मस्ताना की आवाज़ माँ। सजनों आज थारी खिदमत माँ एक ड्रामू पेश करांगा नूरो। इसको पहलो एपिसोड यानी कि पहली किस्त हम थारी खिदमत माँ पेश कर रहे हैं। इसकी अगली जड़ी बाकी किस्त थी वे भी तम आइंदा प्रोग्रामों में सुनता रहेंगा। तो इस तरह करा कि हम साझा हो गया रल गया सुना नूरो यो खूबसूरत जो ड्रामू। तो इसकी पहली किस्त थारी खिदमत माँ पेश है।

0: देखो मुकदम जी, आज एक ना एक गल हो गई रहेगी। इस तरह कदे आम नरम पै गया तां ते फकर जहा लोग कमना निगल जाएगा, डकार भी नहीं मारन लगा।
1: देख भाई जाबर खान, गल किसी का नरम या सख्त होने की नहीं, हम सारे इसे ग्रां का बसनीक है, हमना एक दूजे नाल भाइयां जैसे सलूक करना चाहिए।
0: यो वेलो रिश्ता जोड़न को नहीं मुकदम, गल खोल के करो ते फकर कोलो मेरो साह मकाओ।
1: मुकर मकान की ते गल कर रहा हूं, वर तम सुने ते तना ना, दसो की हिसाब है थारो।
0: पूरो साल हो गए है, ऐस जना ने मन माक ली थी ते 2-20 रुपया नगद भी, वर देन को ना ही नहीं लेतो। फिर तम आप साब ला लियो, साल में यो साब चुगनु हो जाए के नहीं।
1: फकर ने अपनी गर्ज टपान वास्ते गल्लो ते नगदी लिया, तम ना अपनो समझ गए, इसे ग्रां को बसनीक है यो।
0: मुकदम जी फिर के हम अपना कठार खोल दिया इन बसनीकों वास्ते, हूं तो दिता वा मंगवा, कोई लगान मालियो नहीं मांग रहे हो।
2: मुकदम जी जाबर खान और ठीक ही के, जे मैं अपनी तंगी करने वास्ते इनको उधार चाहो, सोचो तो पूरी मजदूरी करके मकान छोड़ूंगो, पर मजदूरी कर तो किस तरह, इनका जना ही नहीं पूरा हुआ।
0: मेरा जना
1: क्या मतलब, बोलन दियो भाई जाबर, इसना भी बोलन दियो, आते भाई फकर फिर मकाया क्यों नहीं।
2: मुकदम जी पूरा साल तक इन्हीं को काम काज करते रहे, लेतरी लाना मां जना बखरा, तुम आते हिसाब कर रहे हो जनाब, मेरी पूरी मजदूरी भी किसे कार ले आई हो ना।
0: ओ तुम मेरा को मदद अमदाद की मजदूरी लेगो, फिर मेरे कर्जो मकावेगो ना, मैं कोई तेरो देन देन थो। उस वेले बड़ी छोटी पकड़े थो, पैरें हाथ लावे थो, ऑन टेड पार गया आंख दसन लगो है, वर मिन्ना भी जाबर खान के एक का चार लियूंगो।
2: भाई जाबर हूं अजा भी मन मख देन वास्ते तैयार हां,
0: सिर्फ एक मन देख लियो मुकदम जी, तम कहता खुदा हुई गल करिए, सुन लिए इस मरियल की गल, इसना तो सब सिखाणो ही पैगो।
1: गल थोड़ा हौसला।

0: मुझा बेस्ती कदे बर्दाश्त नहीं कर सकतो। मकदम बाजा ने जो चंगो नहीं कियो, मारी नसला मा यो बैर पार गयो है बैर। एक फकर ना बचान वास्ते उसने अपनी नस्ल वास्ते खतरा पैदा कर छोड़े। जाबिर खान का हाथ बड़ा लम्मा है, हूं सरकार का दरबार तोड़ी यो मामलो ले जाऊंगो।
1: मुकदम ते उन अलाद आलो हो गए, सुने बड़ो सोनो उच्चा सताना आलो निको पैदा हुआ है के उसका कदम पैता ही मुकदम ना हर कम फत्या हो रही है।
0: अख जिस तेरो नात इसे तेरो ख्याल, तू बड़ो शरीफ है पाई शरीफ खान, तो उनके क्या मुकदम को निको भी मारा बराबी रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हूं तो कहूंगो बाप को चार कदम आगे वह हूं, बड़ी चूरी मखन ते नाज नखरा ना उसकी परवरिश हो रही है। आवना या दुश्मनी महंगी ना पै जाबर खान, मुकदम ने भी कोई विलंब नहीं कियो, असल में ज्यादती ते हम भी कर रहे हैं।
0: वाह तेरा नाल गल कर रही फजूल है, हूं सोचू थो तू मेरा सोफी की बाह बनेगो, पर तेरा लिंग ते उन जवाब ही दे गए।
1: सूफी वास्ते हूं जान भी दे सकूं सरदार।

0: दुश्मनी की वो आनी है या दुश्मनी कई सिरों को कालना बन जाए ते फिर तारो सूफी इस पक्ता तंदूर न किस तरह बुझावे वो।
1: चुप कह रहे जना नुन नुन करते रहे, तू बजान की गल करे वो इस तंदूर ना पूरा ग्रह ना सजी बना छोड़ेगो, तू देख तो जा जाबर खान की चाल।
0: अल्लाह रेम करे भाई, या अनिठी कांग पतो नहीं किस किस ना रोड़ेगी। अच्छा मिना इजाजत दो, मैं दान जुगना है। खुदा हाफिज।
1: अच्छा अच्छा खुदा हाफिज।

0: बानो, ओ बानो, छा बन गई है बार मुझ सारी गोने डोला लेगा डीके लगी भी ते हाँ मक्खन उस कोरी डिब्बी में कड़ी है कोई मेहमाना ने आना है मत किधर पहला मेहर ला छोड़ेगी
1: चंगो अम्मा जी इसे रख करूंगी गुआंडिया वास्ते ते वो दूध भी है ना जेड़ो रावी को कनी रखे हुए है
0: हाँ मेरी ते माते मारे गई है चेतो ही नहीं रहतो मुकदम होरा ने रावी मैस को दूध पांडा में जोड़न तो मना भी किया हुआ है
1: क्यों
0: ता जे गुआंडिया की चावी चिट्टी हो जाए ते ख्वाजो भी राजी रह जाए
1: ख्वाजो ते राजी वेगो वर मारा निका मुकदम ना भूख लगी हुई है
0: इसकी खातिर ते हूँ आप करूंगी दूध कार रखे हुआ है आओ जी निका मुकदम जी कुछ खा पी लो तो जवान हो जाओ अजय मैं मुझ खुशियां की आस बती हुई है।

0: रानी तू ते ते मेरे कॉलेज ही ला छड़ो
1: तम भी ते अलगो जगी तान नाल कईया ना बेहोश कर रहे हैं
0: इससे वास्ते ते कहूं ओशमा मेरे खेड़ो छोड़
1: वारिस मन ना किसरा समझाऊं
0: मन मानी उम्रा को रवास बन सके मेरी जिंदगी ते मजलूमा की अमानत है दुश्मनी में कई जाल बुनिया हुए रानी पत्थर पर पानी किसी वेले भी चाड़ सके
1: जुलम ते मेरा वर भी हो रहे हुए मेरो के हुए को के गुजरेगी मेरा वर इस बारे कद तक कुछ सोचो है
0: फिलहाल हम तो हिलांगी बाड़ी बारे सोच रहे हो यो काम मेरी इज्जत ते गैरत में जुड़े हुआ
1: इसमें तो हूं भी हाथ बटा सकू हाँ
0: तू हाथ बटावेगी हाथ तो ताँ बटावेगी जो मुँह हाथ आऊंगो
1: देखो जी हर कामयाबी के पीछे काल सिरी को आथरे है उसकी दुआ रही है हर इला के पीछे कोई ना कोई वसीलो जरूर हो
0: इलो इलो आप भी तो नहीं किया जा सकते अपना सिर आप थोड़ा मनन वे
1: फिर कोई वसीलो कोई जरियो तो लोड़ नहीं पवेगो थारा ना इतनी हिम्मत नहीं
0: रिश्ता नाता बड़ा बढ़ेरा करे माँ बाप तय करे
1: क्यों तन्ना रिश्तो पसंद नहीं
0: ना ना वाह कोई गल नहीं मिन्ने तो रिश्तो पसंद है वह डर लगे
1: डर कौन को डर
0: यूं जे जिंदगी का इस ओखा पेंडा मार तू किधर एकली ना रह जाए
1: इस सिंगल मुंह चुनी करता
0: पर हकीकत तू मुंह मोड़े नहीं जा सकते रानी
1: तम ते बहुत ही डूंगी गल कर रहे हैं मेरी समझ में ये नहीं आती उन ते बस एक ही गल जानवा जिंदगी का सफर मा हम सफर की लोड़ पोए
0: रानी नहीं ते किसे कड़ों काटनी पला ये इतनी बड़ी बड़ी गल की तू सीखी
1: मुकदमा का गांड बसो ना गांड बोते असर हो ही जाए ना
0: तां ना इस हम सफर की तलाश वास्ते कोई जतन करने ही देगो मंगतू पीरो जाल नाल गल करूंगो वो मुकदमा बात है अम्मी का कना तोड़ी या गल पचा छड़ोगे अगे अपना अपना नसीब
1: नसीब

0: तोबा तोबा मुकदम बाजो ते उन धरती पर पैर नहीं कर दो तू इतनी जवानी वो डेंडो बड़ियार करे
1: ये बड़ियार उसने कदे सिर पार न मारे ता मीना भी जाबर खान न कहिए मैं भी उम्र में नहीं गाली
0: गाल ते उन मुकदम गा मुंह मोए गाल गाल वर गाल पतो नहीं थारे नाल कद को बैर बद नहीं हुए
1: उसने पूत को गुरूर वैगो ना हूं भी बे औलाद नहीं उसका पूत वास्ता काफी है जरा किरे टाज चढ़न दे
0: ना ना जाबर खान मुरु है बड़ो जान मा उसकी बीवी तक है वो ही डर गयो तो बड़ो काजू है उसको बड़ो काजू है
2: ना चाचा तम के बा पकड़ा लेगा मारा वजूद में कोई पानी दे नहीं लो मारी जगह मम्मी गर्म है
0: इसे मैं कहूँ कि मैं गर्मा गर्मी ना करियो जनो तलवार हमेशा अपने नार रखे मिठो कह दो तलवार वो जरा बसा नहीं खातो मारो मुकदम
1: और के कैसे मिठो जरी ठग गया उसको राज ले लिया कर पाई शरीफ खान तेरा वर तो शक भी नहीं ना उसे
0: शरीफ खान इतना भी शरीफ नहीं के थारो पतो भी लगन दे निमक हो रहा थारो फिर मारो हूं पे तारे नाल ही रहना ना
2: हां हां चाचा वह गल तो ठीक है पर वे और की करना चाहे मैं सुनू है कि नमो काठ भी करा रहे हैं
0: काठ हम याद आयो वो काठ इलामा बानी जान वाते कढ़ाए जा रहे हो
2: बड़ी उत तो हमारी चरान है यो यो किस तरह से कहबा जी
3: कदे हमने गर्दन साथ छोड़ी तो फिर ये हमारा कर्म आ बैसे का पुत्र उन थारो वक्त है हमने अपनी जंगी निभा दी किसे ना फुरकर नहीं दितो
4: नहीं हूं यो हरगिज नहीं होंदे सु कदे भी नहीं पावे जन्नू जन्नू लो क्यों ना चाड़ना पवे

0: के गल्ला मिठिया क्यों दंद पछीके
1: कुछ नहीं कुछ नहीं मकदम बाबा बस बस वे मकदम मामा और
2: मिठिया एने की यार पार की मार तो रहे वे सुनी ते पिनी दबा
0: सुनाओ भगतू थादा दर की हाल है अमन सुकून है बराबरी की साल मेरे
3: बस जी अपनी अपनी चाल चले पुराना जिम्मेदार है ना जी दूजा ना कद बर्दाश्त करें आज ते पहले ही पैड़ो थो चाल भी खराब हो गई है
0: अजो भी उनकी भूख नहीं मुकी उन ते हर पासे आजादी की गल होन लग गई है ते इनकी दोरा जी कौन चलन दे गुरे
3: ओ जी मुकदम साहब हम इन तन्ना ना के जाना हमने तो ऐसी दो बेला की रोटी को फिकर वे लब गई ते खा ली ना लबी ते अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला
0: रोटी तू याद आयो ते ब्याह की हो रही दुनिया ब्याह करेगो ते पक्की भी लबेगी नहीं ते आपे तलूस नहीं पेंगी
3: इससे वास्ते ते हूँ थारा को लाजन को था जी
0: के किधर रिश्तों करवानो तेरो
3: ना ना जी मेरा नहीं

0: मुकदम नूरा आरंग, ये भी जवान हो गए ना जी, तब भी अपनी जिम्मेवारियां ते बरी हो जाएगा।
1: उम्मी मुकदम हो रहा है कद की मगर पे भी है, पर इंदर देखो ना, एक काम तो सुना है ना दूजा विचो काट छोड़े।
2: ब्याह गदरिया नाल वे गल्ला नाल नहीं, फिर काई चाच की भी होनी लोड़िए, उसका खानदान को पतो होनो चाहिए। क्यों रे बंग तू, तेरी नजर में काय कुड़ी है?
3: ऐना ऐ मुकदम बाबा ऐना,
2: तू चुप कर रे, ऐ में भांग कर तो रे, सोमरी क्यों बिज ना बोले कर आते बंग तू, उनको तो काय कुड़ी है तेरी नजर में?
0: हां जी, वाह अरनी आला चौधरी औरंगी कुड़ी रानी है ना, बड़ी सेणी है।
1: हां हां, एक बार मैं भी ब्यावा वाले की तकी रही है, आय हाय ऐ तो बड़ी सोणी खयाली।
2: ते फिर आज तोड़ी क्यों नहीं याद आई, नूरा ना भी पसंद है या नहीं?
3: आ ना जी डाडी डाडी पसंद है जी।
2: ते तेरे खलेड़ी चढ़नी पेगी, तो फिर बेगमा फुर्सत काट के निकी ना तक आइए, जे कोई गल भंती होई ते गल टूटिए।
0: ए वो ते कम जी के डाडी सनी जोड़ी जुड़ेगी, मेरी और नामी रोल पोल हो जाएगी ना चौधरी जी।
2: चंगा रे भाई बन, तू फिर कुछ कर नहीं पेगो, ते तू उन जना की भी खैर खबर रखिए, भीत बारह लोग के रंग बदलते रहे।
3: उनकी के मजाला जी बंदे आ गए, जरा गल दा करें पतो लगे कितने भी सो है।
4: बस बस पहलवाना, मुंह बंद कर, ते मैसा ने जाके देख।
3: हां अपने मतलब निकल गया ना।

0: देखो भाइयों, आज महाराज गठा उनको एक ही मकसद है, जे हमने अपनी शान शौकत ते जागीरदाराना ठार कायम रखनी है। इस खातिर सब तो पहला मारा मा इत्तेफाक लोड़िए, कदे हम एक वांगा ता नूरा चेची को मुकाबलो कर सकांगा।
1: सच खान साहब, सच के इत्तेफाक हर कौम ते बरादरी मा लेड़िए ता ही दुश्मन को मुकाबलो हो सके। वारे धीरा मुकदम नाल मारी के दुश्मनी है जी?
2: दो तेरी की दो ही, वे ते मारी जाना कप्तान है, खुद उनकी तरफ है।
1: तुम तो छड़ा ना ही शरीफ है, ये टिमकी लाने छोड़ दे भाई, मैं आपकी नाती में के ले बैगो। खान जी, इसकी गला बना जाओ, ये तो अपनी जीव का स्वाद लाते रहे।
2: अल्जाम ना लाइए भाई, अल्जाम ना लाइए, मैं जाबर खान नाल वक्त गुजारे हुए, तम कल गया बच्चा है, बीच की गला ना तम के जाने, बिना हो इनो नहीं पुलो, जब मुकदम नूरा का बाप मुकदम बाजा ने जाबर खान ना कचहरी माँ झूठो साबत कर गए, उस फकर ना सिर बजा लियो। दो
0: आपस में बहस करने की काय लोड़ ने मंतू, शरीफ खान सही कह रहे हैं, मुकदम बल्ले बल्ले मारी सारी असामियां ना अपना तर मोड़ ले गए, मारा अलीमान जी बड़ी बड़ी गल कर लगते हैं, कदे इससे ना उतर रहे हो तो हमारी जमीन खिली रह जाएगी।
1: इसमें शक नहीं जी, मुकदम अलीमान जी बल्कि गरीब गुरबा की मदद करे, वर वो किसी ने उकसाते तो नहीं ना जी।
0: ना फिर लोका का मुंह मजबान कितों आ गई है, आज लेतरी लाड़ा में बुलाओ तो मुकर जे, काट कड़ी आनी है तो मजदूरी मंगन शुरू हो जाए, उधार ले जाए तो उसमें जना या फिर डंगर मैचा ना निकल गई तिहाड़ी मुझे ले आवे।
1: खान साहब, उन गरीबों ने ही तो अपने पेट भर देने, अपनी जगह की गल है, ज्यादी तो यह है ना उनसे।
3: बस अगे ने बोलिए, तेरा तू ही बिना मुकदमा की छा की वांग कावे, तुम्हारी नहीं मुकदमा की वकालत कर रहे वह मकदूर। अरे तेरे बात तो इसो नहीं थो, तू दूजा का कोठा मां डेरे लान पर बड़ियार करे, बस दिल है तू, मारा आली मां जी मुकदमा की जमीन में काम करे, अपनी डोगिया में नाच कमान लग गया, कदे भी अपना करूं खान लग गया ना, ता थारा कुठारा मां कौन लग जाएगो।
2: ना यानो जी, इतना बिजनी गला को पेट कित है,
0: यो तो मिला कारपेटी लगे, आज भी यो उनको टोरे वो सही लगे।
1: ऐसी काय गल नहीं है खान साहब, हूं ना तो चुगल खोर हूं तो ना ही मुनाफिक, हूं तो सिर्फ इतने हुक्म मांगे, खा न खा की दुश्मनी करांगे जाड़ो बन जाए।

0: गुस्साई गो बच्चो बच्चो मुकदम की कसम नहीं खातो
1: वर्रे होना खान लग गए ये मुकदम काट का वचन लगा रहे हो इसको भी थोड़ा पता होना वो
0: हाँ जी काट काट के वेले बांडी चाड़न वास्ते कटा रहे हैं
1: इसका मतलब तू समझे उत बांडी चाड़न की खेल और पै गई है
0: वो जनाब उनकी जगह है मैं समझता बांडी चाड़ रहे हैं पहला हमने इसमें की एतराज है
1: एतराज एतराज तो है वह हमारी चरांद है अग्गे पीछे है हमारी जगह है उसकी न्याज उतके छोड़ेगी
2: मंतू तेरे उतान जान है दोस्ती रास्ती है वर खून मारे ना रले एक गल चंगी तरह मुकदमा ना कह दिए जे लामा बांडी चाड़न की सोच जिला विचू कर छोड़े नहीं तो फसाद हो जाएगो कतल हो जाएगा उठ
0: अच्छा जी मैंने इस नौबत को अंदाजा ही नहीं था पर मुकदम नूरो अपने कम्मा तू पीछे नहीं हटतो उसकी अटल रह गई पत्थर पर लकीर अपनी जबान की लाज पीछे वो गर्दन की परवाह नहीं करतो फिर तमाम अंदाजो लाल जी गुरसाई तो गुरसाई और रिंगो ग्राम ही नूरा मुकदम पीछे जान दे
1: जान देने की शौक है ना पूरी हो जाएगी यह बांडी नहीं तरसे बल्कि उसकी कवर बनेगी काग बोलेगा उसकी बांडी की बलि यो मेरो भी वायदो है बस आज की यही कचहरी थी उठो हम चला
0: अच्छा जी चल रहे फिर

जी सजनों, तुम सुन रहे था एक खूबसूरत जो ड्रामो नूरो, इसकी पहली किस्त। तो बाकी हूँ पहला नसरी अदब की गल करूँ थो ना, तो तुम ड्रामा को यो मयार देख लियो कि रेडियो ड्रामा जित खेडे या थिएटर ड्रामा खेडे या तहरीरी ड्रामा जड़ा बांधे आया। बाकी गोजरी जबान या गोजरी अदब माँ ये तमाम चीज़ जड़ी हैं अपना बेहतरीन अंदाज में मौजूद हैं। और अमना इस चीज़ को फ़ख्र होना चाहिए कि गोजरी जबान ना ये सारी चीज़ मैसर आई और लिखन आला ने भरपूर चीज़ को मुजाहरो कियो और वाकई उन्होंने काय कसर जड़ी हवा नहीं छोड़ी। अगर थारी खिदमत में पेश कर दें सैफ अल मलूक।

इसके नाल ही गोजरी प्रोग्राम ओबला मुकरना वे गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वसीम फारूक वानी अपना मेजबान डॉक्टर अल्ताफ निजामी ना अगली मुलाकात थोड़ी बख्शो इजाजत चलना जी फिर रब रखो।

समीन, आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक वानी। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहां से गोजरी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अकलीती सेल का सूबा कश्मीर का एक इजलास की सदारत करता हुआ डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने हमेशा अकलीता ना तामीर तरक्की में शामिल रखी ते बराबर की नुमाइंदगी दी। जो इजलास अकलीती सेल का कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद की निगरानी में मुनक्द हो इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर एमएलए लालचुक एहसान परदेसी ने पार्टी की मजबूती वास्ते अवामी रबताकारी में तेजी ते बेहतर तालमेल पर जोर दिता है। वे पार्टी हेडक्वार्टर में हल्का इंताब लालचुक का पार्टी कारकुनत अहदेदारा का इजलास के नाल खिताब कर रहा था। कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का मेम्बरान ने आज कुलगाम में एहतजाज किया। फेडरेशन का मेम्बरान ने हालिया मौसमी सूरत हाल नाल मेवा बागात ना होया नुकसान की सरकार तो भरपाई को मुतालबो कर रहा था। मारा नुमाइंदा खुर्शीद पडरू के मुताबिक मुजाहरीन ने फसल बीमा योजना ना लागू करन ते किसानों का कर्जा माफ करने को भी मुतालबो किया है। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू ते कश्मीर अभियान के तहत मनशियात मुहालफ सरगर्मी जारी ते यूटी में इस बिदत तो पाक करने वास्ते तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की इक्तिसादी जराइम तो मुतलक विंग ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर का इश्तराक के नाल आईजीसी लासीपुरा पुलवामा में काफ़ी मकदार में नशीली अशिया ना तबाह कर दी है। ये अशिया एएनटीएफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान जब्त की थी। पुलिस ने जम्मू सूबा का कठुआ जिला में दहशत पसंदा की एक कमीनगाह को पतो ला गया उतो कुछ असला बरामद कियो। हमारा जम्मू का नुमाइंदा ने खबर दी है कि एक मुसद का इतला मिलने तो बाद पुलिस ने मुजगुरा कमीनगाह तो दो हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। इसी दौरान बीएसएफ ने हीरानगर में 45 साल प्रेम नामी एक मशकूक शख्स ने हिरासत में ले गए पुलिस के वाले किए है। आखिर पर खास खास खबर एक बार फिर सुन लो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पांच चौक में यात्री नवास में इंतजाम को लियो जायजो। यात्रियों का रूहानी सफर ते जम्मू कश्मीर में उनका क्याम ना यादगार बनाने पर दितो है जोर। जम्मू कश्मीर में मियार पर मबनी सियाहत ना दितो जा रही है फरोग। पायदार सियाहत तो मुतलक कनकलियो ना वजीर आला को खिताब। एवाई कुंभा का तालब इलमों की फीस माफ किया जाएगा फैसला भी अवाम सतह पर वसी पजीराई। भारत आस्ट्रेलिया ने इलाकाई इस्तेहकाम का फरोग वास्ते काम करने पर कियो है इतफाक। इसके नाल ही खबरों को यू बुलेटिन मुक्यो। आकाशवाणी तो 6:05 पर कश्मीरी जबान में अगलो बुलेटिन सुनो ना भूलियो। हम ना दियो इजाजत। खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देश

0: देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: इशु आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर तो एफ एम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। समीन मोहतरम शाम ची शबजित 5 मिनट सपद पेशो खदमत प्रोग्राम गमी बाइन हिंदे खतरे।

0: अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: शेरबीन के सामईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसुआत हैं श्री अमरनाथ यात्रा एसएन तरीके पर जानी एलजी मनोज सिन्हा ने पंथा चौक बेस कैंप जाकर इंतजाम का लिया जायजा, यात्रियों से भी की बात। वजारत दाखिला ने आईएएस और आईपीएस अफसरान के बड़े पैमाने पर के तबादले, शाहिद इकबाल चौधरी भेजे गए अरुणाचल प्रदेश। ठाठरी डोरा में बादल फटने के वाके के बाद इमदादी कार्रवाई जारी। एसकेआईसीसी श्रीनगर में आज हुआ पायदार सियाती मनसूबा बंदी, अनुमान से कनकलियो मुनक्कद, वजीर आला ने की शमूलियत। और भी मौजूद है आज के शहरबीन में एक वक्त के बाद।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
4: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
5: वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
6: नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
7: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
6: अच्छा भाभी,
7: और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
6: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
8: याद रहे सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
10: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए

0: रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर्स से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमयी बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में पायदार सयाती मनसूबाबंदी अनुमान से मुनक्कदा कनक्लेव में शमूलियत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रिवायती सयाती तर्ज अमल से आगे बढ़ते हुए एक ऐसे जदीद मॉडल को अपनाने की जरूरत है जो तवील मुद्दती मनसूबाबंदी, साइंसी तहकीक, माहौलियाती तहफ्फुज़ और मकामी आबादी की शमूलियत पर मबनी हो। मुकम्मल रिपोर्ट सुनते हैं इमरान नायकू से।
3: महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर की जानिब से आज सस्टेनेबल टूरिज्म प्लानिंग डिजाइनिंग टूरिज्म फॉर टुमारो के उनवान से SKICC श्रीनगर में एक कॉन्क्लेव मुनाक़िद किया गया, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलवानी, MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, चीफ सेक्रेटरी अटल डलू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला धीरज गुप्ता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा सयाहत आशीष चंद्र वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर JKTDC श्रिया सिंगल, डायरेक्टर SKICC मुफ्ती मोहम्मद फरीदुद्दीन, डायरेक्टर सयाहत कश्मीर सैयद कमर सज्जाद, डायरेक्टर सयाहत जम्मू विकास गुप्ता, सेक्रेटरी रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स हारिस अहमद हंडू, मुख्तलिफ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद, माहरीन और आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। अपने कलीदी खिताब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पायदार सयाहत अब एक इंतखाब नहीं बल्कि वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर सयाहत को माहौलियात के तहफ्फुज़ के बगैर फरोग दिया जाए तो वो चंद बरस तक तो चल सकती है लेकिन तवील अरसे तक बरकरार नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त अपनी सयाहती पॉलिसी पर दोबारा गौर कर रहा है और ये फैसला करना होगा कि आया मुस्तकबिल में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सयाह लाने पर जोर दिया जाए या कम तादाद में ऐसे सयाहों को रागिब किया जाए जो बेहतर तजुर्बे के लिए ज्यादा खर्च करने को तैयार हों। वज़ीर आला ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि हम 100 सयाहों से एक एक रुपया कमाना चाहते हैं या एक ऐसे सयाह से 100 रुपए जो मयारी तजुर्बे के लिए ज्यादा खर्च करे। यही सोच मुस्तकबिल के तमाम टूरिज्म मास्टर प्लान्स की बुनियाद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत सयाहों की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम करती है, तहम मुस्तकबिल में बाद सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद को मुनज्जम करना जरूरी हो सकता है ताकि कुदरती माहौल महफूज रहे और सयाह भी ट्रैफिक जाम, भीड़ और नाक सहूलियात से महफूज रहते हुए बेहतर तजुर्बे हासिल कर सकें। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों की सयाहती सूरतेहाल का जिक्र करते हुए कहा कि माजी में हालात मामूल पर आने का पैगाम देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सयाह लाने की कोशिश की गई लेकिन हालिया बरसों के वाकयात ने साबित किया कि जम्मू कश्मीर में सयाहत इंतहाई हसास शोबा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से पहले हुकूमत ट्रैफिक जाम और गैर मामूली सयाहती रश से परेशान थी जबकि इस वाकये के बाद होटल और सयाहती मकाम खाली हो गए। उनके मुताबिक एक वाकया पूरे सयाहती सीजन को मुतासिर कर सकता है, इसलिए मजबूत और पायदार सयाहती मनसूबाबंदी जरूरी है। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तकबिल की सयाहती मनसूबाबंदी में ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, कचरे की निकासी, पानी का तहफ्फुज, तामीराती कवानीन, सयाहती मकामात की गुंजाइश और मकामी आबादी की शमूलियत को बुनियादी हैसियत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ नई सड़कें और पार्किंग तामीर करने से मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि साइंसी बुनियादों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है। उन्होंने खबरदार किया कि बगैर मशावरत के किए गए फैसले सयाहों और मकामी ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आला ने बैरूनी रियासतों से आने वाली सयाहती गाड़ियों पर भी तश्वीश जाहिर करते हुए कहा कि अगरचे इससे दुनिया को ये पैगाम मिला कि कश्मीर दोबारा सयाहत के लिए महफूज है लेकिन इससे मकामी बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर दबाव भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि

0: और इसको चारों तरफ से जो है एक रोड का नेटवर्क है, और जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है उनकी जो भी कहीं अर्थ कटिंग होती है या कुछ भी होता है उसको आइडेंटिफाई प्लेसेस होती है डालने के, पर ये नालों को बंद करते हैं, नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन होते हैं, नालों के ऊपर मिट्टी डाल के रोड्स वाले पूरा सारा जितना मिट्टी है उसमें डाल देते हैं, और ये नेचुरल जो वे है जो वो बंद हो जाते हैं, और पानी जो का रास्ता बंद किया जाए तो उससे नुकसान करने का। तो सरकार को चाहिए इमीडिएट इनको रिलीफ रिहैबिलिटेशन का काम करें, इनके दम मकान गए हैं, इनके घर सामान गया है, इनके घर हालात खराब है, ये सारे घर टूट गए हैं, इमीडिएटली इनको रिहैबिलिटेशन के लिए इनको जामिया प्रोग्राम किया जाए और इनको रिहैबिलिटेट किया जाए, और ताकि ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान चार या पांच बार इसमें पलट के जद में आया है। किश्तवाड़ में भी ऐसा ही हुआ है, आपके तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा में या तो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, एक्सीडेंटल जोन एरिया है, यहाँ सनो सुनामी यहाँ का मुकादर है, फ्लड यहाँ का मुकादर है, यहाँ ड्राट यहाँ का मुकादर है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज फ्लड आते हैं, रोज सनो सुनामियाँ होती हैं, तो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं। तो ये जब तक अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम न बनाया जाए, इसमें सरकार को बड़े सीरियसली सोचना चाहिए, और चाहे वो पार्ट हमारी सरकार का हो चाहे पार्ट लेफ्ट गवर्नर साहब का हो, इसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जामिया प्रोग्राम बनाया जाए ताकि लोगों को सेव किया जाए।
1: ये थे साबिक काबीना वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी। सभी नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट भलेसी ने पार्टी के अहदेदारों के हमरा कई देहात का दौरा किया, जिनमें गंडो, गवाड़ी, हलोड, काको, भर्ती, बड़गी, बर्ती बाला, डमोसा शामिल हैं। गवाड़ी से डोम वाया बर्ती, गवाड़ी से चांटी वारा, गोल बाड़ से गट्टी वाया कोट, और इनके अलावा भलेस के कई सारे इलाकों की सड़कें खराब पड़ी हैं, जबकि कई इलाके आज भी पुख्ता राब्तों से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में बिजली और पानी भी एक मसला बन चुका है, और यहाँ बिजली की तरसीलें लाइनें आज के दौर में भी दरख्तों से लटकी पड़ी हैं। उन्होंने इन तमाम मामलों की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराते हुए फौरी मुदाखलत की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अकलेती सेल सूबे कश्मीर का एक इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। इजलास में पार्टी के मौन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, नायब सदर सूबे कश्मीर और MLA हजरत बल सलमान अली सागर समेत पार्टी के दीगर अहदेदारान और मुख्तलिफ अजला से आए अकलेती सेल के नुमाइंदों ने शिरकत की। सब डिवीजन त्राल के इंतजामी की तरफ से आज त्राल के दूर उत्तरादा गांव जाडीहाड़ में एक प्रोग्राम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की आगाही और ग्राम सभा को लेकर मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम की सदारत ADC त्राल साजिद यहिया नकाश ने की, जबकि इस मौके पर तहसीलदार त्राल इमरान अहमद, BDOs, रेंजर्स और दीगर मुलाजमीन की खासी तादाद मौजूद थी। समीन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक फैसले के तहत सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है, और उन्हें तमिलनाडु के साथ साथ पौंडीचेरी रियासतों के इंचार्ज के तौर मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस क्यादत के इस फैसले को पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों को मजीद मुस्तकम बनाने की कोशिशें करार दिया जा रहा है। इंतजामिया कमेटी मस्जिद शरीफ कमरुद्दीन साहब शेरगढ़ी जहांगीर चौक श्रीनगर की तरफ से मौसला बयान के मुताबिक हजरत सईद कमरुद्दीन साहब का सालाना उर्स 24 मुहर्रमुल हराम के मुताबिक 10 जुलाई जुमतुल मुबारक बाद नमाज ज़ोर मस्जिद शरीफ सईद कमरुद्दीन साहब शेरगढ़ी में अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में एक दीनी मजलिस का भी एहतमाम किया गया है, जिसकी सदारत मौलाना खुर्शीद अहमद कानूनगो करेंगे। सामीन वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से किसानों की शिकायत है कि उन्हें खेतों और बागात को सींचने के लिए मुनासिब पानी दस्तियाब नहीं हो रहा। किसानों के मुताबिक आपाशीय नहरों और कोहलों की बरवक्त सफाई और मरम्मत न होने, नई स्कीमों की तामीर में ताखीर और नहरों के किनारों पर तजावजात खड़ा करने की वजह से खेतों तक पानी पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। इस हवाले से सबसे ज्यादा शिकायत इन दिनों कुलगाम जिले से मौसूल हो रही है, जहां पानी दस्तियाब न होने के बायस किसानों के खेत सूखने का अंदेशा लाख है। फारूक राठौर की रिपोर्ट।
2: जनूबी कश्मीर के जरिए एतबार से अहम जिला कुलगाम महकमा आबपाशी की जानिब से गुज़श्ता दो दहाइयों के दौरान شروع کی گئی متعدد لفٹ اریگیشن سکیمیں اور آبپاشی بورویل منصوبے نامکمل پڑے ہیں اور ان منصوبوں کی تکمیل نہ ہونے کے باعث ہزاروں کنال دریائے اراضی دان کے کھیت سبزیوں کی کاشت اور وسیع پیمانے پر قائم سیب

अखरोट, नाशपाती और जिगर मेवा बागात मुनासिब आबपाशी की सहूलियत से महरूम है, जिसके नतीजे में जिले के सैकड़ों किसानों और बाग मालिकान को हर साल करोड़ों रुपयों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा इलाकों के बाग मालिकान और जमींदारों ने इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश और नाराजगी का इजहार करते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर से पूरी मुदाखलत की अपील की है। शहर बीन को मिली तफसीलात के मुताबिक साल 2006 से 2011 के दौरान मरकजी मावनत वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों कुलगाम, दिवसर, नूराबाद, इलाका कोंड और इलाका होमशाली बुक के साथ साथ दीगर इलाकों में जरिए शोबे को मजबूत बनाने और किसानों को साल भर आपाशी सहूलियत फराहम करने के मकसद से कई अहम लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों और आपाशी बोरवेलों की तामीर का आगाज किया गया था। उन मंसूबों में खास तौर पर वांगाम, दिवसर, सपर टंगपोरा, रुजलू, ठाठू, वरिल, पांचत, कटराजा, बानीमुला और दीगर इलाकों की स्कीमें शामिल थी, जिन स्कीमों से हजारों कनाल, मेवा बागात और जरिए जमीन

0: बोरवेलों की तामीर का आगाज किया गया था। उन मंसूबों में खास तौर पर वांगाम, जूसर, सपटंगपोरा, रुजलू, ठाठू, वरियल, पांचत, कटराजा, बानी मुलावर दीगर इलाकों की स्कीमें शामिल थी। जिन स्कीमों से हजारों कनाल, मेवा बागात और जरी जमीन को पानी फराहम किया जाना था, तहम मुतलका महकमे को मतलूबा फंड दस्तियाब न होने के बायस ये तमाम मंसूबे अधूरे रह गए और आज तक उनकी तकमील मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। और इन नामकमल मंसूबों के बायस अकाल, जूसर, खुलशन, विरखड़, दर्द गुंड, बिरीगाम, गुंडीपोरा, कुलीनार और कस्बा जूसर के साथ साथ चुनरीगाम, सबर टंगपोरा, रुजलू, कतरीडार, ठाठू, वांगाम, शाहू सचन और दीगर मुल्का दर्जनों इलाकों के किसान और बाग मालकान शदीद मुश्किल से दुचार है। इन इलाकों में हजारों कनाल जरई अराजी बारिश पर मुनसर होकर रह गई है, जबकि मेवा बागात को भी बर वक्त पानी दस्तियाब न होने के बायस पैदावार में मुसलसल कमी वाका हो रही है और मेवा की क्वालिटी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मकामी बाग मालकान और जमींदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जरई तरक्की, किसानों की आमदनी में इजाफा और बागबानी के फरोग के बुलंदबांग दावे अपनी जगह, लेकिन जमीनी सतह पर सूरत हाल इसके बरकस नजर आती है। शहरबीन को मिली मजीद तफसीलात के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान भी जिला कुलगाम के कई दीगर इलाकों में हजारों कनाल, जरी अराजी और वसी मेवा बागात को आपाशी की सहूलियत फराहम करने के खातिर नई लिफ्ट इरीगेशन स्कीमों की तामीर की तजावीज तैयार की गई। जराई के मुताबिक टंगवुडर, मटीबुग, कांजी कुला, चेकवटू, हर्द मंदगुरी और दीगर कई इलाकों के लिए महकमा आपाशी ने मुतादिद बार मुफसिल मंसूबे और तकमीने हुकूमत को भेज दिए, तहम 11 बरस गुजर जाने के बावजूद इन तजावीज को अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिसके बाईस इलाकों के किसान भी आज तक जदीद आपाशी निजाम से महरूम है। महकमे के माहरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली, बारिशों में कमी और जेर जमीन पानी की सतह में गिरावट के मौजूदा हालात में जदीद आपाशी निजाम की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में बरसों से जेर इल्तवा इन मंसूबों की अदमी तकमील न सिर्फ किसानों और बाग मालकान के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, बल्कि इससे खत्ते की जरई मईशत भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। जिला भर के बाग मालकान और जमींदारों ने मुतलका इंतजामी और महकमा आपाशी से पुरजोर मुतालबा किया है कि जिला कुलगाम में बरसों से जेर इल्तवा तमाम डिप्टी इरीगेशन स्कीमें और आपाशी बोरवेलों को तकमील तक पहुँचाने के खातिर हंगामी बुनियादों पर फंड मंजूर और वागुजार किए जाए, ताकि किसानों और बाग मालकान को सालाना करोड़ों रुपयों के नुकसान से बचाया जा सके और जिला के जरई और बागबानी शोबे को मजीद मजबूत और पायदार बनाया जा सके।
1: ये थे कुलगाम से फारूक रातर। इधर कोरिबल, गोपालपुरा, मटन लेन नंबर 3 के बासिंदों ने भी शिकायत की कि उन्हें खेतों को सींचने के लिए इन दिनों पानी दस्तियाब नहीं हो रहा है, जबकि महकमे इरीगेशन के एहलकार और अफसरान ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज NIFT कैंपस श्रीनगर में मुनक्कदा एक जानकारी कैंप में शमूलियत की और इस मौके पर हाजरीन को सेरिकल्चर शोबे में मौजूद रोजगार के वसाइल के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही साथ अबरेशम की पैदावार बढ़ाने और बेहतरीन सिल्क की पैदावार के लिए उठाए जा रहे इकदाम के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौजूदात मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
4: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: अरे, ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का

0: दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
2: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहां काम नहीं करते। यात्री बालटाल, लुनवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
1: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में जेर तालीम 9वीं से 12वीं जमात तक और डिग्री कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे AAY तबके के तलबा का पूरा फीस माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तारीखी फैसले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया एक और वादा पूरा हो गया है। खुराक, शहरी रसदात और उमूरी सार्फीन के वजीर सतीश शर्मा ने पंजाब सरकार के साथ आला सतह की सिलसिलावार मीटिंगों के दौरान जम्मू कश्मीर के कोठदारों के कई मसाइल हल करके अहम कामयाबी हासिल की है। मीटिंगों के तनाजुर में इस तिजारत से वाबस्ता अफराद के तशवीशों की चाराजोई के लिए फौरी अहकाम जारी किए गए। वजीर मौसुफ ने पंजाब के अपने हम मनसब के अलावा वहां के चीफ सेक्रेटरी नींस साइंस और टेक्नोलॉजी और महकमा दीही तरक्की के सेक्रेटरियों के साथ भी मीटिंगें की। मीटिंग में लाइव स्टॉक की आसान तरसील यकीनी बनाने का मामला जेर गौर रहा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। पापोर के MLA हसनैन मसूदी और सोपोर के MLA इरशाद रसूल कार ने आज श्रीनगर में ज़रात, पंचायती राज और इमदाद बाहमी के वजीर जावेद अहमद डार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों अरकान कानून साजिया ने अपने अपने असेंबली हलकों से जुड़े अवामी और तरक्याती नौयत के मामलात उठाए। सरकारी यकीन दहानियों से मुतलिक जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की कमेटी की एक मीटिंग आज कमेटी के चेयरमैन अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक़द हुई। मीटिंग के दौरान महकमे तामीरात आमा से मुतलिक सरकार की तरफ से कराई गई यकीन दहानियों पर अमल आवरी की अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में कमेटी के सभी अरकान मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जम्मू कश्मीर की असल ताकत और शनाख्त है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अकलीती सेल के सूबे कश्मीर के एक इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि NC ने हमेशा अकलीतों को तामीर और तरक्की में शामिल रखा और बराबर की नुमाइंदगी दी है। यह इजलास अकलीती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद की निगरानी में मुनक्कद हुआ। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और MLA लाल चौक अहसान परदेसी ने पार्टी की मजबूती के लिए अवामी राबताकारी में तेजी और बेहतर तालमेल पर जोर दिया। वो पार्टी हेडक्वार्टर में हल्का इंतखाब लाल चौक के पार्टी कारकुनों और अहदेदारों के इजलास से खिताब कर रहे थे। प्रदेश BJP के सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में BJP से वाबस्ता सीनियर लीडरों की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा समाजी और सियासी सूरतहाल का जायजा लेने के बाद अवामी राबताकारी को तेज करने और लोगों के मफादात की हिफाजत के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। प्रदेश BJP के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी ने आज करना में मुनक्कद करदा मीटिंग के दौरान पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों और BJP को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करने की हिकमत अमली पर मुतलकीन के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग में प्रदेश BJP के सेक्रेटरी मुदस्सर वानी और जिला सदर कपवाड़ा सईद रफीक शाह के अलावा करना हल्के के हल्का सदर इम्तियाज मीर भी मौजूद थे। अशोक कौल ने बाद में साधना टनल के मुजवजा मकाम का भी दौरा किया। बुलंदपाया वली हजरत सईद कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह का सालाना उर्स कल यानी 10 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाका शेरगढ़ी जहांगीर चौक श्रीनगर में नमाज जुमा दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। इस मौके पर उलमाए दीन औलिया किराम की सीरत बयान करेंगे। महकमा इतलातो तालुकात आमा की डायरेक्टर श्रेया सिंगल की सदारत में आज एक ताजियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान महकमे के एक ऑफिसर मजीब अहमद के साथ यकजहती का इजहार किया गया, जिनके फर्जंद का इंतकाल हो गया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से NIFT कैंपस ओमपुरा बड़गाम में आज मेरा रेशम मेरा अभिमान के तहत एक तरबियती वर्कशॉप मुनक्कद किया गया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 60 से जायद अफसरान ने शिरकत की। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कुलगाम पुलिस ने आज करीब 1 करोड़ रुपए मालियत के रिहायशी मकान को सर्वमहर किया। पुलवामा पुलिस ने NDPS के तहत जब्त की गई मुनशियात की कुछ मकदार को तलब किया और मुनशियात के खिलाफ कतन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने का अजम दोहराया। बारामूला पुलिस ने UAPA के एक मामले की तहकीकात के सिलसिले में आज जिले के कई मकामात पर

0: किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत में सरमायाकारी करने और भारत को ऑस्ट्रेलिया की तिजारती मंजिल बनाने पर भी जोर दिया। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन सुपर के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल शोलर की तरफ से भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सरमायाकारी का खैर मकदम किया और कहा कि इस सरमायाकारी से भारत पर बैन अल-अक़वामी कारोबारी इदारों के भरोसा, भारत की तरक्की और इक्तिसादी इस्तेहात के बारे में एक खुशनुमा झलक पेश करता है। एक और प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मजबूत पुल करार दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरक्की और खासकर तालीम और सेहत के शोबों में भारतीयों के रोल की तारीफ की। उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों पर जोर दिया कि वो भारत की तरक्की में अपना रोल अदा करें और अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तआवुन, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी खुशहाली में मदद मिलेगी। इस मौके पर अपनी तकरीर में ऑस्ट्रेलिया के वजीर अजम एंथनी एल्बनीज ने वजीर अजम हिंद को भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबेन एक पुल के तौर पर हवाला देते हुए दोनों जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके रोल को तस्लीम किया और सराहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा भी बहुत ही कामयाब साबित हो रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नई सतह पर पहुँच रहे हैं। तबसरा खत्म हुआ, इजाजत दें, शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज और बात हम कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामने दुनिया की सियासत और मईशत एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई है कि हजारों मील दूर होने वाला कोई वाकया भी पाकिस्तान के आम शहरी की जेब पर असरअंदाज होता है। चंद हफ्ते कबल मशरिकी वस्ता में जंगी कशीदगी ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को तेज़ी से ऊपर पहुंचा दिया। हुकूमत, ट्रांसपोर्टर्स, एलपीजी डीलर्स और ताजरों ने फौरी तौर पर इस इजाफे को बुनियाद बनाकर पेट्रोल, किरायों, गैस सिलेंडरों और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। आवाम को बताया गया कि आलमी हालात के बाइस कीमतें बढ़ाना नागजीर है, लेकिन अब जबकि जंग ख़त्म हो चुकी है, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नुमाया हद तक कम हो चुकी हैं, तो पाकिस्तान में आवाम को हकीकी रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में एक अजीब माशी रिवायत जन्म ले चुकी है। जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर चंद घंटों या चंद दिनों में पाकिस्तानी बाज़ारों तक पहुँच जाता है, मगर जब कीमतें कम होती हैं तो इसका फ़ायदा महीनों तक आवाम तक नहीं पहुँचता है। ये रवैया न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि आज़ाद मंडी के उसूलों के भी खिलाफ है। कीमतों में इजाफे के लिए आलमी हालात का हवाला दिया जाता है, मगर कमी के वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ बहाने तराश लिए जाते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के शोबे को देखिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद न बैनुल अजलाई बसों के किराए में कमी आई और न ही मालबरदार गाड़ियों के किराए में कोई वाजा फर्क आया। यही इजाफी किराए बाद में वहाँ सब्जी, फल, आटा, चीनी, दालों और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में शामिल हो जाते हैं। यूं तेल सस्ता होने के बावजूद भी पाकिस्तान में महंगाई अपनी जगह बरकरार रहती है। सामिन, एलपीजी का मामला भी इससे मुख्तलिफ नहीं। आलमी कीमतों में कमी और मकामी सतह पर नरख कम होने के बावजूद बहुत से इलाकों में सार्फिन से पुराने रेट वसूल किए जा रहे हैं। कहीं मसनूवी किल्लत पैदा की जाती हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट के इजाफी अखराजात का बहाना बनाया जाता है और कहीं डीलर्स अपनी मर्जी के नरख वसूल करते हैं। नतीजा ये है कि आवाम को सरकारी ऐलानात का अमली फ़ायदा नहीं पहुंचता। इस सूरत हाल की एक बड़ी वजह वहां की इंतज़ामी नाअहली है। मुतल्लिका इदारे कीमतों की तायुन, निगरानी और निफाज में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते दिखाई नहीं देते। इस मसले का एक नफ्सियाती पहलू भी है। ताजर जानते हैं कि अगर सार्फीन महंगी चीज़ खरीदने पर मजबूर है तो कीमत कम करने की फौरी ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ सार्फीन के पास मुतबादिल ज़राए महदूद होते हैं।

0: आकाशवाणी के श्रीनगर के स्टेशन से आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज, और वादी की आवाज में हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, भारत ने कलदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद पर पहलगाम हमले में मुलविस होने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की गई है। जमात उद्दावा के सरबरा 2020 से दहशतगर्दी की माली मौनत के इल्जाम में पाकिस्तान में एक जेल में कैद है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में हाल ही में पाकिस्तानी दहशतगर्द और लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है। ये दहशतगर्दाना हमला गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में किया गया था और इस हमले में 26 सयाह मारे गए थे। इस वाकये के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया था और सरहद पार दो तरफा हमले भी किए गए। इस हमले की तारें बराह रास्त पाकिस्तान से जुड़ी हैं और इस हमले के पीछे इस्लामाबाद की हिमायत हासिल रही है। ऐसे में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने दिसंबर में इस केस में लश्कर तैयबा, इसके जैली ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट और 6 अफराद के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की थी। हुकाम के मुताबिक द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इब्तिदा में हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, ताहम बाद में उसने इनकार कर दिया था। NIA ने कहा कि हाफिज सईद पर इनफरादी हैसियत में और दोनों तंजीमों के सरबराह के तौर पर इल्जाम आयद किए गए हैं, जिनमें साजिश और मौनत से मुतलिक शवाहिद शामिल है। हाफिज सईद पर 2008 के मुंबई हमलों में मुलविस होने का भी इल्जाम है, जिनमें 166 अफराद मारे गए थे और वो 2020 से दहशतगर्दी की माली मौनत के इल्जाम में पाकिस्तान की एक जेल में कैद है। 1592 सफात की चार्जशीट में तौसी के तौर पर दायर की गई इस चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद के किरदार और साइंसी तहकीकात और वसी जमीनी सतह की तस्दीक के जरिए NIA के जरिए जमा किए गए शवाहिद की तफसीलात दी गई हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने सयाहों को निशाना बनाया और मजहब की बुनियाद पर टारगेट किलिंग की। इस हमले में 26 सयाह और एक मकामी बाशिंदा हलाक हो गया। ये मुकदमा इब्तदाई तौर पर अनंतनाग जिले के पहलगाम पुलिस में दर्ज किया गया था, बाद में जांच की खातिर मामले को NIA को सौंप दिया गया। वाज़ेह रहे सामिन के 2020 में हाफिज सईद को 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 11 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। हाफिज सईद के अलावा उनकी तंजीम के रहनुमा जफर इकबाल को भी 2 मुकदमात में 11 बरस कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद और उनके साथी जफर इकबाल पर दहशतगर्दी के लिए रकम जमा करने यानी गैर कानूनी फंडिंग करने और कलदम तंजीम के रुकन होने के इल्जाम साबित हुए हैं। दर्ज मुकदमात को अलग अलग 5.5 बरस कैद की सजा सुनाई है, जबकि उन पर 15,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। सामिन, ये तो थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आइए प्रोग्राम के आखिर पर सुनते हैं एक और फिल्मी नगमा।
1: ये

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: joining us for Spotlight tonight.
1: Thank you so much, Deeksha. Namaskar.
0: You were listening to a discussion on significant outcomes across key areas of cooperation between India and Indonesia. The participants were Professor Anshu Joshi, international affairs expert, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent.
2: Spotlight.
3: समय आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे स्पॉटलाइट मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नश्र होगा।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
5: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
5: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10

0: लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त

0: तो घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय रात के 9 बज चुके हैं। आइए समाप्त करते हैं चंद फिल्मी नगमे मोहम्मद रफी की आवाज में। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म नील कमल से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, मौसिकार रवि।

0: समीन फिल्मी रंग में आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। रात के 9:15 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरक ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज़्यादा तरक्की करो ज़्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की 3 आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबित से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायज़ा लेगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है ताकि मुल्क में उनकी मैनुफैक्चरिंग को फ़रोग दिया जा सके। ईरान ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने बूशहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नज़दीक फ़जाई हमला किया। उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी बेसिस पर हमले किए। और फीफा आलमी कप में अमरीका के बोस्टन में आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब ने मेलबर्न में आज तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर समिट में शिरकत की, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने वफ्द की सतह की बातचीत की जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना था। भारत बहरुल काहिल में अमन इस्तेहकाम कायम करने की गरज से दोनों लीडरों ने दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के सिलसिले में संग मील की हैसियत रखने वाले एक मुश्तरक ऐलानिए पर दस्तखत किए। नीज सालाना वज़राए दिफा के मुज़ाकरात की बुनियाद रखी और समुद्री सरहद की सिक्योरिटी में शराकत दारी के मुत्तहिदा लाह अमल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियत और अहम तरीन समुद्री ताकत करार दिया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम माहदे पर दस्तखत किए हैं जिसकी रूह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई कर सकेगा। उन्होंने साइबर, अहम तरीन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी और एक मखसूस अहम तरीन मिनरल्स कॉरिडोर को शुरू करने का भी ऐलान किया।
2: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: बाद में आज वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत ज़्यादा तरक्की करो ज़्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की आला तरीन 3 मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत की इक्तिसादी और तकनीकी पेशरफ्त को उजागर किया।
2: 21वीं सदी का भारत आज

0: हाँ मैं आ गया। कौन है तू? मैं तेरा गुलाबा। हाँ गुलाब सिंह। मेरे स्वामी मेरे देवता, पर मैनू वेखदा ही वो बुखला गई, चौंक गई। लत बां ओ मेरिया रब्बा, एक ही किता अते मैनू घुट के जफी पानिया फुट फुट रोन लगी। नहीं नहीं तू एक फौजी की पत्नी है, इस तरह दिल नहीं हारींदा। नहीं मेरे स्वामी नहीं, ये तुसी की आख रहे हो? उसने चुन्नी नाल अपने अथरू साफ करदे आख्या। लोकां लई सूर भावें निचर दा सी, मेरे लिए डुब चुकिया सी, फिर कदी चढ़न दी आस तक भी नहीं सी। अज चिरां पिछों मेरा डुबो होया सूरज फिर चढ़ गया है। उसने मैनू घुट के फिर जफी पा ली, ऐतका मैं भी उसनू खब्बी बहां नाल कस लिया। हुण ही जान देवांगी, हां कदी नहीं, वादा करो हुण मैनू एक अल्लाह छड़ के तुसी नहीं जाओगे। हां अमरो हुण कदी नहीं जावांगा, कदी नहीं, हमेशा हमेशा लई तेरे कोल ही रोवांगा। मैं हुण मेडिकल बोर्ड आ गया। हां मेडिकल बोर्ड।
1: साथियों, एक कहानी तुसी सुन रहे सी मेडिकल बोर्ड ते कहानीकार सन बलदेव सिंह पंछी। साथियों, पंजाबी भाषा दे विकास दी गल कीती है ते अजोकी जा नवीन अवस्था विच 1947 ईस्वी तो हुण तक ए 1947 ईस्वी दी वंड दा सब तो वध खामियाजा पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत नूं भुगतदा पिया है। सब तो वड़ा नुकसान यह है कि पंजाबी बोलदे सूबे दा वड़ा हिस्सा पाकिस्तान विच मिल गया। ओ पंजाबी हुण गुरुमुखी जां फारसी लिपि विच लिखी जान लग पई अते दिन बा दिन उना दा साहित पूर्वी पंजाबी दा दूर होंदा गया अते दूजा पंजाबी भाषा दा खेतर भी बहुत घट गया। इथों ही बस नहीं, देश दी आजादी तो बाद ही पंजाबी भाषा नूं राज भाषा दा दर्जा नहीं मिल सकिया। उंज ए बेइंसाफी कई नवी नहीं सी, सगो महाराजा रणजीत सिंह ते सिख राज काल विच राज भाषा दी फारसी अते दूजिया भाषा नू प्राप्त हुई सी। पंजाबियां नू अपनी मात भाषा नू राज भाषा दा दर्जा दवाउण लई फिर संघर्ष करना पिया। नतीजे वजो पंजाब नू 1966 ईस्वी विच दोबारा वंडिया गया अते इस दे कई हिस्सा हरियाणा अते हिमाचल नू दे दिता गया। इस दे फलस्वरूप पंजाबी नू एक वार फिर अपाहज कर दिता गया, परंतु इन्ने ज्यादा नुकसान उठाउण तो बाद आखिरकार 1967 ईस्वी विच विसाखी नू राज भाषा दा दर्जा मिल ही गया। इस तो बाद ही पंजाबी भाषा दा नियोजित अते संगठित विकास संभव हो सकिया है। राज भाषा दी कुर्सी प्राप्त करन तो बाद पंजाबी भाषा दे विकास विच बहुत सारे कदम जड़े चुके गए सन। पंजाबी दे शब्द भंडार विच वादा संभव हो सकिया है। पंजाबी नू उचेरी विद्यालय भी सिख्या दा माध्यम बनाया गया। पंजाबी भाषा दे विकास विच पंजाब यूनिवर्सिटी अते पंजाबी यूनिवर्सिटी दे नाल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे योगदान पाया है अते इस दे नाल ए होण दे बावजूद पंजाबी भाषा दे विकास विच अनेका रुकावटां भी आईयां हन, परंतु इना कमियां अते रुकावटां नू दूर करन लई सानू चाहिदा है कि हर एक खेतर विच पंजाबी दी वरतों कीती जावे। कानून राज प्रबंध साइंस अते तकनीकी खेतर विच इस दी वरतों कीती जावे। पंजाबी भाषा साहित अते सभ्याचार लई उच्च पदरी खोज केंद्र बनाया जावे। सरकार नू भी चाहिदा है कि ओ वध तों वध आर्थिक सहायता प्रदान करे। सो साथियो, आज दा इस साहित्यिक मैगजीन दा शुमारा इत्थे ही समाप्त हुंदा है। इस उम्मीद दे नाल कि असी फिर मिलांगे, तद तक लई तुसी अपना ते अपने परिवार दा ख्याल रखो, आसे पासे सफाई रखो, खुश रहो। लैंदे हां इजाजत, रब राखा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री

0: एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियो को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between

डॉक्टर हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शबनम बशीर, मेज़बान है मेराज मुजफ्फर। वादी के मारूफ फोक गुलकार गुलाम मोहम्मद कावा की बरसी के मौके पर शब 10:30 पर आप छकरी रूह में कलाम शमस फकीर सुनेंगे, गुलाम मोहम्मद कावा और साथियों की आवाज़ों में। हमारी नशरियात का आगाज़ सुबह 6:30 पर होगा। प्रोग्राम सुबुगाही समाप्त करें सुबह 6:35 पर। लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह नश्र होगा सुबह 7:10 पर। सुबह 8:45 पर स्पॉन्सर प्रोग्राम नश्र होगा हम सफ़र। कल के प्रोग्राम का मौजू है आलमी मलाइका अलैहिमुस्सलाम। मुकर्रर हैं मौलाना फैयाज अहमद जरूर साहब। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। मुकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी सुबह के 9:00। शोबे खबर की जी हाँ, सूफी बुजुर्गों की जिंदगी, उनकी तालीमात और कलाम से मुतलिक सिलसिलेवार प्रोग्राम सूफी सदा पेश खिदमत होगा सुबह के 10:00। कल का प्रोग्राम वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग शाह गफूर से मुतलिक है। तहरीर गुलाम नबी शाकिर की है। गुलाम मोहिद्दीन शेख और साथियों की आवाजों में आप छकरी उरूह समात करेंगे सुबह 11:30 पर और दिन में 2:30 पर। इनसे आप कलाम शमस फकीर और कलाम न्याम सब सुनेंगे। बज्म निस्वा आरास्त होगी दोपहर 12:40 पर। एनसीईआरटी का तैयार करदा तालीमी स्पॉन्सर प्रोग्राम नश होगा दिन में 1:10 पर। सपहर 3:00 प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम 4:00 नश होगा। पंजाबी प्रोग्राम समाप्त करें सपहर 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम शाम के 5:00 पेश होता है। शाम 6:05 पर देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे। शहरबीन आप समाप्त करते हैं शाम के 7:00। प्रोग्राम वादी की आवाज़ रात के 8:00 नश्र होगा और रात 8:30 पर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा स्पोर्ट्स टाइम। समय ये है कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्राम। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। शब के 11:13 हुए हैं। अब हमारी आज की नशरियात यहीं पर बर्खास्त होती है। सुबह 6:30 पर कल की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

0: quarter of a percent and auto dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,825 companies advanced, shares of 1,424 companies declined, while shares of 167 companies remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे मजबूत हुआ, 95 रुपए और 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 101 पर चल रहा था. यहां पर समझना चाहेंगे सबसे पहले हम ये कि कल बाजार में दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार के आसार दिख रहे थे और लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा चले. आज हमारे बाजार ने मजबूती दिखाई, क्या मुख्य कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, आपने जैसे बताया कि बहुत ही ऐसे हाहाकार जैसे हालात बने हुए थे, तो एकदम से मार्केट्स ने रिबाउंड किया और जैसे हमें लग रहा था कि शायद मार्केट आज के दिन भी गिरेंगी, कल का हालात तो ये बता रहे थे. लेकिन उसमें पहले तो ट्रंप साहब ने जैसे बोला कि भाई अभी जी, कोई समझौता हो ही नहीं सकता.
0: जी,
2: आई विल नॉट लिसन ईरान, अभी मैं बात ही नहीं करूंगा. लेकिन उन्होंने फिर बाद में एक देर रात एक स्टेटमेंट दिया कि उनको कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं कि समझौते की बात वो करना चाहते हैं, तो जिससे कि मार्केट्स ने रुख अपना बदला कि शायद अभी भी स्कोप है, समझौता हो सकता है और किसी शांति प्रस्ताव की आगे संभावना हो सकती है, तो मार्केट्स ने अपना रुख लिया. ये टोटली वॉलेटिलिटी है जो एक्चुअल में तो जो भी कुछ हो रहा है हो रहा है, लेकिन जो न्यूज़ बेस्ड जो जो हम बातचीत के जरिए से जो एक वॉलेटाइल होती है मार्केट्स, उसमें जो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट ही इसमें मेन ड्राइवर बनते हैं सभी इन उथल पुथल में. तो जहां तक मैं समझता हूं कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अभी जारी रहेगी. मार्केट्स में मार्केट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई आज मार्केट ऊपर गया और कल फिर जाएगा, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट और आ सकता है. तो यहां पे इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ के, जिसको हम कहते हैं कि फूक फूक के कदम रखने वाली बात होती है, उस हिसाब से चलना होगा.
0: Dr. Sharma, I want to ask you one thing. Like we saw, of course, as we are discussing that despite the plunge that we saw yesterday, the markets recovered and very smartly today.
2: Yes.
0: Do you think one of the driving factors in the markets every day that we see is the prices of international crude oil prices?
2: Right.
0: Now, we have seen since yesterday the statement when it came, when you told, like you said, the US president made certain statements regarding the ceasefire with Iran and which saw the oil prices going up. But still, at the same time, the oil prices are still within that 80 to 85 or, you know, 79 to 85 dollars per barrel range. So do you think that is also because it's still at a comfortable, I would say, range,
2: right,
0: which is what is, you know, also like giving some scope or some kind of a comfort to the markets,
2: right,
0: that the oil prices are still, you know, in a manageable range?
2: Yes, exactly. Because earlier prices were more than 100 per barrel and many of the times more than 95. Now the prices are at 80 to 80. So these are significantly low as compared with the peak of the prices due to the this tussle. So that's why markets are not taking the prices in a negative sense. The markets are still very, very positive that if Trump processes peace, then there is a great scope to move forward and to rebound significantly to the next level.
0: Right.
2: So that is the market breadth, that markets are only waiting the good words from the mouth of Mr. Trump.
0: Another factor which I don't know, you'll have to tell us whether that has also worked in favor of the markets, you know, ending in green today. Yesterday, the IMF report came out, International Monetary Fund report, World Economic Outlook update came out, mm-hmm, according to which India's growth for this present calendar year has been projected at 7%. If you look at the overall picture, you know, the world, the growth of figures for the world has come to 3%, whereas for India, it is saying for this particular calendar year, that is 26, it has been projected at 7%. Do you think that's also a very big confidence booster?
2: Yes, that is a very big confidence booster, because we are the fastest growing economy in the,
0: yes,
2: world economic system, and we are significantly higher than the world average of 3%, and much, much higher than the advanced economies, even faster than China.
0: Yes.
2: China is at around somewhere between 4 to 4.5%.
0: Yes.
2: But India's growth, if you go by the numbers from 21, 22 to 25, 26, we are more than 7% on an average. And last year, in the last fiscal, in 25, 26, we grew at 7%.

0: 6.7%.
1: Yes.
0: And for the current year, there are projections that India will grow at 6.6, or some projections are at around 7% also. And if the peace process deepens, if the peace is there, then India has every potential to grow at around 7% for the current year also. But India is always above the IMF projections.
1: Right.
0: I observed this since last many years, that India is above every projection of IMF so far during the last 6-7 years. In the calendar year and in the financial year.
2: Yeah. यहाँ पर डॉक्टर शर्मा हम आप ही के आंकड़ों को समझना चाहेंगे मैक्रो के जो हमारे फिगर्स हैं वो क्या दर्शा रहे कि आईएमएफ की जो जो अनुमान होता है उसके भी ऊपर हमारा आखिरकार विकास बीते वर्षों में भी हमने दर्ज किया और इस वर्ष भी यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम बेहतर कर पाएंगे क्या हमारे वो कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं
0: देखिए हमारे जो कारक हैं वो मेजरली हमें जो सपोर्ट आती है तो जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है खास करके जो रूरल डेवलपमेंट वहाँ से हमें बहुत सपोर्ट आती है जो हमारी इकोनॉमी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आईआईपी नंबर्स है आईआईपी नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर 10% से ज़्यादा ग्रो किया और जो डिजिटल इकोनॉमी है बहुत अच्छे से बूस्ट कर रही है तो जो आईएमएफ के एक पैरामीटर्स होते हैं जिनमें इस समय पे वो सभी संभावनाओं को देखते हुए कि शायद ये जो क्वैगमायर है मिडल ईस्ट का ये इंडिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा तो वो सारे फैक्टर्स को लेके अनुमान लगाते हैं कि जो ग्रोथ है वो इस लेवल पे रहेगा बट इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है दैट इज सपोर्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो लाइक द इनफॉर्मल सेक्टर इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली उसका जो ग्रोथ है उसको उसको अनुमान करना कि वो कहाँ पे जाके आगे कंट्रीब्यूट करेगा वो इस जंक्चर पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है व्हेन यू सी द नंबर्स तभी वो जाके पता चलता है कि हमारा तो जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारा तो सर्विसेज सेक्टर है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नंबर्स हैं दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द आईएमएफ नंबर्स हमेशा मैं ये देखता हूँ
1: Let's move on to the next story. Tata Consultancy Services TCS today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June 2026. The company's revenue grew by 2.2% to 72,275 crore rupees on a sequential basis. On an annual basis, the revenue increased nearly 14%. However, net profit of the company dropped nearly 2.7% to 13,349 crore rupees quarter on quarter basis. The information technology major has declared an interim dividend of 12 rupees per share.
2: यहाँ पर हम समझना चाहेंगे पूरे आईटी सेक्टर की स्थिति को और जो एआई का एक कहने नया नई हवा चली है उससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित हो रहे हैं और खासतौर से पूरा सेक्टर आईटी सेक्टर का तो हमारे यहाँ सर्विसेज के जरिए हमने कह लें कि अच्छी फसल काटी आने वाले दिनों में एआई हमारे आईटी सेक्टर को किस रूप में प्रभावित करने जा रहा है
0: देखिए मैं मनोज जी नहीं समझता कि जो एआई है उसका कोई खराब असर आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा मैं समझता हूँ कि एआई के आने से आईटी सेक्टर और भी अच्छे से ग्रो करेगा लेकिन अभी जो आईटी कंपनीज के ऊपर दबाव आता है आप देखेंगे कि वो एआई का नहीं है ज्यादातर वो ये जो क्राइसिस है मिडल ईस्ट इसकी वजह से प्रभावित होता है इसकी वजह आप देखेंगे कि जब भी कुछ ऐसी पीस प्रोसेस आती है तो ये शेयर्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं ऊपर भागते हैं तो एआई का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा कोई भी आईटी के ऊपर ये मेरा मानना है कि दिस इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट नेगेटिवली द आईटी सेक्टर
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं चलते हैं एशियाई शेयर बाजार एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज खरीदारी तेज रही है हालांकि कुछ स्थानों पर बिकवाली भी देखने को मिली निवेशकों की खरीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.4% की वृद्धि हुई सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% ऊपर आ गया दक्षिण कोरिया के कोसी में 0.6% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली उधर चलन के विपरीत ताइवान का ताइएक्स 0.8% लुढ़क गया हांगकांग के हिंगसेंग में भी 0.7% की गिरावट हुई अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में उपभोक्ता मूल्य में इस वर्ष जून महीने में वार्षिक आधार पर

0: प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि विगत मई में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी, यानी थोड़ा सा कम रहा। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये चीन के आंकड़े हैं, तो वहीं की ये आंकड़े हैं, की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.1% दर्ज हुआ, जबकि विगत मई में यह वृद्धि 3.9% रही थी।
1: यहाँ पर हम एशियाई बाजार पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बाजार तो दुनिया भर के अमेरिका और ईरान के तनाव में प्रभावित हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम पूरे एशियाई जोन को देखें तो क्या आसार लग रहे इन आशंकाओं का, युद्धों का, और ताजा जो लहर उठी है एक

0: 9% रही थी। यहाँ पर हम एशियाई बाजार पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बाजार तो दुनिया भर के अमेरिका और ईरान के तनाव में प्रभावित हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम पूरे एशियाई जोन को देखें तो क्या आसार लग रहे इन आशंकाओं का, युद्धों का, और ताजा जो लहर उठी है एक नए दौर की, उसका क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको?
1: देखिए मनोज जी, जो एशिया रीजन है इसमें ज़्यादातर बहुत अच्छे से इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो मेजरली एक वर्ल्ड के जो ग्रोथ ड्राइवर भी हैं, जिसमें आपके इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो ये सभी कंट्रीज़ बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी कोई ग्लोबल लेवल पे ऐसी होती है हलचल, जो जैसे अभी हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तो उसमें वर्ल्ड डिमांड तो स्लो होती है बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स, तो उनके जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आता है, तो ग्रोथ प्रभावित तो होती है, बट वो इतना भी प्रभावित नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा या नेगेटिव में चले जाएगी या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। एक दो परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क आता है, जैसे हमने लेमन क्राइसिस में देखा जो 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जो चाइना का ग्रोथ था वो लगभग कोई 10.25% से 3 percentage points फिसल के साथ पे आया था। इंडिया का 2.9% के आसपास से फिसल के कोई लगभग कोई 7.25% पे आया था, 6.5 और 7 के बीच में। तो इतना प्रभाव आता है जब भी कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस, बड़ी कोई क्राइसिस आती है, ऐसे कोरोना के टाइम पे देखा गया
0: जी, जी।
1: तो अभी भी वैसा ही प्रभाव है। तो मार्केट्स जब कोई ऐसी, जैसे कल की घटना थी, ट्रंप साहब ने एकदम से अनाउंस किया कि अब कुछ नहीं हो सकता
2: जी।
1: तो मार्केट्स एक समय धराशायी हुई, जो जिसको हमने हाहाकार बोला के भी ऐसे
0: जी, जी।
1: लेकिन जैसे ही वो कोई, उनके इंटरनल वीकनेसेस नहीं है इन कंट्रीज के, इनके मार्केट्स के, वो प्रभावित हैं जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उनसे। तो जैसे ही उन्होंने रुख अपना बदला कि मेरे को फोन कॉल आए हैं, तो वैसे ही मार्केट्स ने अपना भी रवैया चेंज कर दिया, क्योंकि उनका इंटरनल तो कुछ भी नहीं है, दे आर ओनली वॉचिंग द इंटरनेशनल डेवलपमेंट,
2: बेसिकली रिएक्टिंग टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड इट्स ऑल अ परसेप्शन दैट द मार्केट्स आर रिएक्टिंग।
1: अब आप देखिए कि कल जो जिस तरीके से मार्केट्स गिरी थी, 500-600 पॉइंट्स निफ्टी फिसला, और आज उतना, तो ऐसा इंटरनली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई कल कोई बहुत बड़ा वीकनेस आया इकोनॉमी में और एकदम से आज रिबाउंड कर गया। ये तो मेजरली जो ग्लोबल इम्पैक्ट,
0: यानी लहर भूचाल की जो बाजार में बयानों से पैदा होती है, उसी के शिकार हुए बाजार। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में दोनों प्रतिनिधियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने में मजबूती मिलेगी।
3: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्स की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे।
2: डॉक्टर शर्मा, हियर आई वांट टू यू नो आस्क यू क्वेश्चन अबाउट इंडियन ऑस्ट्रेलिया हैव टुडे अग्रीड ऑन the export of rather supply of Australian uranium for right. India's civilian nuclear program. How do you see this development, especially you know when at the if you look at the political the geopolitical situation right now, there's an energy crisis. From India's energy security point of view, this kind of an agreement, how important is it?
1: Yes, Anubhaji, this is a great development because recently we were very, very progressive

0: with Japan also, and now with Australia, because we have to secure our critical minerals trajectory, because these are the growth drivers of the Indian economy in the in future, and to achieve our target of various things like the export target or the target of our GDP.
1: Yes.
0: Because when you produce, you need the inputs, and critical minerals are one of the most important inputs for the technological developments. So I think we have already a great free trade agreement with Australia, and trade is increasing significantly, almost doubled during the last 5-6 years. So going forward, I believe that these relations, bilateral relations, will further deepen, and our trajectory of give and take will become more and more robust, and trade will flourish in the coming times.
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा हम आपका ध्यान आकर्षित करने करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा की दिशा में, जिस पर भी महत्वपूर्ण पहल हुई है. दुनिया भर में जो साइबर हमले हो रहे हैं उसमें आपसी समझौते और एक दूसरे को उचित समय पर हर तरह की सूचना देना, साथ ही तकनीक हस्तांतरित करना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा समझौता होने जा रहा है वह हमारी साइबर सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा?
0: देखिए मनोज जी, जो साइबर सिक्योरिटी है, दैट इज नॉट इन आइसोलेशन. हम अगर कहें कि हम अपना साइबर सिक्योरिटी खुद कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है.
2: बिल्कुल.
0: वी हैव टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनली. तो हर एक कंट्री के साथ जहां भी हमें कुछ आसार बहुत अच्छे नजर आते हैं, हमारा जो एक बिहेवियर है बायलेटरल रिलेशन, तो हमें उनके साथ साइबर सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट करने में फायदा है. सो दैट हम आपस में अपना जो तालमेल करके जो भी हमले जैसे आपने बताया उनको ज्यादातर रुका जा सके.
1: Let's move on to the next story. The government has waived basic customs duty on goods used in the manufacture of display assemblies, lithium ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The Ministry of Finance has issued 3 separate notifications giving effect to the basic customs duty waiver on the goods used in the manufacture of the 3 key components used in electronic devices. The exemption is in line with the government's efforts to promote domestic electronics manufacturing under the PLI scheme. The duty waiver will reduce import dependence and strengthen the electronics ecosystem with local production. A comment on this: how important is this decision to waive, and how will it strengthen and stimulate the domestic electronics manufacturing ecosystem?
0: Yes, Anubhaji, because we are significantly progressing in the domestic electronics ecosystem, and as you must have observed that our electronics, our mobile phones are now gaining great pace in the global marketplace, and these are increasing significantly. Now we are the great exporter to many countries, to Africa and Europe and America. So going forward, government policies, particularly the ease of doing business and the PLI scheme,
1: yes,
0: for the such promising areas are very, very useful and beneficial for the producers and for the export markets. So going forward, I believe our electronic sector will become more robust, and this will support our overall trajectory of our,
1: yes,
0: exports. Like we have target of 1 trillion for the current financial year, and by 2030 we have 2 trillion target, 1 trillion from merchandise and 1 trillion from, okay, services. So such kind of promising sectors are required to move forward and to become very, very supportive for our overall exports.
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा हम आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि ये सिर्फ राजस्व कमाने का जरिया बनेगा या हमारे गजट भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे कस्टम शुल्क घटने से.
0: देखिए इसमें जो देखो एवरी स्टेप इज फॉर द वेलफेयर क्रिएशन.
2: जी जी.
0: सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेती है कि वो खाली अपना राजस्व को इंक्रीज करने के लिए होगा. सब जो कंज्यूमर, जो पीपल वेलफेयर है, दैट इज एट ऑलवेज एट द फ्रंट एंड द कोर ऑफ द एजेंडा. जैसे अभी सरकार ने, आपने देखा होगा, जीएसटी में कितने रिलीफ दिए पीछे, जो कुछ 6 महीने पहले की बात है, तो कितना उससे हमारी कंजम्पशन ट्रैजेक्टरी कितनी मजबूत हुई.
2: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स हमारी जो ग्रोथ है वो कितना इंटैक्ट रही. 7.7% इज नॉट अ इजी टास्क इन सच अ क्वागमायर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. हम फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हमारा खिताब जो है मौजूद है.
2: यानी प्रधानमंत्री जो कहते रहते हैं आपदा में अवसर ढूंढने की कला भारतीयों ने सीखी, तो वो हम निकाल लेते हैं.
0: वो हमने प्रूव किया, वो नंबर्स बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया.
1: लेट्स मूव ऑन टू

0: commodities, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.9% up at $78.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $74.05 per barrel when reports last came in. And also let's have a look at the prices of gold and silver in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading 0.7% up at 1,45,140 rupees per 10 grams, while silver was trading was trading 1.4% up at 2,26,540 rupees per kilogram a short while ago.
1: श्रोताओं आइए आपको लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जहां अगस्त अनुबंध वाला सोना समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% महंगा होकर 1,44,626 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. उधर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.4% की बढ़त के साथ 2,26,500 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. यहां पर हम समझना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा, आप लगातार सोने में बुलिश रहे हैं और आपके अनुमान समय की कसौटी पर हर बार खरे साबित हुए हैं, यानी मार्केट मंत्रा के श्रोताओं के लिए आप खरे विशेषज्ञ के रूप में सोने के मूल्य को लेकर दिखे हैं. तो अब यहां से सोना किस दिशा में जा रहा, अब के स्तर पर निवेश करना कितना उचित होगा और किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए यदि कोई खरीदना अभी भी चाहे तो?
2: ठीक है, दोनों ही कंसोलिडेशन मोड में है गोल्ड एंड सिल्वर. आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले 5-6 महीने से जो रेंज है, खास करके फरवरी के बाद, वो गोल्ड में 230 और 260 के बीच में है और सिल्वर में 225 से 250 के बीच का रेंज बना हुआ है. तो ये रेंज थोड़ी देर और बरकरार रह सकती है, कंसोलिडेशन का मूड है. लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम आज से 3 साल या 5 साल का होराइजन लेके चले तो प्राइसेस आपको इससे कहीं ज्यादा मिलेंगे आने वाले टाइम.
1: यानी आने वाले दिन में चमक तेज ही होगी सोने के, ऐसे आसार है. यहाँ बहुत संक्षेप में, निवेश करना हो सोने में तो कैसे करें?
2: देखिए, निवेश के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ETF है. मैं सजेस्ट करूंगा कि ETF में करें, जिससे कि देश को भी फायदा और कंज्यूमर को भी, जिससे जो मनी भी है वो फाइनेंशियलाइजेशन होगा और उनको भी फायदा, तो सब जाने.
1: यानी भौतिक सोना की जगह निवेश की दृष्टि से ETF सही सौदा. यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds over 200 points. Nifty settles at 23,963. India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor also operationalize. Partnership in cyber, critical technologies and supply chains. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम

0: रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया है और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में रोजगार और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 159 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later, briefing the media,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है चोरी चोरी, आवाज है मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे, तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे, उस क्षण मुझे लगा था मानो ऋतुएं अपने बिखरे हुए रंग समेट कर एक ही पंखुरी में उतर आई हूं। उस क्षण मुझे लगा था कि मानो ऋतुएं अपने बिखरे हुए रंग समेट कर एक ही पंखुड़ी में उतर आई हूं। न जाने कितने बरसों की स्मृतियां उस छोटे फूल में छिपी थी। पहली मुस्कान का कंपन, बिछुड़ते समय पलकों पर ठहरा जल और वे असंख्य भाव जो कभी शब्दों तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं तुम्हें देख रही थी, पर सच तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे से अधिक तुम्हारी वापसी को देख रही थी, क्योंकि लौटना केवल कदमों का सफर नहीं होता। लौटना वो साहस है जो किसी हृदय को बरसों बाद भी अपना पता याद रहने देता है। हम दोनों के बीच उस दिन बहुत कम शब्द थे, किंतु मौन से कहीं अधिक मुखर थीं हमारी आंखें। उनमें एक साथ विरह की नमी भी थी और मिलन की चमक भी। ऐसा लग रहा था जैसे दो किनारे लंबे अंतराल के बाद एक ही नदी में अपना प्रतिबिंब देख रहे हों। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, यह भी कि तुम्हारे बाद बीते दिनों ने मुझे बदल तो दिया, पर तुम्हारे लिए रखी हुई जगह को कभी छोटा नहीं कर पाए तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे। और अगला गीत, फिल्म का नाम है भीगी पलकें, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

बड़ी ही खूबसूरत शाम थी वो तेरे साथ की, बड़ी ही खूबसूरत शाम थी वो तेरे साथ की, अब तक खुशबू नहीं गई मेरी कलाई से तेरे हाथ की। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है कठपुतली और आवाज है लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कितनी अजीब सी बात है ना कि कविताएं हम सभी पढ़ते हैं, लिखते भी हैं और सुनते भी हैं, पर जब हमसे पूछा जाता है कि कविता क्या है तो हम भारी भरकम शब्दों में कविता की व्याख्या करने लग जाते हैं। शायद हम अब तक नहीं जान पाए कि कविता क्या है। बड़ी सुंदर सी बात है कि मध्यम संगीत, धुंधली रोशनी, केतली से कपों में छनती चाय का जादू, हरे पत्तों की चरचर, मरमर में घुल घुल जाता वायलिन का स्वर, पीले नीले गुलाब की खुशबू और धरती की आगोश में समाते बादल, नीली रोशनी में दुबकता चांद, यही तो कविता है। इतनी सुंदर परिभाषा और इतने सरल शब्दों में अगर कविता है तो कविता को जीना और उसे महसूस करना कितना सुंदर हो सकता है। बातें और भी करें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिकंदा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अनजाना, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।

हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। तुम्हारा नाम किसी पुकार की तरह नहीं आया, ना किसी दावे की तरह, बस जैसे सूखी धरती पर पहली हरियाली का संकेत उतरता है, वैसे ही मेरे भीतर एक नया अर्थ आकार लेने लगा। मैंने देखा गुलमोहर पहले भी खिलते थे, पगडंडियां पहले भी थीं, आकाश पर बादल भी पहले जैसे ही आते जाते थे, पर न जाने क्यों उन सब के चेहरे बदल गए। लगता था जैसे दुनिया ने कोई नया वस्त्र नहीं पहना, पर मेरी दृष्टि ने पुराने दृश्यों में नया संगीत खोज लिया हो। अब जब मैं किसी पुस्तक का पन्ना पलटती हूँ, अक्षरों के बीच एक महीन सी गर्माहट उतर आती है। जब किसी नदी का उल्लेख पढ़ती हूँ, तो उसके जल में तुम्हारी सहजता की झलक मिलती है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ, तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है, यदि स्मृतियाँ अपना हाथ न छोड़े। मैंने तुम्हें कभी अपने अधिकार में नहीं चाहा।

न तुम्हारे लिए कोई शर्त लिखी, न कोई सीमा खींची। मुझे तो बस इतना मिला कि मेरे दिनों के फीके कैनवास पर कुछ दुर्लभ रंग उतर आए। अब मैं बरसात को केवल बरसात नहीं कहती, उसमें प्रतीक्षा का मधुर व्याकरण पढ़ती हूँ। संध्या को केवल संध्या नहीं समझती, उसमें लौटते परिंदों की कथा सुनती हूँ। और रात्रि, वह भी अब अंधेरे का दूसरा नाम नहीं रही, वह तो तारों से लिखी एक लंबी चिट्ठी जैसी लगती है। और कभी कभी सोचती हूँ, मनुष्य का मन भी कितना अद्भुत है। एक व्यक्ति का ख्याल उसमें इस तरह बस जाता है कि ऋतुएं अपना परिचय बदल देती हैं। फूलों की गंध, मिट्टी की सौंधी रेखाएं, आंगन में उतरती धूप, छत पर भटकती चांदनी, सब मानो एक ही कथा के अलग अलग अध्याय बन जाते हैं। सब मानो एक ही कथा के अलग अलग अध्याय बन जाते हैं। हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही, मैं वही नहीं रही। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जब याद किसी की आती है, आवाज है महेंद्र कपूर की।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया

यह गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोत्स्यूक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैलोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में आज तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज तेज वर्षा होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

मन कभी धरती का नागरिक नहीं रहा, उसने हमेशा आकाश की ओर ही देखा है। जब भी दिनचर्या ने उसके पैरों में अनगिनत गांठें बांधनी चाहिए, वह किसी अनजानी दिशा की ओर एक पंख बनकर निकल पड़ा। बादलों के बीच उड़ता वो पंछी

मंजिल का भूखा नहीं था, उसे केवल ये जानना था कि क्षितिज के उस पार भी क्या कोई ऐसी भूमि है जहां सपनों पर पहरा नहीं होता। वो उड़ता रहा, कभी धूप की महीन रेखाओं के सहारे, कभी वर्षा की बूंदों के बीच से रास्ता बनाता हुआ, कभी बिजली की चमक से चौंकता तो कभी गगन की विराटता में अपने ही अस्तित्व को पढ़ता हुआ। उसे मालूम था कि हर बादल जल से भरा नहीं होता, कुछ बादल स्मृतियों से बने होते हैं जो बरसते नहीं, केवल भीतर किसी भूले हुए मौसम की आहट जगाते हैं। ऐसे ही एक बादल के पास से गुजरते हुए उसने बचपन की वो दोपहर देखी जो अब वर्षों से कहीं दर्ज नहीं थी। वो कच्चे आंगन की मिट्टी, वो अनगढ़ हंसी, वो बिना कारण दौड़ पड़ना, मानो सब कुछ फिर से जीवित हो उठा। मन का पंछी मुस्कुराया, उसे लगा आकाश केवल ऊपर नहीं होता, कुछ आकाश भीतर भी बसे रहते हैं, जहां उम्र का कोई अधिकार नहीं चलता, जहां स्मृतियां अपनी सबसे निर्मल आकृति में निवास करती हैं, जहां स्मृतियां अपने सबसे निर्मल आकृति में निवास करती हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अनपढ़, आवाज है लता मंगेशकर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है हरे कांच की चूड़ियां, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। दूर कहीं धूसर बादलों का एक समूह था, जिनके भीतर अनकहे दुखों की नमी थी। पंछी ने उनके बीच से उड़ते हुए जाना कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियां भी मनुष्य को रिक्त नहीं करती, वे उसे और गहरा बनाती हैं। जो पीड़ा से गुजरता है वो अक्सर दूसरों के लिए एक सुरक्षित किनारा बन जाता है। ये सीख लेकर वो फिर ऊंचाइयों की ओर निकल गया। अब उसके सामने संध्या की लालिमा फैली थी। आकाश किसी महान चित्रकार का कैनवस लग रहा था, जहां हर रंग अपनी कथा कह रहा था। पंछी ने उन रंगों में अपनी इच्छाओं के कई चेहरे देखे, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, और कुछ ऐसे जिन्हें उसने कभी शब्द ही नहीं दिए। और तब उसे समझ आया कि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं, कुछ इच्छाएं केवल इसलिए जन्म लेती हैं कि मनुष्य यात्रा करना सीख सके। अगला गीत, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

की धूप में तपा हुआ थका हारा, जब छांव ढूंढता हूं लौटने को सोचता हूं तो घर याद आता है। जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा, जब छांव ढूंढता हूं लौटने की सोचता हूं तो घर याद आता है। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं, आवाज है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की।

दबे पांव आए दबे पांव गए, दबे पांव आए दबे पांव गए, मेरी जिंदगी के फर्श पर तुम सभी निशान छोड़ गए। मेरी जिंदगी के फर्श पर तुम सभी निशान छोड़ गए, दबे पांव आए दबे पांव गए। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल देके देखो। आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग अकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का

0: समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और छह सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। बोस्टन में फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबले में 0-0 की बराबरी है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to Australia has marked a significant milestone in India-Australia relations, with both countries taking several important steps to deepen cooperation across key sectors. Briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said the discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese reflected the growing strategic partnership and close understanding between the two leaders. During the third annual India-Australia summit, both sides finalised the administrative arrangement for the long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals. The two leaders also reviewed progress and economic cooperation. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said India continues to emerge as a preferred destination for global capability centers, GCCs, because of its skilled workforce, strong institutions and innovation ecosystem. Addressing the CII National GCC Business Summit 2026 in New Delhi, Ms. Sitharaman said the country hosts more than 2,100 GCCs employing 23 lakh professionals directly and generating nearly $100 billion in annual revenue. She said GCCs represent transformation by bringing together engineering research,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

जो आंख भर के दिखाई दे, जो आंख भर के दिखाई दे उतना ही सच मत मान। हर एक मंजर के पीछे भी कई मंजर निकलते हैं, हर एक मंजर के पीछे भी कई मंजर निकलते हैं। जो आंख भर के दिखाई दे उतना ही सच मत मान। अगला गीत फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि यादें कभी जाती नहीं, वे बस स्वर बदल लेती हैं। कभी वे मुस्कान बनकर आती हैं, कभी हल्की चुभन बन जाती हैं। पर सच ये है कि वे हमारे ही भीतर हमें बचाए रखती हैं। जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ, वो भीतर कहीं ठहर गया, हमें थोड़ा और गहरा बना गया। इसलिए यादें हम में ही ठहर जाती हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आरती, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। हर रिश्ता शब्दों से नहीं चलता, कुछ रिश्ते एहसासों से सांस लेते हैं। जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां अपनापन अधिक होता है। रात हमें सिखाती है किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है वह दूरी में भी बना रहता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कितनी सुंदर बात है ना कि समय कभी रुकता नहीं, बस आगे बढ़ता है, पर उसके भीतर हमारे कई रूप छुपे होते हैं, जो हम थे, जो हम हैं और जो हम बन सकते हैं। इन सब का संगम ही जीवन की असली पहचान है। और रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, आवाज है लता मंगेशकर की।

और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है दोस्ताना, आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। तो आप सुनिए एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की

0: मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। पीआईबी ने नागरिकों को गलत सूचना फैलाने वाले ऐसे दावों से सावधान रहने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। बोस्टन में फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में कल लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to Australia has marked a significant milestone in India-Australia relations, with both countries taking several important steps to deepen cooperation across key sectors. Briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said the discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese reflected the growing strategic partnership and close understanding between the two leaders. During the third annual India-Australia summit, both sides finalised the administrative arrangement for the long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy programme and support its net zero goals. The two leaders also reviewed progress and economic cooperation. Following the India-Australia CEOs Forum, they agreed to accelerate negotiations on the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA, building on the gains achieved under the Economic Cooperation and Trade Agreements, ECTA, which has led to a 55% increase in bilateral trade. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has announced that the government is planning to introduce E85 fuel at a price around 20 rupees per litre lower than E20 petrol, with the higher ethanol blend available only for purpose-built flex fuel vehicles. In an interview with a private news channel, Mr. Puri said the proposed move aims to provide financial relief to consumers while advancing the government's ethanol blending programme. He also defended the broader biofuel policy, dismissing concerns about engine damage and vehicle performance linked to ethanol-blended petrol. The minister said E85, which contains up to 85% ethanol, would be restricted to vehicles specifically designed to use the fuel and would be about 20 rupees cheaper per litre than standard E20 petrol. The Commission for Air Quality Management, CAQM, in NCR and joining areas conducted a special inspection drive under Operation Clean Air.

100.1 यानी आकाशवाणी एफएम गोल्ड 3:10 हुए हैं दोस्तों। ये समय होता है कार्यक्रम हमराही का, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंतजार प्यार की सबसे खूबसूरत और सबसे सच्ची परीक्षा मानी जाती है। जब कोई अपने दिल के बहुत करीब होता है और उसकी यादें हर पल साथ रहती हैं, हर आती जाती हवा, हर गुजरता लम्हा और हर अनजानी राह यही एहसास दिलाती है कि शायद कहीं कोई हमें भी उतनी ही शिद्दत से याद कर रहा होगा। अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो भी उसके बोल तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि इस गीत में उम्मीद है, मासूम सी बेचैनी है और उस मुलाकात का ख्वाब है जिसका इंतज़ार हर प्रेम करने वाला कभी ना कभी करता है। तो आइए कुछ पल के लिए अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, पुरानी यादों की गलियों में चलते हैं और इस खूबसूरत नगमे के साथ उस एहसास को महसूस करते हैं।

तो दोस्तों ये गीत था फिर कब मिलोगी फिल्म से, और आवाज़ें आप पहचान ही गए होंगे लता मंगेशकर और मुकेश की। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल कुछ यूं हैं, बादल यूं गरजता है। फिल्म बेताब का ये खूबसूरत गीत सिर्फ बारिश की ही बात नहीं करता बल्कि उन धड़कनों का एहसास भी कराता है और प्यार की पहली दस्तक पर तेज हो जाता है। बाहर गरजते बादल हों या फिर दिल के भीतर उठता तूफान, दोनों ही हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल अक्सर हल्की सी घबराहट और ढेर सारी उम्मीदों के साथ आते हैं। तो आइए भीगते मौसम और धड़कते एहसासों के नाम सुनते ही लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ जहन में याद आ जाती है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, बारिश की फुहारें जब धरती को छूती हैं तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, दिल का मिजाज भी बदल जाता है। सावन अपने साथ ढेर सारी यादें, अनगिनत एहसास और प्यार की मीठी खुशबू लेकर आता है। ऐसे ही भीगे भीगे लम्हों को सुरों में पिरोया है एक खूबसूरत से गीत ने, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत में बरसती बूंदों की ताजगी है और मन की कोमल भावनाएं हैं और प्रेम का वो सुकून है जो हर मौसम को खास बना देता है। तो यकीन दिलवाते हैं आपको इस गीत से कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आएगा।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से के जरिए ही जाने जाते हैं, और कुछ गीत उन्हीं एहसासों को आवाज़ देते हैं। ऐसा ही एक गीत है तू ही रे, ऐसा ही एक कालजयी नगमा जो प्रेम, विरह और उम्मीद तीनों को एक साथ समेटे हुए है। जब अपनों से दूरी बढ़ जाती है, तब हर धड़कन उसी एक शख्स का नाम पुकारती है।

जो दिल की दुनिया के सबसे खास हिस्सा बन चुका होता है। इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ प्रेम का इजहार नहीं बल्कि उस अटूट भरोसे की कहानी भी है जो हर मुश्किल और हर फासले के बावजूद जिंदा रहता है। एआर रहमान का जहाँ खूबसूरत संगीत है, वहीं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की मखमली आवाज़ें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे फिल्म के इस गीत की।

3:35 और 42 सेकंड हुए हैं। एफएम गोल्ड पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत असर शायद यही होता है कि इंसान अपनी सुदबुद्धि भूल जाता है। दिल किसी की मुस्कान, किसी की बातों और किसी की मौजूदगी में इस कदर खो जाता है कि दुनिया की हर चीज पीछे छूट जाती है। वैसे तो प्यार में हार जाना भी कभी कभी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जब दिल किसी अपने को अपना मान ले तो फिर शिकायत नहीं रहती, सिर्फ उसी के नाम की धड़कने रह जाती हैं। ऐसा ही एक गीत है जो हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है मंजिल मंजिल, आवाज़ें आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की हैं।

सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की ढलती रोशनी तक अगर किसी का ख्याल हर पल साथ रहे तो समझ लीजिए दिल ने अपनी मंजिल चुन ली है। मोहरा फिल्म का ऐसा ही एक चुलबुला और रोमांटिक गीत है जिसमें प्यार की मासूमियत, अपनापन और साथ निभाने का खूबसूरत एहसास झलकता है। आइए आपको सुनाते हैं उसी फिल्म का एक गीत जिसे आवाज दी है उदित नारायण और साधना सरगम ने।

कुछ पल ऐसे होते हैं जब पूरी दुनिया की भीड़ में भी इंसान को सिर्फ एक ही जगह सुकून मिलता है और वो है अपने प्रिय की बाहों में। वंश फिल्म का ऐसा ही एक सदाबहार रोमांटिक गीत है जिसे हम आपको सुनवाएंगे। इस गीत में प्यार का अपनापन, रिश्तों की गर्माहट और साथ होने का अनमोल एहसास बेहद खूबसूरती से उभर कर सामने आया है और इस गीत को आवाज़ें दी हैं SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, जिंदगी की राह में कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं जिनके आने से हर दिन में नई रोशनी और हर पल में नया अर्थ जुड़ जाता है। उनकी मौजूदगी सिर्फ साथ नहीं देती बल्कि जीने का अंदाज भी बदल देती है। कुछ ऐसा ही है फिल्म दूरियां के इस गीत में। इसी खूबसूरत एहसास को इस गीत ने बड़ी सादगी से और गहराई से अपनी बात कही है। तो आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष

0: यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में कल लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बनाई। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में आज तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to Australia has marked a significant milestone in India-Australia relations, with both countries taking several important steps to deepen cooperation across key sectors. Briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said the discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese reflected the growing strategic partnership and close understanding between the two leaders. During the third annual India-Australia summit, both sides finalised the administrative arrangement for the long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy programme and support its net zero goals. The two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has announced that the government is planning to introduce E85 fuel at a price around 20 rupees per litre lower than E20 petrol, with a higher ethanol blend available only for purpose-built flex-fuel vehicles. In an interview with a private news channel, Mr. Puri said the proposed move aims to provide financial relief to consumers while advancing the government's ethanol blending program. He also defended the broader biofuel policy, dismissing concerns about engine damage and vehicle performance linked to ethanol-blended petrol. The minister said E85, which contains up to 85% ethanol, would be restricted to vehicles specifically designed to use the fuel and would be about 20 rupees cheaper per litre than the standard E20 petrol. The Commission of Air Quality Management, CAQM, in NCR and adjoining areas conducted a special inspection drive under Operation Clean Air in Delhi. The inspection was undertaken to assess the status of road development works carried out in accordance with the standard framework for paving and greening of urban roads. CAQM said that during the inspection, 78 of the 79 road stretchers inspected under the jurisdiction of the Municipal Corporation of Delhi, MCD, were found to have end-to-end paving, indicating compliance with the standard framework. The India Meteorological Department, IMD, has said that the southwest monsoon has covered the entire country. The IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rain with isolated extremely heavy rainfall over Uttarakhand today. According to IMD, parts of Arunachal Pradesh, Assam, मेघालय, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड

100.1 MHz यानी FM गोल्ड, और समय हुआ है 4:11 समझ लिए जी होने को है। दोस्तों इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों हर नई सुबह सिर्फ सूरज की किरणें ही नहीं लाती बल्कि अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। बीती हुई रात चाहे कितनी भी लंबी रही हो लेकिन उम्मीद की सुबह हमेशा उसका इंतजार करती है। जिंदगी में ठहराव हमेशा के लिए नहीं होता और प्रकृति हर मौसम के बाद फिर से खिल उठती है। वैसे ही इंसान भी अपने हौसलों से हर मुश्किल के बाद दोबारा मुस्कुरा सकता है। अगर आज रास्ते कठिन लग रहे हैं तो याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राह आपका इंतजार करती है। बस जरूरत होती है जागने की, आगे बढ़ने की और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखने की। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज दी है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है हीरो।

जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार खामोशी ही सबसे खूबसूरत बातचीत बन जाती है। एक नज़र, एक मुस्कान या बस किसी अपने का साथ, इतना ही काफ़ी होता है दिल की बात समझने के लिए। हर भावना को अल्फाज में बयां करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी ठहर जाना, हर पल को जी लेना और दिल की आवाज़ सुनना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। जिंदगी यह है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। हर सफ़र में शोर ज़रूरी नहीं होता। कुछ पल खामोशी के भी होते हैं तो हमें सुकून दे जाते हैं, रिश्तों को गहराई देते हैं और अपने भीतर झांकने का अवसर भी देते हैं।

जिंदगी हमें हर दिन एक नई सीख देती है, कभी आगे बढ़ने की, कभी ठहर कर खुद को समझने की, और कभी ये एहसास दिलाने की कि सबसे बड़ी ताकत अकेले चलने में नहीं बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। जब सहयोग, विश्वास और सकारात्मक सोच साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन की हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी न किसी के साथ प्रेरणा और विश्वास ज़रूर होता है। याद रखिए दोस्तों, सफलता सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि रास्ते में लोगों का हाथ थामते हुए आगे बढ़ने का भी नाम है।

दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब उसे किसी अपने की और अपने के सहारे की तलाश होती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक हम खुद अपने सच्चे साथी नहीं बनते, तब तक कोई भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। अगर कभी लगे कि साथ देने वाला आपके साथ कोई नहीं है, तो अपने हौसले को अपना हम सफर बना लीजिए, क्योंकि वही आपको हर मुश्किल और हर मुंह से निकाल कर मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा।

4:34 हुए हैं दोस्तों, आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक खेल की तरह है। इसमें हर दिन एक नई चाल चलनी पड़ती है। कभी जीत आपकी झोली में आती है तो कभी हार आपको कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ा देती है। लेकिन वो खिलाड़ी हर हार के बाद फिर से मैदान में उतरता है, वही आखिरकार जीत का असली हकदार बनता है। जीवन को बोझ बनाकर नहीं बल्कि पूरे उत्साह और हिम्मत के साथ जीना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मुस्कुराते हुए उनका सामना ही करना ही असली जीत है।

हर इंसान के मन में कभी ना कभी उड़ान भरने की चाह जरूर होती है। हम सब चाहते हैं कि डर, सीमाओं और मुश्किलों से ऊपर उठकर अपने सपनों के खुले आसमान तक पहुंच जाए, लेकिन असली पंख हमारे कंधों पर नहीं, हमारे हौसलों में होते हैं। सपनों को सच करने के लिए पंख नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प चाहिए। जो लोग अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं वो परिस्थितियों की बेड़ियों को भी हमेशा के लिए तोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से।

है कि ये हर दिन एक नया इम्तिहान भी देती है और एक नई उम्मीद भी। ऐसे में अगर दिल बेकरार हो तो उम्मीद का एक गीत सुनना चाहिए, बेकरार दिल तू गाए जा। ये ऐसा ही एक सदाबहार नगमा है जो सिखाता है कि हालात जैसे भी हो, मुस्कुराना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत कला है। इस गीत की धुन में आशा है, बोलों में हौसला है और आवाज में एक ऐसी मिठास है जो मन को सुकून देती है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों की रात भले ही कितनी लंबी क्यों ना हो, एक नई सुबह हमारा इंतजार जरूर करती है।

दोस्तों, कुदरत का हर पंछी हमें एक अनमोल सीख देता है। उड़ान भरने से पहले वो ये नहीं सोचता कि रास्ता कितना लंबा है, वो बस अपने पंखों पर भरोसा करता है। जिंदगी भी हमसे यही कहती है कि डर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मन की उड़ान को कोई कैद नहीं कर सकता। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो हर बंदरवाजे के आगे एक नई राह आपका इंतजार करती है। जीवन में कभी अपने सपनों को पिंजरे में कैद बिल्कुल मत होने दीजिए। अपनी सोच को खुला आसमान दीजिए, अपने प्रयासों को नई दिशा दीजिए और हर दिन खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश कीजिए।

जिंदगी की भागदौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ बेचैन रहता है तो वो रहता है हमारा मन। कभी बीते कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर, और इन्हीं के बीच आज की खुशियां कहीं खो सी जाती हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने मन को धैर्य और विश्वास का सहारा देना।

दोस्तों चलते चलते बस यही कहेंगे कि सपने पूरे करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं बल्कि बड़ी सोच का होना जरूरी है। दिल छोटा हो सकता है लेकिन अगर उसमें हौसले, उम्मीद और कुछ नया करने का जुनून हो तो वही दिल दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक और गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियां ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम

से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।